Sumita drumada lesho bini suhasini sumadura bhashini

FM बैंड 101.8 MHz पर ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। आज रविवार है, सक संवत 1948 के वैशाख माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026 दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

FM बैंड 101.8 MHz पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं बच्चों का कार्यक्रम नन्हे जैसलमेर।

नन्हे जैसलमेर सुनने वाले सभी प्यारे साथियों को आपकी रेडियो दीदी सुधा पुरोहित का प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मदर्स डे है तो बच्चों माँ तो माँ होती है, माँ के लिए कोई एक दिन निर्धारित नहीं होता है, फिर भी जो चलन चल रहा है उसमें आज मातृत्व दिवस है तो विश्व की सभी माओं को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चों अगर हम आपकी बात करें तो आपकी भी अब छुट्टियां पड़ने वाली है और आपने छुट्टियों में कई प्लान किए होंगे, कोई नानी के घर जाने की सोच रहा होगा, कोई दादी के घर, तो कोई घूमने के लिए प्लान कर रहा होगा। बच्चों कभी आपने सोचा है कि छुट्टियां क्यों होती है? आराम और आनंद के लिए। छुट्टियां जीवन में बच्चों आराम आनंद और नई ऊर्जा का समय होती है। यदि इनका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो वे हमारे ज्ञान, व्यक्तित्व और स्वास्थ्य के विकास में बहुत सहायक बनती है। केवल समय व्यर्थ करने के बजाय छुट्टियों का सदुपयोग करना चाहिए। बच्चों छुट्टियों में विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और नई किताबें पढ़ सकते हैं, सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं और नई चीज़ें सीख सकते हैं। वैसे भी आजकल कंप्यूटर, चित्रकला, संगीत, नृत्य या कोई भी नई भाषा सीखना भी बहुत लाभदायक है। इसके अलावा बच्चों छुट्टियों में खेल कूद, योग और व्यायाम करने से भी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ता है। कुछ लोग छुट्टियों में यात्रा करके नए स्थानों, संस्कृति और इतिहास की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। छुट्टियों का एक अच्छा उपयोग समाज सेवा में भी किया जा सकता है। गरीब बच्चों को पढ़ाना, पेड़ लगाना, स्वच्छता अभियान में भाग लेना जैसे कार्य समाज के लिए लाभकारी होते हैं और हमें भी इससे आत्मसंतोष मिलता है। इस प्रकार छुट्टियां केवल मनोरंजन का समय नहीं है बल्कि आत्मविकास और अच्छे कार्यों का अवसर भी है। जो व्यक्ति छुट्टियों का सदुपयोग करता है वह जीवन में अधिक सफल और अनुशासित बनता है। तो बच्चों आप छुट्टियों को ऐसे मत लीजिए कि हमें छुट्टियां हुई है तो हम घर पे बैठे रहें या दिन भर मोबाइल लेकर बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई ऐसे सार्थक कार्य हैं जो हम छुट्टियों में कर सकते हैं। तो छुट्टियां होती इसीलिए है कि आपको आराम मिल जाए, आनंद मिले और एक उत्साह का, एक नया उत्साह आपके अंदर आए। और मैंने देखा है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि छुट्टियाँ है, मतलब कुछ भी, कोई भी पढ़ाई की तो बात करनी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। अभी तो सत्र भी हमारा पहले शुरू हो चुका है तो आप छुट्टियों में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे सकते हैं। और वैसे मैं तो छुट्टियों में घूमने को बहुत अच्छा मानती हूँ क्योंकि छुट्टियाँ सभी के जीवन में खुशी और आराम लेकर आती है और इन दिनों घूमना फिरना मन को ताजगी और नई ऊर्जा देता है। तो आप अगर सिटी से बाहर जा रहे हैं घूमने तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अगर नहीं जा रहे हैं तो आप अपने सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं क्योंकि इन दिनों में घूमना फिरना मन को ताजगी और नई ऊर्जा देता है। पढ़ाई और काम की व्यस्तता के बीच छुट्टियों में यात्रा करना तो बहुत आनंददायक अनुभव होता है। पता है घूमने से हमें नए स्थानों, लोगों और संस्कृतियों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। पहाड़, झीलें, ऐतिहासिक स्थल, जंगल, धार्मिक स्थान हमारी जानकारी को बढ़ाते हैं और यात्रा से प्रकृति की सुंदरता देखने का भी मौका मिलता है जिससे मन खुश हो जाता है। परिवार और मित्रों के साथ घूमने से आपसी प्रेम और संबंध भी मजबूत होते हैं और यात्रा के दौरान बिताए गए पल जीवन भर याद रहते हैं। बच्चे भी यात्रा से बहुत कुछ सीखते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चों हालांकि घूमते समय हमें स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और जो हम जहां कहीं भी जा रहे हैं वहां के जो स्थानीय नियम हैं उनका भी पालन करना चाहिए। तो छुट्टियों में घूमना केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि ज्ञान, अनुभव और खुशी प्राप्त करने का भी एक माध्यम है। तो अगर आपके परिवार में घूमने का प्रोग्राम बना है तो आप आराम से घूमिए, लेकिन मैंने जो कहा कि पढ़ाई की कमजोरियों को भी आप दूर करने का प्रयास कीजिए। और अगर नहीं घूमने जा रहे हैं तो अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाइए, नई किताबें पढ़िए और कंप्यूटर भी आप सीख सकते हैं, संगीत, नृत्य या कोई नई भाषा भी सीख सकते हैं और घर पर या घर के बाहर भी आप खेलकूद, योग और व्यायाम भी कर सकते हैं। तो छुट्टियों को आनंदपूर्वक मनाइए और इन छुट्टियों का सदुपयोग कीजिए। आगे एक प्यारी सी कहानी आपका इंतजार कर रही है और बात करेंगे हम संस्कारों की, इसकी कमी आजकल बहुत ज़्यादा देखी जा रही है।
तो कार्यक्रम को एक बार विराम देते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: Hum?
1: Hum.
0: तो इस प्यारे से गाने के बाद में हम सुनते हैं एक बाल कहानी, सच्ची दोस्ती और साहस। प्यारे बच्चों, एक छोटे से गांव में सोनू और मोनू नाम के दो अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों साथ स्कूल जाते, साथ खेलते और हर काम मिलकर करते थे। सोनू बहुत समझदार था, जबकि मोनू थोड़ा डरपोक लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। गांव के पास एक बड़ा जंगल था। लोग कहते थे कि जंगल के बीच एक पुराना खंडहर है, जहां रात में अजीब आवाजें आती है। बच्चे वहां जाने से डरते थे। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में सोनू ने कहा, मोनू क्यों ना आज जंगल घूमने चले। मोनू डरते हुए बोला, नहीं भाई, वहां भूत रहते हैं। सोनू हंस पड़ा, भूत भूत कुछ नहीं होते, चलो मजा आएगा। बहुत समझाने पर मोनू तैयार हो गया। दोनों अपने बैग में पानी और खाना लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। पेड़ों की ठंडी छाया और फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण बहुत सुंदर लग रहा था। चलते चलते वे जंगल के बीच बने पुराने खंडहर तक पहुंच गए। वहां चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मोनू डरकर बोला, सोनू मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन सोनू ने हिम्मत दिखाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा गड्ढे में गिर गया था और मदद के लिए रो रहा था। सोनू ने तुरंत पेड़ की लंबी डाल पकड़ी और बच्चे की ओर बढ़ाई। मोनू भी धीरे धीरे डर भूल कर मदद करने लगा और दोनों ने मिलकर बच्चे को बाहर निकाल दिया। बच्चा पास के गांव का था। वह लकड़ियां बीनते समय रास्ता भटक गया था। बच्चा बहुत खुश हुआ और बोला, आप दोनों ने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। शाम होने लगी थी। तीनों जल्दी जल्दी गांव लौट आए। बच्चे के माता पिता अपने बेटे को देखकर रो पड़े और सोनू मोनू का धन्यवाद करने लगे। उस दिन मोनू को समझ आया कि डर से भागना नहीं चाहिए और अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। और इसके बाद दोनों दोस्तों की बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। अब मोनू भी पहले जैसा डरपोक नहीं रहा। तो बच्चों, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे और साहस से हर डर पर जीत पाई जा सकती है।

संस्कार। जी हाँ बच्चों, संस्कारों की बात आपने भी काफी बार सुना होगा। कभी गुस्से में आपको भी घर वालों ने ये कहा होगा कि संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है, तो आप भी सोच में पड़ जाते होंगे कि संस्कार है क्या। बच्चों, संस्कार भी अच्छे गुण और आदतें हैं जो मनुष्य के व्यवहार और चरित्र को श्रेष्ठ बनाते हैं। ये हमें सही और गलत में अंतर समझाते हैं और जीवन में अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना, अनुशासन में रहना, दूसरों की सहायता करना और विनम्र व्यवहार करना अच्छे संस्कारों के उदाहरण है। पता है आपको संस्कारों की पहली शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है? हाँ बच्चों, परिवार से मिलती है। माता पिता, गुरु और समाज हमारे जीवन में संस्कारों का निर्माण करते हैं। अच्छे संस्कार व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाते हैं और उसका व्यक्तित्व उज्ज्वल बनाते हैं। जिस व्यक्ति में अच्छे संस्कार होते हैं वह हर जगह प्रिय बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचार अपनाने चाहिए और अपने जीवन में श्रेष्ठ और अच्छे जो संस्कार है उनको विकसित करना चाहिए। पता है आपको बच्चों, संस्कार हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। अच्छे संस्कार हमें विनम्र, ईमानदार, दयालु और जिम्मेदार बनाते हैं और इन्हीं संस्कारों से परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को पहचानना और अपनाना चाहिए।

बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना, जरूरतमंदों की सहायता करना, समय का महत्व समझना और सभी के प्रति प्रेम भाव रखना, ये अच्छे संस्कारों की पहचान है। जिस व्यक्ति के व्यवहार में नम्रता और सद्भाव होता है, वही वास्तव में संस्कारी कहलाता है। आज के समय में ज्ञान और धन के साथ साथ अच्छे संस्कार भी बहुत जरूरी है। बिना संस्कारों के व्यक्ति का जीवन अधूरा माना जाता है। माता पिता, गुरु और परिवार हमें बचपन से ही अच्छे संस्कार सिखाते हैं और हमें उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए। अच्छे संस्कार न केवल व्यक्ति को महान बनाते हैं बल्कि समाज में सम्मान भी दिलाते हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा अच्छे विचारों और अच्छे कार्यों को अपनाकर अपने संस्कारों को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि संस्कार ही हमारे जीवन की असली पूंजी माने गए हैं। तो अगर आप भी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के अपने संस्कारों पर ध्यान देंगे तो आपको भी कभी सुनना नहीं पड़ेगा कि संस्कारों की कमी है। कार्यक्रम को एक बार विराम देते हैं, आगे एक कहानी सुनेंगे हम, ईमानदार लकड़हारा। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं एक गीत।

प्यारे बच्चों, इसी गाने के साथ में अब हम सुनते हैं ईमानदार लकड़हारे की कहानी। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन वह नदी के किनारे पेड़ काट रहा था, अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी। रामू दुखी होकर नदी किनारे बैठ गया और रोने लगा। तभी नदी से एक जलपरी प्रकट हुई। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने कहा, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, अब मैं काम कैसे करूंगा? जलपरी नदी में गई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कहा, नहीं, यह मेरी नहीं है। फिर जलपरी चांदी की कुल्हाड़ी लाई। रामू ने फिर मना कर दिया और अंत में जलपरी लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी लाई। रामू खुशी से बोला, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर जलपरी बहुत खुश हुई। उसने रामू को उसकी कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी दे दी और रामू खुशी खुशी घर लौट आया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। अब कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर है बच्चों, तो चलते चलते सुन लेते हैं फिर एक प्यारा सा गीत।

आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, डाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, डाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया।

अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी, दाल पकाएगी, दाल पकाएगी। कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

0: साथ हमारे चले बराती, मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी।
1: तो बच्चों, इसी के साथ अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम जल्द मिलेंगे, ढेर बातें करेंगे कुछ किस्से और कहानियों के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार और प्यार भरा नमस्कार।

0: एफएम बैंड 101.8 MHz पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्ते जैसलमेर। आज के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर श्री अभिषेक शिवहरे से तरुण शर्मा की बातचीत का पुनः प्रसारण।
1: श्रोताओं को नमस्कार। आकाशवाणी के माध्यम से समय समय पर विकास यात्राएं आत्मनिर्भर भारत के संबंध में, विकसित भारत के संबंध में खूब सारे प्रोग्राम आप तक सुनने को मिलते हैं, आप तक पहुंचते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है, जिससे हमारे स्थानीय लोगों में वो जो प्रगति का पथ है वो बना रहे, समाज सुधारक जो तथ्य हैं वो आप तक पहुंचने को मिलते हैं। श्रोताओं, हम सब जानते हैं प्रत्येक समाज में शांति, कानूनन एवं व्यवस्था बनाए रखने का कार्य अनादिकाल से ही बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में असुरक्षा के वातावरण में न तो कोई नागरिक अपना विकास कर सकता है और न ही राष्ट्र। प्रत्येक समाज में नागरिकों का चहुमुखी विकास इस पर निर्भर करता है कि सरकार किस सीमा तक कानून एवं शांति की व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों को समाज में शांति के वातावरण में ही प्राप्त हो सकती है। वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग है। विज्ञान के क्षेत्र में नवीन आविष्कारों ने जहां समाज के रूप एवं व्यवस्था में परिवर्तन किया है, वहीं नागरिकों की आकांक्षाओं में इनके कारण परिवर्तन आया है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से राज्य की भूमिका में बहुत वृद्धि हुई है। आज यानी वर्तमान में समाज का कोई भी क्षेत्र राज्य की जकड़ से परे नहीं है। आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका के कारण राज्य पर व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व लंबे समय से पड़ा है और ये निरंतर रहता भी है। गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ग्रामीण विकास, कृषि, उद्योग, कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें समस्याओं के निवारण हेतु सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन लोक प्रशासन के प्रमुख दायित्व बन गए हैं। राज्य स्तर की बात करें तो पुलिस प्रशासन व्यवस्था की ओर प्रारंभ से ही इसको सक्षम और प्रभावी बनाने हेतु बहुत सारे स्तरों तक व्यापक नीतियों, प्रशासकीय निर्देशों का क्रियान्वयन किया गया है ताकि समाज में शांति, कानून व्यवस्था हो। और ये प्रमुख तत्व है, प्रमुख कर्तव्य भी है। प्रशासन अपने दायित्वों का निर्वाह जिन साधनों, संगठनों और संस्थाओं के माध्यम से करता है उनमें पुलिस संस्था सबसे प्रमुख है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि कहा जाए कि पुलिस प्रशासन समाज में न केवल सुरक्षा वरन स्थापित्य प्रदान करने हेतु ढाल व सुरक्षा चक्र का कार्य करता है। अनादिकाल से ही पुलिस का अस्तित्व समाज में बना हुआ है। तो आज के नमस्ते जैसलमेर कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय पुलिस का सामाजिक दायित्व क्या है, समाज में या समाज के प्रति, नागरिकों के प्रति उनका क्या कर्तव्य है और नागरिकों का भी पुलिस के प्रति क्या जिम्मेवारी बनती है। श्रोताओं, पुलिस व्यवस्था आज प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह नगर अथवा ग्रामीण क्षेत्र का हो, समान रूप से प्रभावित भी करती है लेकिन जमीनी स्तर पर हमें पूरी सुरक्षा भी देती है। हमें पुलिस से दोस्ताना व्यवहार करना है, न कि उनसे झिझक करने हैं। इनकी वाणी, व्यवहार, निष्ठा, लक्षणों का जो इनका दायित्व है, लक्षणों का दायित्व है, कर्तव्यों का जो दायित्व है, जनता के पुलिस एवं सामान्य प्रशासन दोनों के प्रति दृष्टिकोण ये जो है तय करता है कि नागरिकों के मस्तिष्क में पुलिस का जो बिंब है वो आज सकारात्मक दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रत्येक नागरिक पुलिस का सहयोग कर रही है और पुलिस तो करती ही है। देखिए, पुलिस शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी परिभाषा विहीन है। इस शब्द में किसी भी पुलिस नियम व अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा में पुलिस शब्द की परिभाषा अवश्य दी गई, लेकिन वस्तुतः इसे पुलिस नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये पुलिस के शाब्दिक अर्थ को प्रकट ही नहीं करता। पुलिस के कर्तव्यों, अधिकारों, दायित्वों और उसकी शक्तियों के आधार पर ऐसे व्यक्तियों को पुलिस की संज्ञा दे सकते हैं जो किसी भी नियम, अधिनियम, आदेश, अध्यादेश या विधि के अंतर्गत समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक शक्तियों के प्रयोग करने हेतु अधिकृत हो। शाब्दिक अर्थ पर यदि हम जाएं तो पी यानी पोलाइट, ओ यानी आज्ञाकारी, एल यानी विश्वास पात्र लॉयल, आई यानी इंटेलिजेंट बुद्धिमान, सी यानी करेजियस साहसी और ई का मतलब एफिशियंट दक्ष। इन्हीं शब्दों से स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारी में उपरोक्त गुण लक्ष्य का समावेश है, तभी वह कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सफल है। सामाजिक विकास में पुलिस की भूमिका की बात करें तो जैसे जैसे समाज का विकास हो रहा है वैसे वैसे समस्याओं का निदान भी हो रहा है। समस्याएं स्वाभाविक है

0: लेकिन उनका निदान होना यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समाज में टकराव, सांप्रदायिकता, क्लेश, दंगा आदि तनावों को शांत करने व कानून व्यवस्था बनाए रखने की भूमिका में पुलिस प्रशासन की आवश्यकता बहुत ज्यादा महसूस की गई है। और पुलिस अपने पूरे कर्तव्य निष्ठा से अपने कर्तव्यों का, जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रही है। तो आइए इसी संबंध में आज बातचीत करते हैं जैसलमेर के जिला पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक शिवहरे।
1: श्रोताओं नमस्कार। समय समय पर हम आकाशवाणी के माध्यम से विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों, कलाकारों और महानुभावों से बातचीत कर महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। इसी क्रम में नमस्ते जैसलमेर कार्यक्रम में आज आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे साथ है जैसलमेर के जिला पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक शिवहरे। सर आपका स्वागत है, नमस्कार।
2: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, एक और देश की सीमा पर तैनात जवान जिस तरह से देश की रक्षा करता है, उसी तरह आंतरिक गतिविधियों और नगर सुरक्षा हेतु देशभक्ति और जनसेवा के आदर्श के साथ भारतीय पुलिस जनता की सेवा और विश्वास के संकल्प को निरंतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। सर आपसे आज हम जानना चाहेंगे नगर में शांति और सुरक्षा की जिम्मेवारी को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है?
2: किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए समाज में सुरक्षा व शांति एक मूलभूत आवश्यकता है
1: जी।
2: इसी के दृष्टिगोचर जैसलमेर जो शहर है, ये हमारा शहर है, इसमें पूरे जिले की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो करीब 8.5-9 लाख जनसंख्या है, और जैसलमेर अगर शहर की बात करें तो करीब 1 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पे जो पार्किंग और सड़क व्यवस्था है वो पुराने शहर के हिसाब से है। तो अगर मैं यहाँ शहर की सुरक्षा और शांति की बात करूँ तो चूंकि अब हमारा जो जैसलमेर है ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है,
1: बिल्कुल सर,
2: यहाँ पे सोलर, विंड और सीमेंट की कंपनियां भी आ रही हैं
1: जी,
2: तो उस हिसाब से इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए यहाँ की सुरक्षा और शांति जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, जिसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभय कमांड के कई सारे कैमरा सिटी में लगे हुए हैं जिनके माध्यम से हम शहर में निगरानी रखते हैं। उसके अलावा भी हमारे जो सादे कपड़ों में और मानवीय जो सूत्र हैं उनसे सूचना संकलित करके हमारा प्रयास रहता है कि किसी तरह का जो अपराध है वो पहले तो घटित ना हो, और अगर घटित हो जाता है तो उसका त्वरित अनुसंधान करके हम खोज कर लें
1: जी। बिल्कुल।
2: इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कोई भी पुलिस जो सिस्टम है वो तभी सफल हो सकता है जब उसको यहाँ के लोगों का साथ मिले।
1: बिल्कुल।
2: तो इसलिए हमारी जो सामुदायिक पुलिसिंग की जो इकाइयां हैं उनके साथ भी हम लगातार संपर्क में रहते हैं और उनसे ये चर्चा करते रहते हैं कि किस तरीके से जो पुलिसिंग है उसको और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके, या कोई ऐसा मुद्दा है जो हमारी शायद नजर में या हमारी प्राथमिकता में नहीं आ रहा तो उसको हम अपनी प्राथमिकता में लाएं।
1: जी बिल्कुल। सर वर्तमान में नशाखोरी एक बहुत ही गंभीर समस्या हो गई है, देश का युवा इस मार्ग से दूर रहे, इस हेतु आपके क्या प्रयास चल रहे हैं और नशा मुक्ति हेतु किस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं?
2: जी, नशाखोरी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आप सही कह रहे हैं उभर कर आया है। इसके लिए हम लगातार जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसके साथ ही जो नशे की आदत में पड़ गए हैं लोग उनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी प्रशासन से समन्वय करके नशा मुक्ति केंद्र में हम उनको भेजते हैं जिससे कि उनकी ये जो आदत है छूट सके। साथ ही इसमें लोगों का सहयोग लेने के लिए हम स्कूलों में, कॉलेजों में, गांवों में, जगह जगह थाना के माध्यम से, अपने ऑफिस के माध्यम से जागरूकता अभियान करवाते हैं जिसमें हम उनको ये बताते हैं कि कैसे ये जो नशा है ये आपकी, आपके परिवार की, समाज की और पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
1: बिल्कुल। चूंकि इसमें युवा की बात आती है तो कहते हैं गौरवशाली रहा भूत, भविष्य भी महान है, अब युवा संभाल ले जिसे बस वही वर्तमान है। अब युवा देश का भविष्य है, तो युवा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, नशे को किस प्रकार से आप इससे दूर रखना चाहेंगे?
2: मेरा युवाओं से मेरी अपील भी रहेगी कि आप जो आपकी शक्ति है, जो आपकी ऊर्जा है, इसको खेलकूद में लगाएं, इसको किताबें पढ़ने में लगाएं, इसको ऐसी गतिविधियों में लगाएं जिससे कि हमारा जो राष्ट्र है उसका निर्माण हो और जो राष्ट्र है उसकी जो प्रगति है उसमें हम अपना योगदान दे सकें।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे युवा साथी है इस पर फोकस करेंगे। कर्तव्यों के साथ साथ जिम्मेदारियों की जब बात करते हैं तो ट्रैफिक की बात आती है, सड़क सुरक्षा को लेकर किस प्रकार यातायात पुलिस व्यवस्थित कर रही है?
2: जी, राजस्थान पुलिस की इस साल की प्राथमिकता में भी यातायात जो है और सड़क सुरक्षा एक प्रमुख बिंदु है और उसको लेकर हम भी बिल्कुल गंभीर हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो हमारे देश में सबसे ज्यादा मौतें जो हैं वो अगर कोई एक कारण है तो वो है सड़क दुर्घटनाएं। करीब साल में 1.5 लाख मौतें जो हैं हमारे पूरे देश में ये सड़क दुर्घटनाओं की वजह से।

0: होती है। तो इस साल सड़क सुरक्षा को लेके जो भी हमारे ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे लगातार एक्सीडेंट होते हैं, उनको हमने चिन्हित करके वहाँ पे पुलिस की गाड़ी और पेट्रोलिंग बढ़ाई है। इसके साथ साथ ऐसी जगह जो हमने चिन्हित की हैं अलग अलग थाना क्षेत्रों में, जहाँ पे सड़क में हमारे हिसाब से कोई इंजीनियरिंग डिफेक्ट है, तो उसके जो संबंधित विभाग हैं उनसे हमने मीटिंग करके उनको वो पॉइंट्स दे दिए हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, इसके लिए लोगों में जागरूकता, लोगों का जो है सहयोग, इसके लिए हम उनसे मिल रहे हैं। उनमें जागरूकता कार्यक्रम जो है ट्रैफिक नियमों की पालना के वो चल रहे हैं। इसके साथ ही जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उस पर हम कठोरता से चालान कर रहे हैं। और अब जो हम चालान कर रहे हैं तो हम इसमें अब मोबाइल से ई चालान भी कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: जिससे कि जो लोग हैं वो एक तरफ तो ट्रैफिक के नियमों से जागरूक हों और दूसरा ट्रैफिक के नियमों की पालना करें,
1: बिल्कुल
0: जिससे कि ये जो सड़क दुर्घटनाओं और यातायात की वजह से जो मौतें हैं ये कम हो सके और जो ट्रैफिक में लोगों की जान जैसी स्थिति है इसको भी काबू किया जा सके।
1: बिल्कुल बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। साहब, जैसलमेर एक पर्यटक स्थल है, तो पर्यटकों की सुरक्षा हेतु विशेष कार्य, या यूं कहें कि कई बार लपकों से परेशानी और उनसे पर्यटकों के साथ जो फ्रॉड होता है उनको, तो उनसे बचने के लिए आप किस प्रकार के ऑपरेशंस चलाते हैं? मोस्टली जब बात करें यहाँ जैसलमेर के सीजन की, जो जो पीक पॉइंट रहता है 6 महीने में, तब क्या ऑपरेशन किस तरह से आप?
0: जी, पर्यटन चूंकि हमारा जैसलमेर अगर हम बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, देश विदेश से यहाँ काफ़ी सैलानी घूमने आते हैं, तो इसी को देखते हुए पर्यटन सीजन में हमने ऑपरेशन वेलकम चलाया था, जिसमें कई घटक थे। जो लपके हैं उस पर हमने काफ़ी सख्ती से कार्रवाई की, काफ़ी लपकों पे दंडात्मक कार्रवाई भी हुई, जिससे कि इस साल जो पर्यटन सीजन रहा तो लोगों को लपकों की समस्या कम हुई। इसके साथ ही जो आप कह रहे हैं कि धोखाधड़ी वाली जो समस्याएं थी, तो अधिकतर धोखाधड़ी सब में टूरिस्ट रिजॉर्ट्स पे हो रही थी, तो पर्यटन सीजन शुरू होने के पहले ही हमने उन सब जितने भी रिजॉर्ट थे उन सब का एक भौतिक सत्यापन करवा लिया था, जिससे कि इस साल इस तरह की घटनाएं नगण्य हैं। तीसरा, हमने टूरिस्ट पुलिस हेल्पलाइन नंबर चालू किया इस साल, जिसमें हमें करीब 50 से ऊपर कंप्लेंट्स प्राप्त हुई जिनका त्वरित निस्तारण किया गया। साथ ही आप जो भी हमारे महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे हमने टूरिस्ट पुलिस बूथ के नाम से पुलिस बूथ भी चालू किए, जहाँ पे पुलिस कर्मी पर्यटन के समय उपस्थित थे, जिससे कि अगर किसी पर्यटक को कोई समस्या है तो वो सीधे त्वरित रूप से उनसे संपर्क करके
1: निदान हो जाए।
0: उनकी समस्या का हम निदान कर सकें।
1: जी
0: साथ ही इसमें एक बहुत बड़ा घटक जो था वो ट्रैफिक व्यवस्था का था। पर्यटक जब आते हैं तो शहर की जो अभी पार्किंग और सड़कों की स्थिति है, तो जितना टूरिस्ट आता है उस हिसाब से वहाँ जाम लगने की संभावना रहती है, तो इस बार सीसीटीवी के माध्यम से और पुलिस पुलिस के माध्यम से हमने ये प्रयास किया कि जाम जो है लोगों को इस तरह की दिक्कतें कम से कम आएं। बस स्टैंड को भी बाहर शिफ्ट किया गया, बड़ी बसों की जो एंट्री है उसको भी हमने रूट डाइवर्ट किए,
1: बिल्कुल
0: जिससे कि जो पर्यटक हैं वो अपने साथ एक सुंदर और
1: एक
0: यादगार
1: अच्छी छवि लेकर जाए।
0: छवि जैसलमेर की लेके जाएं और वापस पुनः जैसलमेर अग्रसर
1: बार
0: हों।
1: बार जैसलमेर आए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक और गंभीर समस्या सामने आती है जो पूरे देश की है, ना केवल जैसलमेर की बात करें, साइबर क्राइम। तो इससे बचने के लिए जैसलमेर साइबर सेल किस प्रकार कार्यरत है?
0: देखिए, साइबर क्राइम जैसे कि आपने बताया कि एक देशव्यापी समस्या है, हमें जो भी कंप्लेंट्स साइबर की प्राप्त होती हैं तो उसमें हमारी साइबर सेल जो है ये अनुसंधान करती है कौन इसके पीछे है और उस पर हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। इसके साथ ही हमारे जो जागरूकता अभियान है उसमें साइबर एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें हम लोगों को जागरूक करने के प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह के लोक लुभावन वादों में प्रॉफिट पैसा दुगना पैसा चौगुना इस तरह की चीज़ों में ना पड़े, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपनी इस तरह की चीज़ों से सुरक्षा करें। साथ ही इस तरह के जो फ्रॉडस्टर उनको अलग नंबरों से अगर संपर्क करते हैं तो उसकी सूचना पुलिस को दें, जिससे कि हम इस तरह के फ्रॉडस्टर के खिलाफ कार्रवाई कर सकें।
1: कार्रवाई कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई और जनता को जागरूक करने के लिए इनसे हम जुड़े रहे। आगामी 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस आ रहा है, उस दिन जैसलमेर में आपकी ओर से क्या क्या तैयारियां हो रही है, क्या क्या कार्यक्रम होने जा रहे हैं सर?
0: देखिए, अगर राजस्थान पुलिस दिवस की बात करूं तो इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि ये वो दिन था जब राजस्थान पुलिस का गठन हुआ और ये दिन राज्य के एकीकृत व आधुनिक पुलिस की स्थापना का द्योतक है। राजस्थान पुलिस दिवस पे 16 अप्रैल को और 15 अप्रैल की शाम को हमारे द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम शहर में प्लान हैं, जिसमें हमारे जो पुलिस के ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, लाइन है, इन सबकी साफ सफाई, ब्लड

0: कैंप, बच्चों का थाना विजिट, जिससे कि वो पुलिस को समझ पाएं और पुलिस की प्रति जो उनके मन में छवि है उसको हम ठीक कर पाएं। बच्चों के लिए क्विज कंपटीशन, साथ ही हमारे वो साथी जिन्होंने पिछले सालों में बहुत सराहनीय कार्य किया है उनको हम पुरस्कृत करेंगे। ऐसे लोग जो पुलिस के हमेशा काम आते हैं, जो समाज को आगे रखते हैं, उन लोगों को हम सम्मानित करेंगे। और हमारा जो पुलिस बैंड है वो शहर के जो महत्वपूर्ण स्थल है हनुमान चौक वहाँ पे परफॉर्म करेगा। इस तरह से हमने 16 अप्रैल को और 15 अप्रैल की शाम को परेड का कार्यक्रम भी है जी। तो 15 अप्रैल की शाम और 16 अप्रैल को इस तरह हमने कई सारे कार्यक्रम जो हैं प्लान किए हुए हैं। हम राजस्थान पुलिस दिवस पर लोगों को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि राजस्थान पुलिस का जो ध्येय वाक्य है अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास
1: जी,
0: हम इसको अक्षरशः प्रूव करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपके सहयोग से हम जैसलमेर को अधिक सुरक्षित और जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए जो उनकी यादें हैं उनको अधिक बेहतरीन कर पाएंगे।
1: सर एक चलते चलते आखिरी संदेश आप क्या आकाशवाणी के श्रोताओं को और जैसलमेर की जनता को, जिसमें खास तौर से युवा, कई बार हम देखते हैं कि आमजन में एक भय बना रहता है पुलिस को लेकर, तो वो दोस्ताना संबंध किस प्रकार से बने और आगे भी बनता रहे ताकि झिझके नहीं जो नागरिक हैं और किसी भी समस्या का समाधान आपके पास लेकर आए, बेझिझक लेकर आए, क्या आप संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए जैसलमेर वासियों को मेरा ये संदेश रहेगा कि पुलिस से संबंधित अगर कोई भी आपको समस्या है तो आप संबंधित थाने जा सकते हैं, वहाँ आपकी समस्या का निदान होगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो आप वृत्ताधिकारी या फिर SP कार्यालय आ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हम करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं सारे जैसलमेर वासियों से अपील करूँगा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, साइबर अपराधों से सतर्क रहें और नशे की ये जो एक प्रवृत्ति सी है इसके बारे में आपको अगर कहीं लगता है कि कोई नशे का व्यापार कर रहा है या नशेड़ी कहीं बैठ के नशा करते हैं तो उसकी सूचना आप पुलिस को दें, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और हम आपके सहयोग से इस जो समस्या है इसका जड़मूल से विनाश करना चाहते हैं। तो इसमें हमें आपका भी सहयोग अपेक्षित है और जैसलमेर पुलिस अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कार्यरत।
1: बिल्कुल, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कार्यवाही और जैसलमेर में किस तरह से क्रियान्वित है?
0: देखिए महिला सुरक्षा समाज के लिए महिलाओं की सुरक्षा बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है और इसको लेकर हम भी संवेदनशील हैं। हमारी यहाँ जैसलमेर में जितने भी थाने हैं वहाँ पे जो भी महिला परिवादियाँ जाती हैं तो उनकी जो भी कंप्लेंट है उस पर त्वरित कार्रवाई करवाना, इसके साथ ही जो हमारे पर्यटन स्थल हैं वहाँ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना ये हमारा प्रमुख जिम्मेदारी है। इसमें हमारी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं जो लगातार शहर में गश्त करती हैं, जो स्कूल हैं जो कॉलेज हैं जहाँ पे हमारी बच्चियाँ हमारी बहनें जाती हैं वहाँ पे उनके साथ किसी तरह की कोई अभद्र या कोई आपराधिक गतिविधि ना हो इसको सुनिश्चित करते हैं हम। साथ ही हमारे जो अभय कमांड सेंटर पर हेल्पलाइन है वहाँ पर भी कोई भी अगर महिला की तरफ से कंप्लेंट जाती है तो उस पर तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है और उनकी समस्या का निदान करके उनको राहत प्रदान करती है।
1: क्योंकि जैसलमेर ये सरहद की रखवाली में मुस्तैद है और बॉर्डर इलाका है तो तस्करी की भी काफी संभावनाएं रहती है, तो उसके लिए हम किस तरह के ऑपरेशंस भी चलाते हैं?
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसलमेर एक चूंकि सीमावर्ती जिला भी है तो ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पे हमारे पुलिस के अलावा बाकी जो हमारी एजेंसीज हैं उन सबके साथ मिलकर हम जो असूचना है उसको संकलित करते हैं। साथ में हमारे जो पेट्रोलिंग कार्यक्रम हैं, जॉइंट पेट्रोलिंग कार्यक्रम होते हैं, हमारी कई मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करते हैं और इस तरह के तत्वों पे जो हमें लगता है कि संदिग्ध हैं उस पे नज़र रखते हैं और उन पे कार्रवाई करते हैं। हमारे जो सीमावर्ती थाने हैं उनको स्पेशल टास्किंग है कि बॉर्डर के जो एरियाज़ हैं उन पे विशेष ध्यान रखें, जो गाँव हैं उन पे विशेष ध्यान रखें, वहाँ के लोगों से अपना संपर्क बढ़ाएँ जिससे कि कोई भी अगर ऐसी गतिविधि है जो संदिग्ध है वो सीधे हमारी नज़र पर आए और हम उस पर बिल्कुल तुरंत कार्रवाई करें।
1: पुलिस कर्तव्य के अलावा हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम सही मार्ग पर चलें, सुरक्षा व्यवस्था को भंग ना करें, पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस नागरिकों की सेवा, सुरक्षा और कर्तव्य निष्ठा हेतु इसी तरह हमेशा तत्पर रहेगी। सर आप

साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ।

0: एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत,
1: एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत,
0: एक से एक मिले तो इंसान बन

0: तो श्रोताओं, देश एवं समाज में लोग कानून का गंभीरता से पालन करते हैं, इसका श्रेय पुलिस को ही जाता है। पुलिस के बगैर देश और राज्य के प्रशासन की सुरक्षा की कल्पना तक नहीं की जा सकती। समाज में लोग अच्छी तरह से कानून व्यवस्था और अनुशासन का पालन करें, पुलिस इसकी निगरानी हमेशा करती है। देश और कई राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव केंद्रों पर जरूरतमंदों की सुरक्षा पुलिस अक्सर करती है। देश में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ गलत हरकत कर रहा है, या फिर कोई भी राह चलता बदमाश, या कोई संदिग्ध है, या कोई अशांति भंग कर रहा है, तो ऐसे में पुलिस अपने डंडे की भाषा से अपराधियों को चुप करवाती है और उन्हें उनके अपराधों के लिए दंडित भी करती है। पुलिस देश की कानून व्यवस्था की संरक्षक होती है। देश की संविधान के अनुसार नियमों और कानून का पालन करना पुलिस का दायित्व है। पुलिस हर एक केस को सोच समझ कर निडर होकर उसके सुलझाती है। कई बार ऐसे भी देखते हैं कि कोई निर्दोष भी पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके साथ में भी निष्पक्ष व्यवहार किया भी जाता है। ये पुलिस का काम रहता है, कर्तव्य होता है। किसी भी देश एवं वहां की कानून व्यवस्था की नींव वहां के देश की पुलिस ही होती है। धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव को न लेकर सामान्य रूप से न्यूट्रल रहती है, निष्पक्ष व्यवहार करती है। बात करें देश के यातायात की रीढ़ की हड्डी की, तो वो है ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस सड़क पर होने वाले दैनिक ट्रैफिक जाम को अपने अनुसार भी नियंत्रित करती है। अगर सड़कों पर अधिक ट्रैफिक जाम होगा तो लोग समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में असमर्थ होंगे। सड़क सुरक्षा की यदि बात करें तो हेलमेट को लेकर काफी जागरूकता के अभियान भी पुलिस चलाती है। तो इस प्रकार समाज में भारतीय पुलिस का मुख्य योगदान कानून व्यवस्था, सुरक्षा और अपराध नियंत्रण, आपातकालीन सहायता, जांच और न्याय, सामुदायिक पुलिसिंग, भीड़ और यातायात प्रबंधन, पुलिस की सफलता जनसाधारण के सहयोग पर ही निर्भर करती है। बात करें उद्देश्यों की, तो पुलिस प्रशासन के अंतर्गत पुलिस की भूमिका, स्थिति एवं दृष्टिकोण समझकर जनता में आत्मशक्ति एवं आत्मविश्वास की दशा की मनोवृत्ति का अध्ययन कर पुलिस नीति के लिए बनाई जा रही योजनाओं में सहयोग प्रदान करना, और इसके साथ बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जैसे सेवार्थ कटिबद्धता, जो संपूर्ण उद्देश्य कर्तव्य की व्याख्या करता है, समाज व जनता में शांति, जनता की समस्याओं का समाधान करना, जनता का पुलिस पर विश्वास करवाना, पुलिस का व जनता के बीच का संबंध, पुलिस कर्मियों तथा जनता के दृष्टिकोण को जानना, पुलिस प्रशासन के समक्ष आने वाली समस्याओं चुनौतियों को रेखांकित करना, समस्याओं के सुझाव प्रस्तुत करना। इस प्रकार पुलिस और जनता के बीच मैत्रीपूर्ण एवं स्वैच्छिक संबंध प्रजातांत्रिक प्रणाली की मूलभूत आवश्यकता है। यही नहीं, प्रजातांत्रिक प्रणाली की सर्वांगीण सफलता के लिए पुलिस जनता संबंधों को मजबूत स्तंभ के रूप में स्वीकार किया गया है। इस अवधारणा को समझने हेतु सबसे ज्यादा आवश्यकता पुलिस की है। ऐसा इसलिए है कि पुलिस को ही जनता की समस्याओं से निपटना होता है। जनता की समस्याओं को समझने और उनका तार्किक तरीके से समाधान करने के लिए गहरी संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। दोनों के बीच सामुदायिक बोध पहली शर्त है। कानून व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन और सामाजिक परिवर्तन की ठीक सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए नागरिकों की आवश्यकता पड़ती है, तो दूसरी ओर प्रभावी कर्तव्य पालन एवं विभिन्न कार्यों के समुचित संपादन क्रियान्वयन के लिए पुलिस को भी नागरिकों के सहयोग की जरूरत होती है। बेहतर तालमेल से पुलिस जनता के संबंध मजबूत होते हैं, जो सुरक्षित समाज के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर श्री अभिषेक शिवहरे से तरुण शर्मा की बातचीत का पुनः प्रसारण। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। श्री विजय की टीवी के पार्टी को 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें मिली हैं और उन्होंने 120 विधायकों का समर्थन जुटाया है। श्री विजय 1967 के बाद राज्य के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसी भी द्रविड़ पार्टी से नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक रूप से दी जाने वाली राशियों के भुगतान में चूक कम हो सकेगी। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। झुंझुनू के बगड़ कस्बे में करीब 150 साल पुरानी फतेह सागर और भूतनाथ तालाब अब नए स्वरूप में नजर आएंगे। केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत करीब 1,38,00,000 रुपए की लागत से दोनों तालाबों की कायाकल्प का काम शुरू हो गया है। परियोजना के तहत तालाबों के घाटों और सीढ़ियों का पुनरुद्धार किया जाएगा। तालाबों के जीर्णोद्धार से स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश भर में आज मातृत्व दिवस उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। ये दिन माताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ममता, त्याग और समर्पण की सबसे पवित्र भावना है। उन्होंने कहा कि माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है जो हमें संस्कार,

0: साहस और सही मार्ग पर चलना सिखाती है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 45.7 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रहा, जैसलमेर में 45, फलौदी में 44.8, जोधपुर में 43.9, चित्तौड़गढ़ में 43.8 और बीकानेर में 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने आज जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों तक पश्चिमी जिलों में तेज गर्मी और लू चलने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी जिलों में इसके विपरीत आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम मुमल।

0: मोमल कार्यक्रम सुनने वाली सभी प्यारी सखियों को आपकी अपनी रेडियो सखी प्रीति भाटिया
1: और आरती का प्यार भरा
0: नमस्कार। और आज इतवार है, इतवार को हम अपनी सखियों से करने गुफ्तगू और दिल की ढेरों बातें साझा लेकर हाजिर हैं उनका अपना कार्यक्रम। तो आरती, हम जानते हैं कि आज एक बहुत स्पेशल दिन है, बहुत विशेष दिन है और हमारी सभी सखियां बड़ी शिद्दत के साथ इस दिन को, इस भावना को न केवल मानती होगी बल्कि इस दिन को अपने प्रिय जनों के साथ मनाती भी होंगी, क्योंकि आज है
1: मदर्स डे।
0: बिल्कुल, मातृ दिवस। तो अपने कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं निदा फाजले साहब की इन दो पंक्तियों के साथ कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। तो माँ तो वही है कि जिसे न केवल हमारी जज्बात समझ में आते हैं बल्कि हम चाहे उसकी आंखों से दूर हो पर न जाने क्यों जब बहुत दुखी होते हैं ना, बहुत टीस सी उठती है दिल में, कहीं भी माँ बैठी होती है उसे भी वही महसूस होता है। तो हमारे दिल के तार खुशी में, गम में, हर एक समय अपनी माँ से कितने जुड़े होते हैं ये हम सभी जानते ही हैं।
1: सही कहा प्रीति आपने कि माँ का जो तार है बच्चों से वो ऐसा होता है कि मतलब उसके बारे में कहना भी हमारे लिए संभव नहीं है। ये ऐसा प्रेम होता है जिसका वर्णन करना किसी के लिए भी शायद संभव नहीं है। माँ जो है अपने बच्चों को इस कदर अपने आप में समेटे हुए रहती है कि बच्चों के दुख सुख हर बात का पता माँ को बिन बोले ही चल जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हम देखते हैं कि भाई एक माँ ने अपने बच्चे के लिए क्या नहीं किया। अब एक आम जो जिंदगी है उसी में हम देखते हैं प्रीति की माँ, मतलब जब हम कवारे होते हैं, हमारी शादी नहीं होती, तब तक हम खुद अपनी माँ के आंचल में खेलने वाले होते हैं। घर में जब रहते हैं तो हमें लगता है हमारी मम्मी, हमारी माँ हमारे सामने होनी चाहिए। हम स्कूल से आते हैं तो हम अपनी माँ को ढूंढते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो हम अपनी माँ से पूछते हैं, उनके साथ रहते हैं, एक साये की तरह हम अपनी माँ के साथ रहते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है, ससुराल चले जाते हैं और फिर जब हम खुद माँ बनते हैं तो हमें समझ में आता है कि माँ क्या है और माँ का प्यार क्या है। क्योंकि इतने समय तक तो वो प्यार जो है वो तो हम खैर महसूस करते ही हैं, लेकिन असली पता, असली कनेक्शन जो है माँ के साथ, हमारा जो संबंध है वो हमें तभी महसूस होता है जब हम माँ से दूर हो जाते हैं। और जब हम खुद माँ बनते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे मन में कैसे भाव होते हैं अपने बच्चे के लिए।
0: बिल्कुल।
1: और वही भाव हर दुनिया की हर माँ के मन में अपने बच्चों के लिए
0: होती है। और मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि हम चाहे बच्चे हो, चाहे हम

0: व्यस्क हो जाएं, किशोरावस्था में हो या शायद बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो, प्रौढ़ हो, हर उम्र में ना मतलब सभी को माँ चाहिए होती है। मुझे याद है कि आज भी जब मैं मेरी मम्मी, हम बोलते हैं मम्मी का घर, पापा का घर जरा कम हम बोलते हैं, तो जैसे उसमें जाते हैं तो दरवाजा खोलते हैं मम्मी, पहला शब्द ही निकलता है। और अगर मम्मी 5 मिनट लेट आ जाए, हो नहीं, तो हमें बड़ी अजीब सी कोफ्त महसूस होती है, क्योंकि हमें माँ चाहिए होती है। और शायद इसीलिए कहते हैं ना कि कई बार हम सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें अपने से बहुत दूर इस संसार में किसके भरोसे भेजा होगा। तो अंग्रेजी में बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, दैट्स व्हाई ही क्रिएट मदर्स।
1: सही कहा। और देखिए माँ जो होती है ना, उस पर हमारा पूरा अधिकार समझते
0: होता है।
1: हम कुछ भी करना चाहें उनसे हम परमिशन भी नहीं लेते कि मम्मी मैं ये करूं क्या। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे मेरा कोई काम है तो मैं अपनी माँ पर वो काम डाल सकती हूँ। अगर मेरे बच्चे छोटे हैं और मुझे कोई जॉब में जाना है, फिर भी अगर मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे बच्चों को देखे, तो हम उसके लिए भी सिर्फ अपनी माँ की तरफ ही देखते हैं। हालांकि देखिए परिवार में जब हम जाते हैं तो हमारी सास भी जो होती है वो हमारी माँ समान ही होती है, वो भी हमारे लिए वही प्रेम रखती है।
0: लेकिन माँ तो माँ होती
1: है, तो माँ ही होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है।
0: तो एक परिवार में बड़ी माँ होती है, दादी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि आरती हम हिंदुस्तान में जो संयुक्त परिवार में है, शायद संयुक्त में ना हो, जिस कदर हमारे रिश्ते जुड़े हैं, वी पीपल आर ब्लेस्ड। क्योंकि कई बार ना माँ के ममता की जो छाया है या माँ का ममता का जो आंचल है, वो हमें और मजबूती से मिलता है। दादी भी उतना ही प्यार देती है, नानी भी देती है,
1: और बड़ी माँ भी देती है, चाची हो, सभी का
0: प्यार। तो कोई ना कोई एक रिश्ता हमें जरूर अपने आसपास माँ के अलावा ऐसा मिलता है जो बिल्कुल माँ जैसा ही होता है।
1: पर आज के समय में प्रीति तो दिक्कत ये है कि अब जो है न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, लोग अपने परिवारों से दूर हो गए हैं, तो सिर्फ अपने माता पिता को ही बच्चे देखते हैं, अपने बाकी परिवार के जो लोग हैं उनके साथ उनका कनेक्शन धीरे धीरे टूटता जा रहा है। पर ये बहुत ही गलत है। इसलिए हमें ये कोशिश करने की, भले देखिए किसी भी वजह से हम अपने परिवार से दूर रह रहे हों, लेकिन समय समय पर अपने बच्चों को अपने परिवार में ले जाएं, ताकि माँ के अलावा जो दूसरे घर के लोग हैं उनसे उनका वही रिश्ता जो है गहराई वाला और प्रेम वाला वो बना रहे हैं।
0: और बात प्रेम की आई तो मुझे याद आ रहा है कि जैसे जब मेरी दादी भी थी तो लगता था कि वो गली में कोई भी बच्चा निकल रहा हो जो मेरे पापा के हम उम्र हो, आसपास हो, या फिर कोई होते हैं ना ऐसे शहर से बाहर रहते हैं कभी आ रहे हो, तो बड़े प्रेम से सबसे बात करना, सर पे हाथ फेरना, तो हमें लगता था क्या है, मतलब ऐसे क्या हर किसी के ऊपर लुटा देते हैं प्यार। पर इस उम्र में समझ में आता है कि एक उम्र के बाद माँ की उम्र की हर औरत में हम वही ममता देखते हैं, और शायद संतान की उम्र के हर बच्चे में हम वही छवि देखते हैं। और सुष्मिता सेन की एक पंक्ति है, वो मुझे एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था बहुत अच्छा, कि उनसे उनकी बच्ची जो सुष्मिता सेन ने अडॉप्ट करी थी, रिनी नाम शायद उस बच्ची का है, उसने कुछ पूछा कि क्योंकि वो अडॉप्टेड चाइल्ड है तो उसे स्कूल में किसी ने कुछ कहा होगा कि मम्मी मैं कहाँ से आई, तो बड़ा अच्छा सा जवाब उसकी माँ ने दिया था कि सभी जो बच्चे हैं वो वॉम्ब से आते हैं, लेकिन तुम मेरे हार्ट से आई हो।
1: सही।
0: तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जन्म ना दिया हो पर आपके तार बहुत मजबूती से जुड़ते हैं, तभी संसार में यशोदा भी उतनी ही मजबूत माँ के रूप में जानी जाती है जितनी और माँ। तो बातें तो और भी है अपनी बहनों से करने के लिए, लेकिन क्यों ना हम एक मीठा सा गीत और कुछ
1: सखियों को सुनाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और आज मदर्स डे है तो इसलिए माँ के बारे में ये प्यारा सा गीत हम अपनी सखियों को सुनाते हैं।

0: में आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: सखियों ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और मातृ दिवस की बात हो रही थी तो मातृ दिवस पर ही आज सुनते ही परिचर्चा जिसमें भाग लिया है मधुलिका और मेघा चालानी ने और इसका संचालन कर रही हैं प्रार्थना बिस्सा।
7: तो आइए सुनते हैं उन महिलाओं की कहानी जो हमारी और आपकी तरह है पर जिन्होंने हमसे थोड़ा सा हट करके कुछ किया है। हम कोशिश करते हैं कि उनसे हमें कुछ प्रेरणा मिले, हम कुछ अच्छा सीख पाए।
8: लबों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं आपसे चर्चा करने एक ऐसे विषय के बारे में जो कि केवल एक विषय नहीं जो संपूर्ण सृष्टि है अपने आप में, एक शब्द जो कि पूरे संसार को समेटे हुए है। हाँ बिल्कुल सही जाना आपने, माँ। माँ निस्वार्थ प्रेम त्याग और ममता की मूरत है जो ईश्वर का रूप मानी जाती है। माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि यह प्रेम है, त्याग है, ममता है, समर्पण है और समर्पण का प्रतीक है। इस दुनिया में अगर कोई हमें बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता है ना तो वो सिर्फ हमारी माँ है। माँ ही हमें इस दुनिया में लाती है, चलना बोलना जीना और जीवन के नए तरीके हमें सिखाती है, नित नई चीजों से हमें अवगत कराती है, यह सारी दुनिया हमें दिखाती है। हाँ दोस्तों वो माँ है। माँ का महत्व हम शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते, वह तो हमारी पहली गुरु है। जब हम गिरते हैं तो वही हमें संभालती है और हम दुखी होते हैं तो वही हमें हिम्मत भी देती है। माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए हर कठिनाई सहन कर लेती है, कभी कोई शिकायत नहीं करती। और रही बात मदर्स डे की तो ये हमें एक अवसर जरूर देता है कि हम अपनी माँ के प्रति एक आभार को व्यक्त कर पाए। वैसे दोस्तों माँ के लिए आभार जितना व्यक्त किया जाए कम है क्योंकि बहुत कठिन है माँ का आभार व्यक्त कर पाना, पर फिर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो एक दिन बना है वो मदर्स डे है, बाकी तो हर दिन हर पल माँ का है। सच यह माँ के लिए हर दिन खास होता है, हमें सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन उनका सम्मान करना चाहिए, हर दिन उनका ख्याल रखना चाहिए। आज के इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी माँ को धन्यवाद जरूर दें, हर सुबह जब उठें तो माँ का वंदन करें और उन्हें धन्यवाद दें जिन्होंने यह सृष्टि आपको दिखाई और जीवन जीना आपको सिखाया, क्योंकि माँ के बिना जीवन अधूरा है, माँ ही एक जीवन का आधार है। तो चलिए इसी कड़ी में आज मैं आपको मिलवा रही हूँ, हमारे साथ है ऐसी माएँ जिन्होंने अपने जीवन में बेटी बनकर भी जीवन को जिया, अपनी माँ का सानिध्य भी पाया और एक माँ बनकर भी अपना जीवन जी रही हैं और अपने बच्चों को उसी तरह से लालन पालन कर उन्हें जीवन जीने के तरीके सिखा रही हैं। माँ और मदर्स डे के बारे में हम आगे चर्चा करें, उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप एक अपना

0: और मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे दो बेटे हैं, मैं यहीं जैसलमेर में ही रहती हूँ, मैंने मेरी परवरिश यहीं जैसलमेर में ही हुई है, तो बस यही है मेरा एक छोटा सा परिचय।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने अपना परिचय हमें दिया। अच्छा मेघा जी, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगी कि आप एक माँ भी हैं और एक आप योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो आप कैसे मैनेज करती हैं अपना घर परिवार अपना, और आपने बताया हमें कि आप सिंगल पेरेंट हैं, तो आप अपने जो योगा क्लासेस हैं और अपना जो पेरेंटिंग है बीइंग अ मदर, आप कैसे मैनेज करती हैं अपना दिनचर्या को?
0: जैसे मुझे तो यहाँ जैसलमेर में मेरी क्लास चलाते हुए 10 साल हो गए। अब तो
1: अच्छा
0: मेरे
1: अच्छा
0: बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं, बट जब वो पहले छोटे थे तो बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि मैं मतलब सुबह बैच लेती थी, शाम को बैच लेती थी, बच्चों का स्कूल, बच्चों की मतलब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करना, उनके एग्जाम्स, सब चीज़ों को मैनेज करना, उसके अलावा बच्चों को संस्कार सही देना ताकि वो गलत रास्ते पे नहीं जाए,
1: बिल्कुल सही,
0: और वो भी एक माँ का कर्तव्य होता है। चाहे मतलब मैं ये मानती हूँ कि पिता की भूमिका भी बहुत मायने रखती है बच्चों की परवरिश में, लेकिन अगर पिता जिंदगी में नहीं होते हैं तो माँ को इन दोनों ही चीज़ों की भूमिका को निभाना पड़ता है।
1: दोहरी
0: ये
1: भूमिका निभानी
0: जी हाँ,
1: पड़ती
0: तो
1: है, जी
0: ये मतलब एक एक सिंगल पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: मुश्किल होता है। और वैसे आमतौर पर हम जो बातें करते हैं मेघा जी, जो मैंने सुना है कि पिता जो है वो आसमान होता है, वैसे देखिए हर रिश्ते की एक वैल्यू है, अलग महत्व है हर रिश्ते का जीवन में, ऐसे ही
0: जी
1: पिता का
0: बिल्कुल
1: भी बहुत महत्व है, पर आमतौर पर हम ये मानते हैं कि पिता की जगह तो माँ ले पाती है,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: माँ की जगह एक पिता कभी नहीं ले सकता, तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं?
0: देखिए ये तो मतलब जहां तक मैंने अपनी जिंदगी के तजुर्बे से देखा है, माँ जरूर एक पिता और माँ दोनों की भूमिका को निभा सकती है, बट भगवान न करे कभी किसी पिता की जिंदगी में भी ये तकलीफ आए, क्योंकि एज ए सिंगल पेरेंट मैंने इन चीज़ों को बहुत जगह फेस किया है। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चों को जिंदगी में पिता की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर
1: बिल्कुल
0: जगह
1: सही
0: आखिर
1: कह
0: एक
1: रहे हैं,
0: औरत की एक क्या कहते हैं जिसको एक सीमा होती है, एक दायरा होता है, वो उसके आगे उस मतलब वो नहीं जा सकती, तो उन जगहों पर पिता की कमी बच्चों को हमेशा महसूस हुई है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से हर प्रयास किया है कि मैं मेरे बच्चों को कभी इस कमी को महसूस ना होने दूँ।
1: बिल्कुल बहुत अच्छे मेघा जी। हम सच बताएं, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है आपको हमारे बीच पाकर कि आपने एक पिता की भी भूमिका निभाई जीवन में और एक माँ की भी भूमिका निभाई और अपने घर को भली भांति रूप से चलाया, बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। आपके बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं?
0: मेरा बड़ा वाला बेटा तो चार्टेड अकाउंटेंट है, उसको 2 साल हो गए जॉब करते हुए, और छोटा वाला जो है वो इंजीनियर है, वो आईआईटी रुड़की से पास आउट है, और भगवान की दया समझ लीजिए, या मतलब जो मैंने खोया उसका नुक्स भरपाई भगवान ने की है, तो आज भगवान की दया से मेरे दोनों बच्चे बहुत सेटल हो चुके हैं और सही रास्ते पर है, कहीं
1: जी
0: मतलब
1: मेघा
0: भटके
1: जी,
0: नहीं है।
1: ये आपकी परवरिश का ही नतीजा है, आपने उन्हें जो संस्कार दिए, आपने उन्हें जो परवरिश दी, तो आपको एक रिवॉर्ड हम कह सकते
0: बिल्कुल
1: हैं कि
0: बिल्कुल
1: भगवान की
0: बिल्कुल
1: तरफ से ये मिला है, और इसमें आपने खूब मेहनत की होगी वो तो हम मान ही सकते हैं।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल, थैंक
1: चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके।
0: यू।
1: अच्छा मधुलिका जी, आप जी थोड़ा नजर डालेंगी कि आपके बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं?
2: बेटा बड़ा है मैम, वो फाइनल ईयर में है, बेटी अभी 12th किया है, बेटी ने 12th किया है, बेटा
1: अच्छा
2: फाइनल
1: अच्छा
2: ईयर में है। पर मैं ये मानती हूँ कि अभी छोटे ही हैं ऐसे देखो तो बच्चे, पर
1: जी
2: वो है बहुत समझदार। आज के जनरेशन को देखते हुए दोनों भाई बहन अच्छे समझदार हैं
1: जी
2: और
1: बहुत
2: हर
1: अच्छी बात
2: परिस्थिति
1: है,
2: को समझते हैं कि कैसे हमें हर चीज में निभाव करना है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है मधुलिका
2: जी
1: जी। और आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देती है, मतलब हर माँ बाप जो रहते हैं या माँ रहती है तो उनकी कुछ अपेक्षाएं अपने बच्चों से होती हैं, तो आपकी अपने बच्चों से क्या अपेक्षाएं हैं?
2: प्रार्थना जी, ऐसे तो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे सफल हो, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, खैर ये
1: बिल्कुल
2: सबसे बड़ी बात है, पर मैं ये मानती हूँ कि उससे पहले आप उनको ये संस्कार दे कि वो बड़ों का मान सम्मान करे, आदर करे,
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक
2: और
1: अच्छे नागरिक बने,
2: बस
1: अच्छे
2: अच्छे
1: इंसान बने।
2: नागरिक और इंसान बने, और वो जहाँ बैठे ना, मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे जहाँ बैठ के उठे हैं ना, तो दो लोग यही कहें कि बच्चे अच्छे संस्कारी हैं। कुछ पा लेना, एक पद पा लेना बड़ी बात नहीं है, पर आपने क्या कमाया है जिंदगी में वो पा लेना बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपने बोली कि जहां से वो बैठकर उठें तो उनमें माँ बाप

0: संस्कार झलकने चाहिए कि ये किसकी संतान है और इतनी अच्छी परवरिश आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मधुलिका जी, आप शायद गांव से भी बिलोंग करती हैं।
1: जी,
0: है जी, किस गांव से आप बिलोंग करती हैं?
1: मेरा गांव है पोकरण के पास है, उजला गांव है।
0: उजला गांव
1: जी।
0: अच्छा, तो थोड़ा सा आप हमें बताएंगी कि अभी पहले के टाइम में जो पेरेंटिंग होती थी, जो पहले की माएं थी या दादी नानी थी,
1: बिल्कुल,
0: तो वो जिस तरह से बच्चों का लालन पालन करती थी
1: जी,
0: और आजकल का जो मातृत्व है
1: जी,
0: आज
1: जी,
0: की जो माएं हैं वो जिस ढंग से लालन पालन कर रही है, माँ तो देखिए माँ होती है
1: जी जी
0: है ना,
1: बिल्कुल,
0: फिर भी जो फर्क आया है पहले के जो तरीके में लालन पोषण पालन पोषण के तरीके
1: जी,
0: में
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और आज का जो तरीका है, तो उसमें आप क्या अंतर पाती हैं?
1: देखिए प्रार्थना जी, के जहाँ तक मेरी शादी को 20 साल हो गए, तो मैंने 20 साल के इस छोटा सा ही फासला है, आप ऐसे देखो तो,
0: हाँ,
1: इतने छोटे से फासले में भी मैंने ये नोटिस किया है कि जब हम गांव में थे ना, तो जो गांव का माहौल वातावरण, भले ही माए पढ़ी लिखी नहीं थी पर वो हर इलाज जानती थी,
0: हर इलाज जानती
1: ठीक है,
0: बिल्कुल,
1: जैसे ही बच्चे को थोड़ा बहुत भी कुछ होता था ना, तो वो उनके पास हर दर्द की दवा होती थी,
0: बिल्कुल सही,
1: बहुत ज्यादा ही कुछ हाथ से बात निकलती दिखती थी तभी हॉस्पिटल जाते थे या फिर डॉक्टर की सलाह वगैरह जैसे वैद्य वगैरह की लेते थे, बाकी अदरवाइज माँ तो हर चीज की दवाई मतलब उनके पास होती थी कि बच्चा रो रहा है तो उसको ये दिक्कत होगी, तो घर में ही जैसे होता था कि भाई इसको ये घासा दे दो या फिर ये चीज छोटी दे दो, मतलब आयुर्वेदिक उपाय उनके पास होते थे और वो सच में कारगर। और आप एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे घूम फिर के वापस वही चीज वापस आ रही है कि भले ही दुनिया आगे बढ़ रही है, जनरेशन आगे बढ़ रही, पर लोग सच में आज वापस आयुर्वेदिक की तरफ ही आ रहे हैं,
0: की तरफ
1: आ रहे हैं। तो ये चीजें पुराने टाइम में जो हमारी माए दादियां करती थी ना, वो मैं सोचती हूँ कि वो बिल्कुल सही करती
0: सही करती थी।
1: हाँ,
0: और मैंने भी ऑब्जर्व किया कि अब की जो माए हैं
1: जी,
0: तो वो ये जो एलोपैथी से अपने बच्चों को थोड़ा दूर रखना चाहती है,
1: बिल्कुल,
0: वो चाहती है कि ये जो केमिकल जितना ज्यादा दवाइयों के थ्रू हमारे बच्चों के पेट में जा रहा है वो ना जाए, और जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं उनसे उनका पालन पोषण हो या उन्हें उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो।
1: जी,
0: तो ये बहुत अच्छी बात है।
1: इस पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, मेरी छोटी सी भतीजी है,
0: अच्छा,
1: जो उदयपुर में रहते हैं, मेरे काकू साहब उनकी पोती है, तो वो बीनी हमारे आज भी आप वो योग टीचर भी है,
0: अच्छा,
1: और वो अपनी बच्ची को अभी से योग करवा रहे हैं, और क्या खाना है कैसे खाना है, मतलब घर का खाना बाहर का कुछ भी नहीं, घर की जैसे कोई दवाई है तो वो बना के दो, वो आज भी फॉलो कर रहे हैं, वो पुरानी चीजों को अपने दादी सासू जी वगैरह से सब सीख के वो चीजें ये फॉलो कर रहे हैं
0: जी जी।
1: और हम लेटेस्ट अभी देख के आए, जब मैंने बोला ना गरिमा तुम इतना कैसे कर लेती हो, तो वो बोले जीजा हमने बचपन से मतलब इसको यही चीज की है, तो अब ये खुद आदि हो गई,
0: इसको फॉलो करने
1: लगे। तो हम बच्चों को जैसे
0: जैसे बच्चों को सिखाएंगे
1: बस यही बात है, वो सीख जाएंगे।
0: वो जाता है ना, बच्चे तो क्या है कि कच्ची मिट्टी की तरह है।
1: अब क्या होता है कि माए मतलब जैसे सोचते हैं कि चलो बच्चा रो रहा है परेशान हो रहा है, चलो इनको थोड़ा फोन दे देते हैं, बच्चा थोड़ी देर बैठेगा तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी, उस चक्कर में क्या होता है फिर उसको आदत लग जाती है।
0: बिल्कुल सही। हाँ, हम खुद को फ्री करने के लिए, अपना फ्री टाइम पाने के लिए हम बच्चे को एंगेज तो कर रहे हैं, लेकिन
1: बिल्कुल
0: ये नहीं देख रहे कि हम
1: गलत जगह
0: किस चीज में एंगेज कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसे ऐसा क्रिएटिव काम कुछ दिया जाए करने के लिए जिससे उसके जो लाइफ स्किल्स हैं वो बढ़े।
1: और मेरे बच्चे तो छोटे थे ना, उस टाइम फोन वाला सिस्टम ही नहीं था, तो मैं तो भगवान की शुक्रगुजार हूं,
0: बिल्कुल
1: मेरे बच्चे के फोन ही नहीं था और बच्चे बिना फोन के ही बड़े हुए। 12th के क्या मेरे बेटे को तो अभी मैंने फाइनल में फोन दिया है।
2: ओ, गुड,
0: तो बहुत ये कह सकते हैं कि बहुत लकी है वो माए जिनको
1: बस
0: जब अपने बच्चों को बड़ा करने का टाइम था, संस्कार डालने का टाइम था, उस समय फोन नहीं थे।
1: बिल्कुल,
0: देखिए फोन यूज करना खराब नहीं है, लेकिन बहुत छोटे बच्चों को समझ नहीं होती कि उन्हें क्या देखना है और कितनी देर उसका
2: और वो अननेसेसरी इतनी रीलें वगैरह देखते हैं, तो बच्चों के दिमाग पे इस चीज का बहुत गलत प्रभाव
1: पड़ता है। और जो गांव में हमारे मैम एक ही फोन था, जैसे एक गांव में दुकान थी उस पे लगा था, तो सबके फोन वही आते थे लैंडलाइन पे, तो उस फोन का इतना बड़ा महत्व था हमारी जिंदगी में कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब फोन आता था ना, तो दुकान से कोई बच्चे को भेजते थे, वो भैया कि आपका किसी रिलेटिव का फोन आया है तो आप आइए, तो हमें इतनी खुशी होती थी मतलब उसमें आवाज सुन के कि भी हमें समाचार मिल रहे हैं उनके। और अब घर घर में फोन है ना, तब भी वो फीलिंग नहीं,
0: तब भी वो फीलिंग,
1: और उसकी जो एक बात ही अलग थी, 12-12 बजे तक ऐसे वेट करते थे कि भाई फोन हमारा आ जाए, हमारा आ जाए, मतलब इतना बढ़िया लगता था।
0: बिल्कुल सही बात है।

0: बच्चे तो क्या है, देखिए जो माता पिता होते हैं वो कुम्हार हैं
1: बिल्कुल,
0: और
1: हाँ
0: बच्चे
1: जी
0: जो है वो कच्ची मिट्टी
1: मिट्टी,
0: हैं,
1: हाँ हाँ
0: और माँ का स्पेशली इसमें बहुत बड़ा
1: बहुत
0: रोल
1: बहुत
0: होता है।
1: रोल होता है।
0: तो जैसा भाई कहते हैं ना, मेरी माँ ने बोला है इसलिए मैं, तो बच्चे कहेंगे ना मेरी माँ ने बोला है
1: मम्मी ने
0: इसलिए
1: मना
0: मैं,
1: किया,
0: अपने
1: मैं
0: मम्मी
1: नहीं
0: ने मना किया था,
1: करूंगा,
0: मैं ये काम नहीं
1: नहीं नहीं
0: करूंगा।
1: करूंगा, सही
0: तो माँ का
1: बिल्कुल,
0: बहुत बड़ा रोल होता है।
1: हाँ
0: अच्छा मेघा जी, आपसे मेरा एक सवाल है
1: जी,
0: कि आजकल जैसे हम देखने में आ रहा है कि परिवार जो है वो न्यूक्लियर फैमिली
1: हाँ
0: ज्यादा हो
1: जी
0: गई है,
1: हाँ जी
0: पहले
1: हाँ जी,
0: संयुक्त तो परिवार में लोग रहा करते थे, तो उस समय के बच्चों में अलग प्रभाव होता था, संयुक्त तो
1: बिल्कुल
0: परिवार का प्रभाव जो उन पे पड़ता था, और आज जो ये एकाकी परिवार हो गए,
1: जी।
0: तो कहाँ तक सही है, इससे क्या डिफरेंस आता है बच्चों में?
1: देखिए मैं खुद मतलब जैसे मेरा ससुराल तो जोधपुर ही है, तो मैं मेरे दोनों बच्चों के संग यहाँ अकेली ही रहती थी, तो मैंने तो उस चीज को बहुत महसूस किया था
0: जी
1: कि घर में जो है वो दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, इन इनका होना जो है वो बहुत जरूरी होता है। एक एक मोरल सपोर्ट मिलता है, प्लस बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं,
0: बिल्कुल सही
1: बच्चे
0: बात
1: फैमिली
0: है।
1: की वैल्यूज को सीखते हैं, बच्चों में सहन शक्ति आती है किस चीज को, मतलब आजकल के बच्चों में ये है कि मतलब वो ना नहीं सुन सकते
0: ना नहीं सुन सकते, हर चीज
1: और
0: उन्हें हाजिर
1: हाजिर चाहिए,
0: चाहिए।
1: जबकि
0: हाँ
1: ज्वाइंट फैमिली में तो आपको कितनी बार मना भी किया जाता है, भाई तुम ये काम नहीं करोगे, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस इतने होते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, ये नहीं खाना
0: बिल्कुल
1: है, जो
0: सही,
1: बन रहा है वो ही खाओगे। आजकल तो फिर सिंगल मतलब सिंगल फैमिलीज है, तो उसके हिसाब से तो भाई घर में अलग अलग वैरायटी बनती है, पति को जो पसंद है वो अलग बनेगा, बच्चे को जो पसंद है वो अलग बनेगा,
0: लेकिन
1: और
0: जॉइंट फैमिली में ये पॉसिबल
1: ये
0: नहीं।
1: पॉसिबल नहीं क्योंकि सब साथ में होता है, तो एक मतलब क्या कहते हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स साथ में, तो उनका भी एक डर घर में होता है कि बड़े हैं तो वो क्या कहेंगे, वो डांटेंगे, ऐसे मत करो, बच्चों को
0: तो
1: प्यार दुलार के
0: संयुक्त
1: साथ
0: परिवार
1: में,
0: में बच्चे एडजस्टमेंट सीखते हैं,
1: बिल्कुल प्यार दुलार के साथ में थोड़ा कंट्रोल भी होता है बच्चों के ऊपर।
0: जो कि
1: आजकल
0: जरूरी
1: बच्चों को
0: है,
1: वो दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची वाला प्यार वो कितना मिस करते हैं,
0: वो मिस करते हैं। बिल्कुल
1: और एक
0: सही,
1: दादी जो कहानियां सुनाती थी, आजकल मम्मियों के पास कहाँ टाइम है बच्चों को
0: माँ
1: कहानियां
0: शब्द
1: सुनाने
0: क्या
1: का।
0: है, माँ अपने आप में एक ममता,
1: बिल्कुल
0: ममता माँ
1: हाँ,
0: में भी होती है, ममता दादी में भी होती है, चाची में भी
1: एक
0: होती
1: और
0: है,
1: हर
0: नानी
1: औरत
0: में
1: एक
0: भी
1: माँ
0: होती है,
1: का रूप है।
0: हर औरत में माँ है। तो वो
1: बिल्कुल
0: जो
1: बिल्कुल
0: भी रिश्ता है तो उसके अंदर वो ममता तो है ही, तो बच्चे उस ममता से वंचित रह जाते हैं, उन्हें
1: बिल्कुल
0: माँ की ममता तो मिलती है लेकिन वो ममता जो दादी नानी के अंदर छुपी हुई है, जो मासी बुआओं
1: बिल्कुल
0: में छुपी हुई है, तो संयुक्त परिवार का जैसे जैसे चलन कम होता जा रहा है तो बच्चे उस
1: एकाकी होते जा
0: ममता
1: रहे
0: से
1: हैं, उनको
0: वंचित
1: मतलब
0: होते जा रहे हैं।
1: वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, वो आजकल देखिए बच्चे फोन ज्यादा यूज करते हैं तो वो बाहर खेलने नहीं जाते हैं,
0: बाहर खेलने नहीं
1: तो
0: जाते,
1: उनमें वो स्पिरिट खत्म हो गई है
0: बिल्कुल
1: कि
0: सही,
1: स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खत्म होती जा रही है, बच्चों को गेम्स पर इंटरेस्ट ही नहीं है।
0: हाँ उनके सामाजिक विकास में थोड़ी कमी आ रही
1: बिल्कुल
0: है, बिल्कुल
1: हाँ,
0: सही।
1: और सबसे ज्यादा डैमेज उनका ब्रेन होता है जब वो इतना फोन यूज करते हैं, तो पढ़ाई से भी विचलित होते हैं प्लस खेलकूद से भी, ये उम्र ही उनकी खेलने कूदने की। हम छोटे थे इतनी साइकिलिंग करते थे, हमारा मतलब शाम को 5 से 7 का टाइम हमारा बाहर गली में ही होता
0: बाहर
1: था खेलने का,
0: होता
1: कितने
0: था,
1: गेम खेलते थे हम लोग, अब वो सब चीजें
0: बिल्कुल
1: खत्म हो
0: सही,
1: गई।
0: बिल्कुल। तो चर्चा को हम आगे ऐसे ही जारी रखेंगे और आपसे और बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले बताइए कि हम आपके चॉइस का कौन सा गाना आज हम आपको सुनवाएं
1: मैं बताती हूँ
0: जो माँ पर आधारित हो।
1: जी, मैं मेरे दोनों बच्चे साहिल और जतिन को ये गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, तो आप

0: चलिए, ये बहुत ही प्यारा गीत हमने सुना अभी, और सच कहूँ तो मेरी तो आंखें ही भर आई।
1: बहुत इमोशनल सॉन्ग है
2: ये गाना। मैंने कई बार गाया है, मतलब रिकॉर्ड भी किया है, गाया है। मतलब जैसे बच्चे दूर रहते हैं ना, तो कभी ऐसे फीलिंग हो जाती है बच्चों के लिए, मन में आता है
1: जी। और बच्चे हालांकि नहीं समझते, लेकिन माँ क्या दिल तो हमेशा बच्चों के लिए
2: बिल्कुल
1: कचोटता ही है।
0: बिल्कुल मधुलिका जी, आप सिंगर भी हैं
2: जी,
0: तो आप अलग अलग म्यूजिक शोज भी करती हैं
2: जी,
0: तो ऐसा भी होता होगा कि कहीं आपको प्रैक्टिस करनी होती होगी या म्यूजिक शो पर आपको कहीं जाना होता होगा, और जब बच्चे छोटे रहे होंगे
2: जी,
0: तब आप उस टाइम कैसे मैनेज करती थी?
2: देखो मैम, उस टाइम क्या होता था कि जैसे बच्चे छोटे थे ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे शुरू से ही बहुत सपोर्ट किया है, और अब भी कर ही रहे हैं वो। और खुद बच्चे इतने शुरू से समझदार रहे हैं कि वो खुद मैनेज करते थे, और मुझे इतने छोटे होके बोलते थे, मम्मा आपका प्रोग्राम, आप जाओ, हम दोनों भाई बहन कर लेंगे।
0: वाह क्या बात है।
2: और वो छोटी सी बेटी मेरी, मुझे याद है एक बार सिंक में ऐसे उसके हाथ नहीं पहुंचते थे, तो वो ऊपर बैठ जाती थी और बिट्टू ऐसे खड़ा रहता था, और सिंक में पैर डाल के और फिर ऐसे अपने बर्तन धो रही है, ठीक है। और वो छोटे छोटे नन्हे से हाथ उसके, और भाई पास में खड़ा है और वो उसको बता रहा है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मैंने एक चीज ये देखी कि बेटियां चाहे छोटी भी है ना, तब भी वो फर्ज निभा रही है कि भाई भाई खड़ा है पर उसको नहीं आ रहा है कि भाई कैसे बर्तन करने, वो सिर्फ उसको गाइड कर रहा है कि किट्टू ऐसे करने ऐसे करने, और वो किट्टू उसमें छोटे छोटे हाथों से सिंक में लटक रही है और वो कर रही है। तो वो लोग मैनेज कर लेते थे, और मैं
0: तो ये जो मातृत्व की जो एक भावना होती है वो शायद बच्चियों में जन्म के साथ ही वो भावना भी जन्म ले लेती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये कुदरती एक भगवान का वरदान ही समझो कि वो औरत को सब कुछ देख के ही भेजते हैं।
0: बिल्कुल,
2: चाहे सहन शक्ति हो, चाहे कुछ भी जिंदगी में हो, सबसे पहले औरत उस चीज को अच्छे से वो कर पाती है जितना आदमी नहीं कर पाता है।
0: बिल्कुल सही। देखिए कई बार हमने देखा है ना कि राह चलते कभी कभी हमें दिखाई दे जाता है, या किसी कोई कई बार हम देख लेते हैं कि दो भाई बहन जब जा रहे हैं साथ में, तो जो बहन होती है ना वो बड़ा अपने भाई का प्यार से ध्यान रखेगी। अगर भाई छोटा है तो बहन पूरा माँ का रोल निभा देती है, तो शायद वो भावना तभी से उनमें आ जाती है, मातृत्व वाली वो फीलिंग और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो उनमें तभी से होती है, तभी आगे जाकर भविष्य में वो एक अच्छी माँ बन पाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है।
0: तो बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों से बातें करके मुझे। और अच्छा, थोड़ा सा मैं अब ये जानना चाहूंगी कि आपके बच्चे जब आपको इस जगह देखते हैं, जैसे मेघा जी पहले आप बताइए कि आपके बच्चे जब आपको देखते हैं कि हमारी मम्मी आज योगा इंस्ट्रक्टर हैं, योगा टीचर हैं, और उन्होंने हमें अकेले ही पाला पोसा, अकेले ही हमें बड़ा किया है, तो वो आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, मतलब वो क्या आपको कैसे आपको अप्रिशिएट करते हैं?
1: नहीं, जैसे उन्होंने मुझे शुरू से संघर्ष करते हुए देखा है, तो वो मेरी इस चीज़ को मतलब मानते भी हैं, मेरा इतना रेस्पेक्ट करते हैं, प्लस मतलब वैल्यू भी देते हैं। आज घर में कोई भी डिसीजन लेना होता है तो सबसे पहले वो चीज़ मतलब मेरा ही डिसीजन सबसे पहले माना जाता है, सबसे

0: वो कहते हैं ना, एक वो पिता वाली जो जगह होती, वो आज मेरे घर में मेरी वो जगह है।
1: बिल्कुल। तो देखिए, आपने जब उन्हें माता पिता दोनों का प्यार दिया है, तो वो भी आपको दोनों रेस्पेक्ट दे रहे हैं। जो पिता को
0: बिल्कुल,
1: मिलना चाहिए वो रेस्पेक्ट, और जो माँ को मिलना चाहिए
0: मतलब मेरी
1: वो
0: मर्जी के
1: रेस्पेक्ट भी वो
0: बिना
1: आपको
0: आज
1: दे
0: वो
1: रहे हैं।
0: कोई भी डिसीजन नहीं लेते। चाहे आज मेरा बड़ा वाला बेटा 25-26 साल का है, उसे छोटा वाला 24 साल का है, लेकिन आज वो सेल्फ डिपेंड है, सब चीजें। लेकिन आज वो कोई भी स्टेप उठाते तो सबसे पहले वो मुझसे ही फोन करके सब चीजें कंसल्ट करते हैं कि मम्मी ये करना चाहिए, मम्मी ये करना चाहिए। मतलब तो मुझे अच्छा लगता है कि मतलब आज मैंने जो भी पहले संघर्ष किया उसका मुझे इतना अच्छा फल मिल रहा है।
1: बहुत अच्छे। माँ तो देखिए क्या कहें, खुदा होती है माँ। तो
0: बिल्कुल
1: बच्चों के लिए खुदा कौन है? तो इस
0: माँ,
1: संसार में अगर बच्चों के लिए कोई खुदा है तो माँ है।
0: मैं तो इसमें एक ही यही चीज कहना चाहूंगी कि बेटे बच्चे कपूत हो सकते हैं, लेकिन माँ कभी को माता नहीं होती।
1: माँ को माता नहीं होती, बिल्कुल सही कहा आपने।
2: और बच्चे जब घर में भी, जैसे आपकी बात, सॉरी मैं बीच में काट रही हूँ,
0: नहीं
2: बच्चे
0: नहीं नहीं
2: जब घर
0: नहीं
2: में भी
0: बिल्कुल,
2: जैसे एंटर होते हैं ना, चाहे बड़े हो छोटे हो, तो सबसे पहले बुलाएंगे भी
0: मम्मी
2: माँ
0: कहाँ
2: को
0: है,
2: ही। माँ,
0: मम्मी
2: मम्मी,
0: कहाँ है।
2: मम्मी का, मम्मी
0: बिल्कुल
2: मेरे वो
0: बिल्कुल, मम्मी
2: जूते
0: कहाँ
2: नहीं मिल रहे,
0: गई।
2: हाँ मम्मी ये चीज, मम्मी वो चीज, वो हर चीज मम्मी मम्मी पूछेंगे। कभी कोई बच्चा, आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि ऐसे पूछेगा पापा मेरे जूते कहाँ है, या पापा मेरा बैग कहाँ है,
0: नहीं
2: पापा
0: नहीं
2: मेरा
0: नहीं
2: वो
0: नहीं
2: कहाँ है,
0: वो
2: वो
0: मम्मी,
2: कभी नहीं पूछते।
0: यहाँ तक कि मेरा बड़ा वाला बेटा तो अभी भी जब उसके बड़ा हो रहा है तो हम बोलते हैं तेरी शादी वादी करेंगे
2: हाँ
0: ऐसे, तो मुझे कहता है शादी भले आप मेरी करो लेकिन खाना तो मैं आपके हाथ का ही
2: हाँ
0: खाऊंगा।
2: सही बात है। माँ के
0: बिल्कुल
2: हाथ का स्वाद तो कहीं मिल ही नहीं सकता।
0: वो
2: एक
0: तो
2: बाहर दुनिया घुमाए, कहीं भी कितने भी पकवान व्यंजन मिल जाए, लेकिन जब बच्चा
0: बिल्कुल
2: माँ के हाथ का खाना खाता है ना, तृप्ति तो उसे तभी होती है।
0: बिल्कुल वही
2: सही बात कि माँ के हाथ का
0: बात।
2: पका भोजन जो होता है, वैसा
0: हाँ
2: स्वाद उसे कहीं नहीं
0: नहीं,
2: मिलता।
0: आज हम इतने बड़े हो गए तो भी आज हम जब हमारी मम्मी के घर जाते हैं तो हमारी मम्मी को सबसे पहले यही बोलते हैं, मम्मी आपके हाथ का कुछ
2: आपके
0: भी
2: हाथ
0: बना
2: का
0: दो।
2: बना दो, सही बात है, वो तो है। इसका रीजन ये भी है, देखिए हमारे पुराने जो धर्मशास्त्र है उसमें कहा जाता है कि जो भोजन घर में बनता है वो मसालों से और सामान से, सामग्री से नहीं, बल्कि
0: प्यार
2: वो
0: से।
2: प्यार से, मन से और
0: बिल्कुल
2: फीलिंग्स के साथ बनता
0: बिल्कुल
2: है।
0: बिल्कुल,
2: बिल्कुल।
0: ये तो
2: तो
0: है,
2: माँ के बारे में तो देखिए, ये ऐसा विस्तृत शब्द है, अपने आप
0: सही
2: में
0: बात है।
2: पूरी सृष्टि को अपने आप में समेटे
0: और इस पर
2: हुए
0: जितनी
2: हैं।
0: भी चर्चा
2: जितनी
0: करो
2: चर्चा
0: कम
2: की
0: है,
2: जाए,
0: कम है,
2: जितनी
0: कम है,
2: बातें
0: बिल्कुल
2: वह कम
0: खत्म
2: है।
0: नहीं होती। सही
2: तो
0: है,
2: आप दोनों से आज हमें इस बारे में बात करके, चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। आपका दिन बहुत मंगलमय हो। मदर्स डे को आप अपने मदर के साथ और अपने बच्चों के साथ खूब एंजॉय करें, और जीवन में आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, हमारी यही दुआ है। और अपने बच्चों को जो आपने संस्कार दिए हैं, तो आगे जाकर आपके बच्चों के लिए भी हमारी दुआ है कि वो भी आपको इसी तरह प्यार, दुलार और सम्मान देते रहें।
0: जी धन्यवाद,
2: नमस्कार,
0: जी नमस्कार,
2: धन्यवाद, बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: तो प्यारी सखियों, अभी हमने सुनी परिचर्चा, और बिल्कुल हमारी और आप ही की तरह दो महिलाओं ने हमारे कंपेयर के साथ अपने विचार साझा करे हैं। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत किस्से कहानियां हमने सुन लिए हैं। चलिए इसके बाद हम एक जरूरी जानकारी सुनते हैं और गुनगुनाते हैं एक मीठा संगीत, फिर आपसे मुखातिब होंगी मैं आपकी प्रीति अपनी सखी आरती के साथ।

0: ढाई अक्षर प्रेम के इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में।
1: और अब हम बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY, भारत सरकार की एक मुख्य योजना है सखियों, जो पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को उनके पोषण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कुल 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। ये राशि एक मुश्त नहीं दी जाती है बल्कि 3 किश्तों में दी जाती है और सीधे बैंक खाते में प्रदान करी जाती है। यदि दूसरा बच्चा लड़की हो तो 6,000 रुपए की एकमुश्त सहायता का भी प्रावधान है।
0: और इसमें गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त आहार और प्रसव पूर्व जांच के लिए

0: आर्थिक सहायता देना है। और जो सहायता राशि दी जाती है, पहले बच्चे के लिए 5,000 दो किस्तों में, और दूसरे बच्चे यानी बालिका होने पर 6,000 रुपए की एक राशि और दी जाती है। तो इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ये जो योजना चलाई गई है, ये उन सभी माओं के लिए है जो पहली बार माँ बनने वाली हो। और देखिए, ये इस तरीके से हम समय समय पर अपनी सखियों को काफी तरीके की जानकारी देते हैं, ताकि यदि आप में से किसी को इसके बारे में नहीं पता हो तो आप भी जानें, और आपके आसपास भी यदि किसी को जरूरत हो तो आप उसे जरूर बताएं, ताकि वो भी इस योजना का फायदा उठा सके।
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई बार हम इधर उधर की बात करते हैं, उसके बजाय अगर हम कोई काम की बात, अच्छी बात कर लें तो बेहतर होता है। और इस योजना के बाद में हम ले चलते हैं अपनी सखियों के साथ, हमें कुछ और भी बातें करनी है, पर आज बातें हमने कुछ आपसे ज्यादा कर लिए, तो आइए सुनते हैं एक मीठा सा गीत।

0: तो गीत संगीत के बाद सखियों, एक और अहम बात यह है कि हम सड़क पर जब चलते हैं तो कृपया अपने मोबाइल का प्रयोग ना करें, सड़क सुरक्षा का ख्याल रखें। अगर पीछे से कोई वाहन आ रहा है, हॉर्न बजा रहा है, तो कृपया देखें, बच्चों को भी सिखाएं जो बेसिक ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, कहाँ टर्न लेना है, किस डायरेक्शन में चलना है, ये सारी बातें आती हैं हमें अपने
1: खासकर
0: बच्चों
1: जब
0: को भी।
1: बच्चों के साथ हम चलते हैं तो हमें बहुत सड़क पे चलते हुए ध्यान रखना पड़ता है,
0: बिल्कुल
1: बच्चों को आगे नहीं जाने दें, उनका हाथ पकड़ें, उनको भी बताएं ये चीजें, और दाई तरफ चले ताकि आपको आने वाली गाड़ियों के बारे में पता चलते रहे। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है तो आपको इन सब बातों की जागरूकता होनी चाहिए, और आपके आसपास जो है उन्हें भी ये सब बताएं। और अब इस जानकारी के साथ ही दीजिए आज्ञा अपनी सखी आरती
0: और
1: प्रीति को। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु।

0: அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் 9 மந்திரியும் நே பீ சபத் லீ ஹே. இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், செல்வி எஸ் கீர்த்தானா ஆர் டாக்டர் டி கே பிரபு ஷாமில் ஹே. இஸ் அவசர் பர் லோக்சபா மே விபக்ஷ் கே நேதா ராகுல் காந்தி ஆர் தமிழ் ஃபில்ம் உத்யோக் கி கை ஹஸ்தியாம் மௌஜூத் தி. முக்கியமந்திரி சி ஜோசப் விஜய் நே ஃபோர்ட் சென்ட் ஜார்ஜ் ஸ்தித் முக்கியமந்திரி காரியாலய ஜாக்கர் கை ஃபைலோ கோ மஞ்சூரி பி தி. இன்மே பிரத்யேக் பரிவார் கோ 200 யூனிட் முஃப்த் பிஜ்லி, மஹிளா சுரக்ஷா ஆர் மாதக் பதார்த்தோ கி தஸ்கரி சே நிபட்னே கே லியே விசேஷ் இகாயியோ கி ஸ்தாபனா சே ஜுடி ஃபைலே ஷாமில் ஹே. ராஜ்ய மே விதாயகோ கா ஷபத் கிரஹண் கே லியே விதான்சபா சத்ர கல் ஹோகா. நவகடித் சர்க்கார் கோ புதவார் தக் பஹுமத் சாபித் கர்னே கோ கஹா கயா ஹே. பிரதானமந்திரி நரேந்திர மோடி நே சி ஜோசப் விஜய் கோ தமிழ்நாடு கா முக்கியமந்திரி பன்னே பர் பதாய் தி ஹே. சோஷியல் மீடியா போஸ்ட் மே உன்னே கஹா கி கேந்திர சர்க்கார் தமிழ்நாடு சர்க்கார் கே சாத் மில்கர் லோகோ கி ஜீவன் ஸ்தர் கோ பெஹதர் பனானே கே லியே காம் கரேகி. ஸ்ரீலங்கா கே ராஷ்ட்ரபதி அனுர குமார திசநாயகா நே பி டிவி கே பிரமுக் சி ஜோசப் விஜய் கோ தமிழ்நாடு கா முக்கியமந்திரி பன்னே பர் பதாய் தி ஹே. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की.
2: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रजित कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा. बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया. इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया. निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की. 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया. एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा. राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी.
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं.
3: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा. सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे. आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले. आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई. मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे. सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए. आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया. मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं. नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी है. ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा. 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें. शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा. एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा. ये समाचार आकाशवाणी से।

0: क्रॉम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके चार परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए।
1: अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी बेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
2: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 101.8 MHz पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे

माँ की ममता भरी गोद का कोई अनमोल है और उसका कोई सानी नहीं है। जागृति फिल्म का ये गाना आपने सुना। आशा भोसले की आवाज में प्रदीप के बोलों को संगीत में ढाला था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म लाजवंती का ये गाना।

0: ए लो बच्चों आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम, तुम है हमारे हम है तुम्हारे कैसे न मिलते चांद सितारे।
1: बाप अभी मामा जी कहना तुमको पड़ा है नीचे उतरना।
0: अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये तुमने क्या पूछा, जो तुमसे खुद कर मिलता है वो है सबसे ऊंचा।

0: मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत से गाते, और कभी तो तुम ना आए। आज तुम्हें हम कैसे भाए?
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ, बिल्कुल सच्ची सच्ची। ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पत्ती। ये तो सुना होगा तुमने भी, मेरे भोले भाले मुझ पर डोले डाल रहे हैं कब से दुनिया वाले। मुझको उनसे बैर नहीं है, शौक से आई जाई उनसे कहना जंग और नफरत अपने साथ न लाई। छोट कपट चतुराई आने वालों से ले लेना।

0: मामा जी ने देख तो आओ ये गुड़िया है कौन बताओ टुक टुक हमको ताक रही है बैठी चरखा काट रही है।
1: हाँ। ना ना यूं ताना मत मारो ये तो मेरी माँ है प्यारे।
0: मेरी माँ भी मामा प्यारे रहती है अब देख तुम्हारे उससे तुम एक बार मिला दो उसको मेरे पास बुला दो।
1: हाँ हाँ मुन्नी दूर नहीं अब तुझसे तेरी माता तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता। एक तू ही क्या मुझको भी अब होगी ना मजबूरी बच्चा माता मामा सबकी मिट जाएगी दूरी। समय बदलने की है देरी फिर हम मिल जाएंगे अच्छा बच्चों देर हुई जाते हैं फिर आएंगे।
2: आशा भोसले मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ लाजवंती फिल्म का ये गाना आपने सुना जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
3: एक बेमिसाल शायर
4: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। इस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने कितनी

सदाबहार नगमे प्रोग्राम की अगली पेशकश टैक्सी स्टैंड फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

जैसे मोहब्बत का एक जामुन है, हमको भी तो कसम ले लो कहाँ आराम है। पहलू में दर्द है लब पे तुम्हारा नाम है।

फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। और अब एक मीठा सा नगमा चंदन फिल्म से सुनते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ।

बड़ा ही सीआईडी है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला। बड़ा ही सीआईडी है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का

बड़ी निराली कभी नजर ना आने वाली वर्दी उसकी बड़ी निराली कभी नजर ना आने वाली ना कोई बिल्ला ना कोई नंबर दफ्तर उसका।

हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार बच के रह।

ना देख रहा है सब कुछ ऊपर वाला, बड़ा ही सीआईडी है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला, बड़ा ही

लंबा चौड़ा ऊंच क्या थाना, सबको एक दिन वही है जाना। लंबा चौड़ा ऊंच क्या थाना, सबको एक दिन वही है जाना। क्या पिताजी

आला बड़ा सी आई डी है वो नीली छतरी वाला, हर खाने की चाबी रखे हर चाबी का ताला। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

के बहार आई है तुम्हारे नाम से, अब के बहार आई है।

है शाह चमन, उठते हैं हाथ जैसे पहले सलाम से, अब के बहार आई है तुम्हारे नाम से, अब के बहार

रे आजल गोदाम के अब के बाहर आई है तुम्हारे नाम से अब के बाहर।

खेली जुल्फों के शाम से अब के बहार आई है तुम्हारे नाम से अब के बहार आ

मोहम्मद रफी का गाया औलाद फिल्म का ये गाना बहार लेकर आया। शब्दों की मोती पिरोए मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन की खुशबू बिखेरी चित्रगुप्त ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना।

दिल से प्यारा ये गीत इशारा कर रहा है मोहर फिल्म का कि आज की कार्यक्रम की यही है अंतिम प्रस्तुति। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आपने सुना ये गाना। राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीत में पिरोया मदन मोहन ने। तो अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। अगला कार्यक्रम मन चाहेगी बस थोड़ी देर में।

0: te arregui.
1: Mãe, te arregui.
2: Mãe, te arregui.

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
0: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

गीतों के गुलदस्ते सजाए आपका चहेता प्रोग्राम मनचाहे गीत लेकर हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी को सादर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मनचाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत करें तो हम बता दें कि बड़ा ही प्यारा सा गीत चुना है हमारे पहली पेशकश के रूप में हमारे इन सभी साथियों ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत अब्बासी और शहनबाज अब्बासी, आप सभी सुनना चाहते हैं आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत ने पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। वाकई एक खत में क्या क्या समाया होता है, प्यार, इकरार, इंतजार और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लव इन टोक्यो फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। इस गाने को सुनना चाहते हैं जयपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रफाकत, वरुण जरूरका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लव इन टोक्यो फिल्म का ये गाना।

लव इन टोक्यो का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश ने छू लिया है मन को। याराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं नोहा टाउन राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार। गाँव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा।

गीता, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल, राजेश रोशन की धुन और ये प्यारा सा नगमा।

छूकर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को

मन का मौसम बदल जाता है जब कोई हौले से आकर दिल छू जाता है। अब दिल छूते ही क्या होता है, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत करीब आती है। जो आ रही है इस गीत के साथ, आंखें फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत रचना रवि की है।

0: आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक पीएस कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
1: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाती हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही

0: जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
1: कहिए माँ जी।
0: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको ये रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
1: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
0: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
1: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
0: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा, ये लड़की नीला।
1: जी आप कहते कहते रुक क्यों गए, कहिए ना।
0: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं, तो तुम उन दोनों की शादी करा देना। करा दोगे ना?
1: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
0: मेरी बात याद रखोगे ना?
1: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
2: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
3: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है। अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
2: लखपति? अरे क्या कह रहा है?
3: ये जरा गंभीर मामला है। देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
2: लगता है मारी तू दारू पी कर आया है, अबे सच कह दे नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते की मौत पड़ेगा तू।
4: अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिया का क्या संबंध है?
3: है बहुत गहरा संबंध है, वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
4: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
3: तुमने कहा था ना मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूँ। उनके मुताबिक मैं वहाँ गया था, अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था। मैं छिप कर खिड़की के पास खड़ा हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
2: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने ये भी बताया था कि उसने धन कहाँ गाड़ रखा है?
3: वही तो मैं सुन नहीं पाया। उस वक्त पास से दन दनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
2: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन और?
3: नहीं भैया नहीं, फोन करके जेल जाने से क्या फायदा। अब कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
2: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है, और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है। आओ कंद स्वामी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
1: क्यों, क्या बात है पोस्ट मास्टर साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है?
2: क्या किया जाए कंद स्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहां से जाएंगे ही, लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो

0: उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो तो दुख से हृदय फट जाता है।
1: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
0: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था।
1: तार? कैसा तार?
0: लो, तुम खुद ही पढ़ लो ये तार। इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
1: ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भीड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया। भगवान, शिव का भी अम्बाल का लड़का मर गया।
0: क्यों स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो जाकर ये तार शिवकानी अम्बाल को दे आओ।
1: मैं दे आऊं? मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर?
0: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
1: चाहता हूँ बाबूजी, चाहता हूँ। ये कैसी मजबूरी है, शिव कामी अम्बाल मुझ पर माँ के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी, आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, उन्हीं को दारुण दुख से तड़पाने के लिए जा रहा हूँ। जान नहीं होगा।
2: माँ जी
3: आओ, कंदे स्वामी आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
1: ड्यूटी? ड्यूटी? आपका तार है माँ जी।
3: क्या कहा, तार? मेरा तार आया है?
1: जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है।
3: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है?
1: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
3: अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
1: नहीं तो
3: ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया, कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी, पागल कहीं का।
1: माँ जी बात यह है कि।
3: अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है, तार को इस तरह घूर क्यों रहे हो?
1: माँ जी तार में कुमार स्वामी ने लिखा है कि वो आज गांव पहुंचेगा, उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है।
3: अरे तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
1: कुछ नहीं माँ जी, यूं ही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
3: तो चले क्या? अच्छा कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर आना, कुमार स्वामी से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगी, खाना भी यही खाना। अच्छा
1: अच्छा तो मैं जाता हूँ माँ जी।

0: अरे ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदलकर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है। और क्या कहता, शिवकामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा।
1: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
0: हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
1: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है। सोच लो, ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा?
0: नतीजा, एक बुढ़िया बीमार माँ के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा। मुझे देर नहीं करनी चाहिए, मुझे देर नहीं करनी चाहिए।
2: माँ, माँ!
3: कौन है? अरे आप, नानी, नानी देखो कौन आए हैं मोटे से।
4: हेलो नीला, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ!
3: कौन? कुमार स्वामी, आओ मेरे बेटे। मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
4: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
3: बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो?
0: मुझे पहचान लिया है क्या?
4: ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
3: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
4: माँ, तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
3: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
4: कंद स्वामी कौन?
3: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
4: क्या कह रही हो माँ, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ।
0: मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
3: बेटा, तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला, तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं।
5: नानी माँ, आज कोई नया डाकी आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा, सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
3: कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला, जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर ले। एक ही दिन तो यहाँ ठहरे का बच्चा।

0: भैया श्रृंगारम, भैया श्रृंगारम, गजब हो गया
1: है। क्या हुआ मारी?
0: वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर
0: उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
2: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो, हमारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्हीं ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच साबित कर दिया है।
2: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये खेल आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।
2: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिया का खेल आगे न बढ़े।
0: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। कंदू स्वामी जब फिर फौजी

0: पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
1: वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये, लेकिन सुनो, होशियार रहना।

0: कुली कुली।
1: Oh, damn it. इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेष बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ श्रृंगारम को।

0: Mom? Mother? Mummy? Where are you? Oh, silly old lady.
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला? क्योरी छोकरी कैसी है, माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई है, लेकिन मैं पूछती हूँ आज फिर क्यों सोम भरा है? उस दिन जैसे नानी मैं धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
0: What nonsense? ये क्या कह रही हो?
1: बस बस बंद कीजिए नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मुझे और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं खुद उखाड़े देती हूँ।
0: ये क्या बदतमीजी है? छोड़ मेरी, मुझे दर्द हो रहा है। ये बनावट नहीं, असली मुझे है। हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
1: कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ।
2: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है? डाकिया कहीं का, कौन है तेरी माँ?
0: कौन? ओहो शिंगाराम। हेलो, हाउ डू यू डू यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
2: वाह, अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है। क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता, चोर उचक्का कहीं का?
0: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
2: हाँ हाँ, डाक खाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूंछे और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस ना समझ नीला को धोखा दे सकता है। लेकिन तू इस शिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है, तूने उस तार का असली मजबूत अम्माल को नहीं बताया, उसकी बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चला आया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया है। अब बोल कहाँ है वो धन, कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे? पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
0: जमीन में गड़ा धन? अंकल शिंगाराम ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो?
2: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
0: तू क्या करेगा? बदमाश चला जा यहाँ से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
2: अबे अंदर कहाँ जाता है, पहले बता।
0: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
2: अच्छा, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है तुझे? कुछ नहीं मालूम तो ले।
0: तूने ये
2: चाकू के एक ही वार से ये दम तोड़ने लगा है, इधर नीला भी बेहोश हो गई है। क्या ये कहीं सचमुच ही कुमार स्वामी तो नहीं? शिवकामी के आने से पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ, भाग जाना चाहिए।

0: शिंगारम शिंगारम, मेरे भाई गलती हो गई, वो डाकिया कंद स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था। तुमने कुमार स्वामी का
1: कमी नहीं, तूने

0: मुझे गलत खबर देकर। कंधे स्वामी कहाँ है?
1: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो।
0: अच्छा मारी, तू भाग कर किसी को कंधे स्वामी के पास भेज, उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूँ।
2: माजी,
3: ये क्या, ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। अरे ये नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ, किसने ये खून किया?
4: हाँ कंधे स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है? कौन यहाँ गिर पड़ा है? मेरा बेटा कुमार स्वामी, अरे पापी, तूने मार डाला मेरे बेटे को, मार डाला।
3: क्या क्या हुआ माजी? ये कुमार स्वामी है? मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं, मैं भाग आया हूँ।
4: अरे पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करो। अरे इससे तो ये अच्छा था कि तुम मुझे ही मार डालते।
3: माँ जी, मैं आपको क्या जवाब दूँ, मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा।
2: सब सूझ जाएगा कंधे स्वामी, अब आ गए हैं।
3: कौन? इंस्पेक्टर साहब।
2: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुंचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगा दो।
5: इसने मेरी बात के बेटे को, मेरे भांजे को मार डाला है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं फौरन आपको इत्तला न करता तो ये भाग जाता।
2: जी, क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं?
5: बात ही है इंस्पेक्टर साहब, नीला होश में आ
2: गई। कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए
4: इंस्पेक्टर साहब, इसे श्रृंगार ने मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी, इसे नहीं चाकू भोंका, तभी कन्न स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है।
2: सिपाहियों, ये बदमाश श्रृंगार भाग नहीं पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या सिंगारम को खून करते हुए देखा था?
4: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कर्ण स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं दहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। कंधे स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है, हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
2: अच्छा, श्रृंगार में एक बेकसूर को फंसा कर खुद बचना चाहता। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी, कंधे स्वामी को छोड़ दो।
4: अरे मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा, बेटा।
2: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं?
3: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था, ये श्रृंगारम मुझे कंध स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मारकर घायल किया। माँ,
4: मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे।
3: माँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका। मैंने हम

हमेशा तुम्हें परेशान ही किया, अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सब भूल माफ कर दो माँ, बोल नहीं पा रहा हूँ माँ, माँ मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें देख लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, तुम्हारी गोद में, तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ।

0: आइए पोस्टमास्टर साहब। अच्छा किया जो आप इस गंध स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं। नीला देखो तो कौन आया है। क्यों कंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे? ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, उस दुष्ट श्रृंगारम ने ऐसी चाल चली कि
1: जो होना था सो हो गया। श्रृंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
2: पोस्टमास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना श्रृंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
0: देखो कंद स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
2: क्या कह रही हैं आप?
0: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये न समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
2: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
0: मैं क्यों माफ करूँ, तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
2: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ।
0: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
1: भाई मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
0: मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना?
2: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
3: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारीख, चमलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती। विचारा।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं जिस धरती का बंजारा।
0: 1985 जमाना।
1: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
2: क्या।
0: 1993 फिल्म।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
0: जी।
1: वो पिक्चर अच्छी बने और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रेली में पिक्चर बंद हो गई।
0: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
0: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे है, ऋषि कपूर के भी डेटे है,
0: हीरोइनें भी
1: हैं, हीरोइनों के भी डेटे है। और ठहर गए। अब साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लगे थे, कार्टून पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच में दूसरी पिक्चर मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर पे दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
0: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहां,
1: दिलीप कुमार साहब के हीरो है। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास बैठ करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज्यादा पिक्चर में डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा वे जो आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना, देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को जानते सबको। तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
0: कनेक्शन
1: सबके। तो वहीदा जी से कहने लगे यार जस्ट पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगाऊ, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
0: अरे गजब।
1: रमेश तलवार से? वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर भी 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सबने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: इज वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत समझदार है अच्छे। तो इन्होंने मुझे यश जौहर ने कहा कि भाई आप, अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ, मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था, तभी उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मेरे वो पाली हिल पे वहाँ पे आए, वहाँ पे तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि यश जी के पास में जाता रहा, तो ऐसे अभी वैदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं यश जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ, तो मुझे टाइम दीजिए, मैं यश जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में उनसे बात कर लूंगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा उन्होंने कहा, हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो। ओहो, मैंने कहा यश जी मैं आप कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब पहले नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूंगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा अभी ड्रिपर लिए नहीं थे मैंने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली कभी यही है बिटुन
1: सागर साहब लिख रहे थे,
0: कोई नहीं कुछ किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी,
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं, उनको बताइए मैं और सलीम साहब अलग हो रहे। इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था, इस तरह कि एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, रमन इप्टा के मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे, उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखे थे।

मुझे भूल नहीं पाऊंगी प्यार।

0: यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगे।
1: शूटिंग करते थे इनके घर पे कानों की भी पूरी प्याजे से बाजा लेके आते और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में।
2: जी
1: बसेरा में असिस्टेंट थी।
2: अच्छा
1: तो हमारे बाकी लोग भी हमारा उत्तर को ठिकाना नहीं था कहाँ जाए आज दोपहर कहाँ मिले। तो हम इप्टा के लोग वहां पे बैठा करते थे रमन राकेश बेदी अवतार गिल भरत कपूर हम सारे लोग वहां जाके इनके हॉल में बैठते थे चाय वाय पीते थे गपशप मारते थे एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि ये बात है आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ और जो भी। तो बोले भाई देख लो अगर

0: तुमको मेरे संग फिल्म करनी है? तो मैंने यह जोर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा,
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो बाकी देख लेंगे चीजें, अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछले पीछे जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था, यह जोर की फिल्म दोस्ताना थी या कौन सी थी?
1: दोस्ताना।
0: अच्छा, उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जोर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जोर को एक पॉइंट बोला, जिसलिए उन्होंने देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछले पिक्चर में? तो उन्होंने 10 लाख दिए थे। तो उन्होंने 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे, बोले गाने तो मेरे अनंत बख्शी लिखते। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने उन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीजें मिल जाएंगी, जो बख्शीश आपको आप फीस देते नहीं अगर आपको प्रूव करते। तो उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे, मतलब जावेद मिल रहे, जिसमें गाने भी मिल रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे?
1: हाँ हाँ।
0: हाँ लूंगा 5 लाख। मैंने ब्रह्मेश से कह दिया था, ब्रह्मेश जी से कहा था कि मैं उसमें पैसों में गाने में फ्री लिखूंगा अगर चाहिए होता। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता। तो वो क्या हो गया जो गाने वाले अब सब उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है, उन्हें क्या कास्टिंग होनी चाहिए? सब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर होने चाहिए। रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उतना ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी, दिलीप साहब ऋषि कपूर की कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ।
0: तो होगा, बोले अब अगला स्टेप सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुके, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब।
1: कहानी नहीं है?
0: कहानी नहीं है।
1: वाह वाह।
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
1: दिलीप कुमार,
0: दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए। पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लिया हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का एक सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे। तो कल जो मान गए, यश जोश की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है जो भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच में बैठे समंदर के किनारे,
1: कहानी ढूंढ रहे,
0: कहानी ढूंढ रहे क्या बना। वो सब्जेक्ट वो तो बन चुकी है, वो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लगे।
1: हाँ हाँ।
0: तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया।
1: हाँ।
0: उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आप चाहिए हो तो आप लिख सकते हो उनको एज राइटर। उनका अच्छा, उनका रेट भी ज्यादा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम
0: शुरू कर दिया।
1: जी।
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं, कभी पिक्चर बना दे वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति,
0: नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल
0: का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था।
1: ओ,
0: मैंने ओके किया हुआ था,
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को सुना दूं।
1: जी।
0: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया?
0: मैं नहीं बोल सकता सर।
1: जी।
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता जावेद साहब।
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरी सब्जेक्ट ले रहा हूँ।

के चेहरे है कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब

कि गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से

को शिकायत है मगर फिर भी तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है। कभी तुझको गिला मुझसे कभी मुझको शिकायत है मगर फिर भी तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है।

0: मैं कंप्लीटली सर मैं एक ही पिक्चर लिख रहा था वो सब। तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34/7 थीम से शुरू करके पिक्चर। मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने। तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते, सुनाते तो सी रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहां पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा।
1: अरे बापे,
0: उनका स्टाइल है जो सुनी इतनी देर सुन सकता हूँ, इसलिए जो भी उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 24 सीन तो पूरे क्लियर थे, वो थोड़ा सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनके कुछ एक सजेशन जो आए, इन्होंने कुछ आर्गुमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की, और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे, कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तो मैं 10 बजे सेट पे ला के दूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो तेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वाकई ऐसा होता रहा, वो टीचर करते रहे और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया
0: दुनिया

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहले जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: कि ऐसे फिल्म करने का, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी जुकर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़ी मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी प्रोडक्शन की, प्रोड्यूस की, तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी जुक्कर का भी शेयर था 5%।
0: बाबा
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% भूषण राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सदी राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे, जो जैसे ने 10% करवा दिए। क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, तू सब कर रहा है तो मैं गलत पास है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश वल्ला ऑपरेटिव कैमरा मैन जो था, 5% KG उनका सीनियर कैमरा मैन, 5% पंडरी जुकर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब।
0: जी जी जी, गजब।
1: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहने उनकी शादी करवा सारा है और पैसे सारे खर्च कर देते हैं, वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं, उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए।
0: ओहो,
1: मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे। उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था, खयाम साहब ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे, जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सर्दी ने उनके लिए लिखी थी।
0: अच्छा,
1: सागर सर्दी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सर्दी ने उनको फिल्म की लिख के दी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी कि कुत्ता हीरो है, तो वो उन्होंने शुरू में गाने वाले भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके। और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए, उसके बाद वो चाहते थे बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर करो,
0: प्रदीप को लेके,
1: प्रदीप को लेके, लेकिन वो नहीं बन पा रही। लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे, तो भाई उनको मतलब रिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुकर ने
0: दिलीप साहब को बताया,
1: दिलीप साहब को बता दी।
0: ओहो, गजब,
1: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है,
0: हाँ,
1: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रखी, मतलब मैं चला गया मिलने मुझे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
0: ओह, क्या बात है,
1: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
0: जी,
1: वो पंजाबी वो वहां के थे पिशावर के
0: जी,
1: उस तरफ के, और मैं बफा एबटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो जरा यार के बदले जरा,
0: अच्छा
1: यारा,
0: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा है,
1: सागर यारा
0: किताब में है,
1: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत जब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूंगा, जरूर करूंगा, उस तरह प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूंगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उनसे बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज पसंद नहीं आएगी वो कहूंगा। कहा जी वो ऐसे सुनील जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की
0: और इस तरह दुनिया बनी।
1: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर साहब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप।
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ। वही सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता हूँ।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट होगी थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट होती आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ।
0: जी
1: है? फिर गेस्ट रोल में सारा जी। इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दीजिए।
0: उसकी पोस्टर भी भव्य थे।

0: एकदम।
1: हाँ तो आप ये तो लोग समझते थे लॉटरी लगी है
0: जी।
1: तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना
0: जी। जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया, मैं उनको उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी
0: जी। जी
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था
0: जी,
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी
0: जी।
1: तो उनके पास मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, दो एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर। उन्होंने कहा मेरे पास श्री देवी की डेट है,
0: ओ ओ ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा क्या ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ फिर आ जाऊ। उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन ये था, आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
0: जी,
1: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक था ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेट है, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकती और डेट पोस्टपोन करूंगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी, पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचे अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
0: जी,
1: कंप्लीट हो गई थी अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमारे सोचा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोला थे, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
0: ओके।
1: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों वहां आए बहुत खुश थे। तो
0: पैसों वगैरह की बात,
1: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय होगी, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों चाहे चावला साहब, ओके, बोले 100% ओके।
0: वाह,
1: ओके हो गया सब, हम निकले। हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए, उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका
0: जी जी जी,
1: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब मालिक वो आ गया, रेमनॉल्ड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रेमनॉल्ड वाले ने बोला प्लीज यहां से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
0: हॉस्पिटल ले गए,
1: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि तो जा चुके जो मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहां बुलाया गया लोकल, वो जगह नहीं, उनको वहां पीछे सीट पे लिटाया हुआ सब, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहां रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
0: अटक गया,
1: फिर अटक गया।

भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे तब उन्होंने भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे तब उन्होंने भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ जिंदगी कैसी है बहेली कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।

0: ऐसी है बहेली हाय, कभी तो हंसाए
1: प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया,
0: कभी
1: मेरा प्रोड्यूसर ही मेरा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ,
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी,
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमला के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज्यादा उधार है, तो सबसे मिटिए करके मैं कम करवा सारा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपको पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी,
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बापरे,
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में। और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ,
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती होगी। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी,
1: इस तरह का हमारी फिल्म में भाग्य सर्कमस्टांसेस एक्टर्स का वो। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
1: याद करते देखते हैं। नहीं करते भी है, देखते भी है, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही है ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल,
1: और थी भी वो उस तरह की है। तो

0: माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार कास्ट
0: स्टार का अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा, ये नहीं करूंगा। मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो सूरज चलो जाओ आते हैं तुमसे, शिमला शूटिंग हो वहाँ, नॉर्थ में शूटिंग हो के जहाँ पे बोला जो जिस तरह लेने के लिए कि ये विजुअल आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए, आप बड़ा कैमरा मैन लिया महाजन साहब कैमरा मैन,
1: ओहो
0: के महाजन, तो सब चीजें उन्होंने किसी चीज में कमी नहीं की। क्या सब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, फिर बाद में पता चला क्योंकि वाइस ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट,
1: पहले
0: से प्रॉब्लम थी उनकी।
1: जी जी जी
0: अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के।

अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से सुन रहे थे। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। लीजिए आप सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी व साथियों को क्षितिज शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं सौर ऊर्जा की। दोस्तों, सूरज से हमें जो गर्मी मिलती है उसे हम ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। ये हमारे लिए ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं उनमें से सूर्य जो है वो सबसे स्वच्छ और भरोसेमंद तरीके से ऊर्जा की अपार संभावनाएं हमें देता है। साथियों, जब सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ऊष्मा और विद्युत में परिवर्तित किया जाता है तो ये हमारे घरों और व्यवसाय को ऊर्जा प्रदान कर सकती है और यहाँ तक कि वाहनों को भी चला सकती है। तो साथियों, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या है इस सौर ऊर्जा के फायदे। दोस्तों, घर के लिए ऊर्जा विकल्पों पर विचार करते समय सौर ऊर्जा की कार्यप्रणाली को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब सूर्य की रोशनी सौर पैनल पर पड़ती है तो एक फोटोवोल्टिक सेल उस प्रकाश को प्रत्यक्ष धारा बिजली में बदल देता है, यानी डीसी, जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, उसमें उसे परिवर्तित कर देता है। फिर एक इन्वर्टर इसे प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी में परिवर्तित करता है और जिसका उपयोग हम सभी घरों में अधिकांश उपकरणों को चलाने के लिए करते हैं। साथियों, सौर ऊर्जा के लाभों को अगर हम बात करें तो हम जितना अधिक उपयोग में लेंगे उतनी

ही हमारी जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता है वो कम होगी। अपने घर में सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने से हम सौर ऊर्जा के कई फायदों का लाभ उठा सकते हैं, जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। साथियों, उस पर चर्चा करने से पहले आइए लेते हैं एक अल्पविराम।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: दोस्तों हम बात कर रहे थे सौर ऊर्जा के लाभ के बारे में। साथियों सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और ये कार्बन उत्सर्जन को बहुत ही कम करता है। सौर ऊर्जा का अर्थ है ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये ऊर्जा स्वच्छ है, यानी इससे कार्बन उत्सर्जन या अन्य ऊष्मा अवरोधक ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न नहीं होती। ये जीवाश्म ईंधन के खनन या ड्रिलिंग से जुड़े पर्यावरणीय नुकसान से भी बचाती है। इसके अलावा भाप टर्बाइनों का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने वाले विद्युत संयंत्रों के विपरीत सौर ऊर्जा में पानी का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। साथ ही दोस्तों घर के लिए अगर हम सौर ऊर्जा प्रणाली लगाते हैं तो जो ग्रिड पर हमारी निर्भरता है वो भी कम हो सकती है। साथ ही साथ बिजली के बिल में भी बचत ये करती है। बिजली का बिल कम करने के लिए आपको पूरी सौर ऊर्जा प्रणाली खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बस सौर लाइटें चुनें जो आपके घर की विद्युत प्रणाली के बजाय सूर्य की ऊर्जा से चलती है और इससे आपको पैसे बचाने में मदद भी मिलती है। साथ ही दोस्तों सौर ऊर्जा से आप सौर नवीकरणीय ऊर्जा क्रेडिट के माध्यम से पैसे भी वापस पा सकते हैं। जी हाँ साथियों, कुछ राज्य सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। प्रत्येक प्रमाण पत्र सौर ऊर्जा से उत्पन्न 1 मेगावाट प्रति घंटे बिजली का प्रतिनिधित्व करता है। बिजली आपूर्तिकर्ता अपने राज्य के नवीकरणीय पोर्टफोलियो मानक को पूरा करने के लिए ये प्रमाण पत्र खरीदते हैं, जिसके अनुसार उनकी नवीकरणीय ऊर्जा का एक निश्चित हिस्सा सौर ऊर्जा से आना चाहिए। आप अपने सिस्टम के आउटपुट के लिए SREC बेच सकते हैं, जो आपके निवेश से पैसा कमाने का एक और तरीका है। साथियों SERC की उपलब्धता और मूल्य राज्यों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। आप अपने लोकल जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर आप इसका पता कर सकते हैं। संबंधित बिजली विभाग में जाकर या सरकार से आप संपर्क करके उसके बारे में पता कर सकते हैं कि आपके राज्य में इसका क्या उपलब्धता है। साथियों जिन घरों में सोलर पैनल लगे होते हैं उनकी कीमत भी बढ़ जाती है। आवासीय सौर ऊर्जा प्रणाली अत्यधिक मूल्यवान होती है और घर के पुनर्विक्रय मूल्य को भी बढ़ा सकती है। सौर पैनलों वाले घर का संपत्ति मूल्य अपने आसपास के अन्य मकानों की तुलना में काफी अधिक हो सकता है। साथ ही दोस्तों सौर पैनलों के रखरखाव की लागत भी कम होती है। इनका रखरखाव आसान है क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होता जो समय के साथ खराब हो जाए। इन्हें साफ सुथरा और अच्छी स्थिति में रखना ही काफ़ी है ताकि ये ठीक से काम करते रहे। कम रखरखाव लागत और औसतन 25 साल के जीवन काल के कारण सौर पैनलों में निवेश आपके पैसे का पूरा लाभ आपको दिला सकता है। साथ ही दोस्तों आप इंस्टॉलेशन और रखरखाव दोनों के लिए सोलर प्रदाता को भी अपॉइंट कर सकते हैं। इससे आपका जो भी सौर पैनल लगे हुए हैं उनका पूरा रखरखाव जो आपका सोलर प्रदाता है वही करेगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना होता। तो दोस्तों इस पर ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। अभी आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, अभी आप सुने थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में गीत। फिल्म का नाम था हम तुम्हारे हैं सनम। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत था निखिल विनय का। साथियों, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सौर ऊर्जा के फायदों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हालांकि कई बार बादल छाए रहने से हमें लगता है कि बिजली का उत्पादन कम हो जाता है, लेकिन ठंड का उत्पादकता पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आपके एरिया में बर्फबारी होती है तो ये आपके सौर ऊर्जा सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद भी साबित हो सकती है, क्योंकि पिघलती बर्फ पैनलों को साफ करती है और बर्फ से परावर्तित सूर्य की रोशनी पैनलों पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को भी बढ़ा देती है। साथ ही दोस्तों, आप अपने सौर ऊर्जा को भंडारण कर सकते हैं ताकि इसे व्यस्त समय में उपयोग कर सके। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने सिस्टम द्वारा उत्पन्न सभी ऊर्जा का उपयोग नहीं करते हैं तो आप इसे तब उपयोग के लिए संग्रहित कर सकते हैं जब सूर्य की रोशनी ना हो या ऊर्जा की मांग सबसे अधिक हो और बिजली की दरें बढ़ जाती हो। एक घरेलू बैटरी भंडारण प्रणाली आपकी बचत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को अधिकतम कर सकती है। साथ ही दोस्तों, अतिरिक्त सौर ऊर्जा को संग्रहित करने का एक और लाभ यह है कि बिजली कटौती के दौरान आपके पास बैकअप पावर उपलब्ध रहती है। आप निर्बाध बिजली आपूर्ति के साथ आवश्यक उपकरणों और प्रणालियों को चला सकते हैं। साथ ही दोस्तों, सौर ऊर्जा को आप ग्रिड को वापस बेच भी सकते हैं, यानी कुछ आवासीय सौर ऊर्जा प्रणालियों के मालिकों के पास अतिरिक्त बिजली हो सकती है जिसे वे बिजली कंपनी को वापस बेच सकते हैं। बिजली के लिए बिजली कंपनी को भुगतान करने के बजाय घर के मालिक बिजली कंपनी से भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, और ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप सौर ऊर्जा में अपने निवेश का पूरा लाभ उठा सकते हैं, साथ ही समुदाय को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करा सकते हैं। दोस्तों, सौर ऊर्जा की जो उद्योग है वो आजकल बहुत ही परिपक्व हो चुका है और ये तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि इसकी कीमतें भी काफी हद तक कम हो गई है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली कर छूट खर्चों में कमी करती है। साथ ही लचीले भुगतान विकल्प और कम ब्याज दर पर वित्त पोषण ने अधिकांश गृह स्वामियों के लिए सौर ऊर्जा प्रणालियों को सुलभ बना दिया है। कीमतों में कमी लाने वाले और सौर ऊर्जा प्रणालियों को स्थापित करने में आने वाली बाधाओं को कई कारणों ने कम किया है, जैसे उपकरण की लागत में गिरावट, सरकारों द्वारा छूट, कर क्रेडिट, लचीले वित्त पोषण विकल्प और सौर लीज और बिजली खरीद समझौते। इन सब की वजह से जो सौर ऊर्जा की कीमत है, जो आपका खर्च है वो काफ़ी कम हो गया है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे आपको पूरा वसूल हो जाता है कुछ ही वर्षों में, और आप कुछ वर्षों बाद जो भी बिजली आप उपयोग करते हैं वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो निःशुल्क ही आप उपयोग कर रहे हैं। तो साथियों, ये सौर ऊर्जा के लाभ हैं। आज का हमारा जो युग है वो इसी ओर बढ़ रहा है, क्योंकि आने वाले भविष्य में जीवाश्म ईंधन पर हमारी जो निर्भरता है वो बहुत कम हो जाएगी और यही हमारा एक विकल्प है जिसको हम भविष्य में ऊर्जा के

स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, अभी वक्त हो चला है फिर से अल्पविराम का, और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे।

साथियों, भारत का प्रकृति से गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहा है। वृक्षों को केवल जीवित प्राणी ही नहीं बल्कि परिवार का अभिन्न अंग भी माना जाता है। एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान इसी सांस्कृतिक भावना को सशक्त बनाता है और इसे जन प्रेरित हरित आंदोलन में परिवर्तित करता है। साथियों, इस अभियान में एक सरल लेकिन प्रभावशाली सवाल पूछा गया है, क्या आप अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगा सकते हो? इस भावनात्मक सवाल ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है, जिनमें स्कूली बच्चे, आध्यात्मिक गुरु, किसान, शहरी और यहाँ तक कि बॉलीवुड हस्तियां भी शामिल हैं। लेकिन सिर्फ भावना से कहीं बढ़कर ये अभियान अब भारत की धरती पर वास्तविक और स्पष्ट बदलाव ला रहा है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम का अर्थ केवल पेड़ लगाना नहीं, ये एक आदत, एक ऐसा अनुष्ठान है जो न केवल हमारी माताओं के प्रति बल्कि धरती माता के प्रति भी कृतज्ञता का प्रतीक है। लगाया गया प्रत्येक पेड़ प्रेम, स्मृति और जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाता है और इस पहल की खासियत इसका व्यक्तिगत जुड़ाव है। कॉरपोरेट फंड से चलने वाले वृक्षारोपण अभियानों के विपरीत ये अभियान व्यक्तियों को जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप स्वयं या अपने समुदाय में पेड़ लगाते हैं, आप उसकी देखभाल करते हैं और ये एक दिन का आयोजन नहीं है दोस्तों, ये एक जिम्मेदारी है, एक जीवंत पर्यंत उपहार बन जाता है। साथियों, कुछ स्थानों ने इस विचार को खूबसूरती से अपनाया है। कई जगह पर बुजुर्ग निवासी स्वयंसेवकों और स्थानीय युवकों के साथ मिलकर अपने आसपास के परिसरों में पेड़ लगाए गए हैं, जिससे हरे भरे और शांतिपूर्ण क्षेत्र बन रहे हैं, जहां भावनाएं और पर्यावरण साथ साथ विकसित हो रहे हैं। कई लोगों के लिए ये अपनी माताओं को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है, साथ ही उन लोगों को खुशी देने का भी जिन्होंने अपना जीवन दूसरों की देखभाल में व्यतीत किया है। साथियों, इसकी बढ़ती लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण इसकी सरलता है। इसमें कोई जटिल औपचारिकताएं या प्रक्रियाएं नहीं है, थोड़ी सी जमीन या गमले वाला कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। स्कूलों ने इसे अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इसे विज्ञापन अभियान के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं जिस पर वे वास्तव में विश्वास करते हैं। गांवों में ये स्थानीय त्योहारों का हिस्सा बन गया है। शहरों में लोग बालकनियों और छतों का उपयोग कर रहे हैं। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और गिरजाघरों ने वृक्षारोपण को धार्मिक आयोजनों से भी जोड़ना शुरू कर दिया है। जब भी कोई अभियान सांस्कृतिक रीति रिवाजों के साथ जुड़ जाता है तो वो ऐसी जड़ें जमा लेता है जिसकी बराबरी कोई दूसरा चलन नहीं कर सकता। तो साथियों, एक पेड़ माँ के नाम परिचर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। अभी आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

हेलो चार्ली पर डाल पर चार्ली अल्फा बीटा बीट बीट के गामा एटमॉस्फेयर दे विच ज्यादा दबाव दे वक्त प्यारे प्यारे होठां विच किलकारियां वाले लावटां ते विच मुस्कान पाके नशीली अखां दे नूर दी मिलावट करके उसके नाल 22 कैरेट की सेक्स ऑफ एडिशन करके ऑप्टिमिस्टिकली असीं अपना सीन सब शुरू करदे आं।

0: गलियों में गुलाब की डाली छिड़क के शबाब का रंग चढ़ा के जो सब तैयार हो जाए तो फिर डेढ़ बैग रंग पा दियो काम पता ओवरफ्लो हो जाएगा तो समझ दो आशका का बेड़ा पार ते फिर
1: मर जावा गुड़ खा के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अरुण बख्शी और पूर्णिमा की आवाज में गीत। फिल्म का नाम था गोपी किशन। गीत के बोल थे समीर के और संगीत था आनंद मिलिंद का। साथियों, ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के बारे में। साथियों, ये अभियान बड़े बजट या ब्रांड अम्बेसडर के बिना ही व्यापक रूप से फैल रहा है। इसके बजाय ये स्वयंसेवकों और स्थानीय नायकों के प्रयासों से आगे बढ़ रहा है। किसान अपने खेतों की सीमाओं पर पेड़ लगा रहे, स्कूल अपने खेल के मैदानों को हरा भरा बना रहे हैं, कई शहरों में स्थानीय सरकारें मुफ्त पौधे बांटकर इस पहल का समर्थन भी कर रही है। ऑनलाइन हैशटैग एक पेड़ माँ के नाम एक कहानी सुनाने का मंच बन गया है। लोग अपने द्वारा लगाए गए पेड़ों की तस्वीरें अपनी माताओं के लिए व्यक्तिगत संदेशों के साथ पोस्ट करते हैं। ये भावनात्मक जुड़ाव अभियान को लोगों से जोड़ता है और इसे वास्तविक भी बनाता है। ये किसी अन्य सामाजिक हैतीसी गतिविधि की तरह नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा होने जैसा लगता है। दोस्तों, भारत को वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर समाधान में अक्सर समय लगता है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान व्यक्ति विशेष पर ध्यान केंद्रित करता है। ये जमीनी स्तर पर कार्रवाई करता है जहाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक व्यक्ति, एक पेड़, एक उद्देश्य। ये अभियान जैव विविधता के संरक्षण में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। स्थानीय लोग स्वदेशी वृक्षों को पुनः स्थापित कर रहे हैं, जिन्हें आधुनिक वृक्षारोपण में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये वृक्ष स्थानीय पक्षियों और कीटों को आश्रय प्रदान करते हैं और भूजल संरक्षण में इनका सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है, जो देखने में भले ही सूक्ष्म लगे लेकिन महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर आप भी इस अभियान में भाग लेना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसमें भाग ले सकते हैं। आपको बस एक पौधा लगाना है और उसकी देखभाल करनी है। इसके लिए आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। इसे अपने घर के पीछे, स्कूल, सोसाइटी परिसर, खेत या फिर ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। इसे अपनी माँ या किसी ऐसी माँ को समर्पित करें जिन्होंने आपके जीवन को संवारा हो। अपनी कहानी साझा करें और किसी और को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें, और इस तरह से आप भी इस अभियान का हिस्सा बन जाएंगे। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने ये साबित कर दिया है कि जब भावनाओं को कार्यों से जोड़ा जाता है तो चमत्कार होता है। अब ये महज एक अभियान नहीं है बल्कि जन क्रांति बन गया है। प्रेम के नाम पर जैसे जैसे अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं, भारत एक हरित भविष्य की ओर कदम आगे बढ़ा रहा है। तो साथियों, ये था एक पेड़ माँ के नाम अभियान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप भी इस अभियान से जुड़कर एक पेड़ जरूर लगाएंगे। और सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है बल्कि उसकी देखभाल भी करनी है। तो दोस्तों, अभी वक्त तो चला है अल्पविराम का और उसके बाद इस कार्यक्रम

0: में आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: साथियों, अभी गर्मी का समय चल रहा है और इस भीषण गर्मी में लू यानी हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, शरीर को हाइड्रेटेड रखना और सीधे धूप के संपर्क में आने से बचना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, अचानक से सीधे तेज धूप में आते हैं तो आपको लू लग सकती है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि लू से बचाव आप कैसे कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको अपने खान पान और हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। इसके लिए आप खूब पानी पिएं। प्यास न लगने पर भी थोड़ी थोड़ी देर में आप कुछ पानी के घूंट लेते रहें। तरल पदार्थों का सेवन यानी नींबू पानी, छाछ, बेल का शरबत, नारियल पानी या ORS का सेवन आप करते रहें, ये आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते। साथ ही कच्चा प्याज और आम भी आप खा सकते हैं। कच्चा प्याज खाने या उसे जेब में रखने से भी लू से बचाव मिलती है। साथ ही कच्चे आम का पन्ना यानी शरबत भी इस गर्मी में लू से बचने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पानी की अधिकता वाले फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, इनका भी सेवन आप करते रहें, क्योंकि ये फल और सब्जियां आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देती, आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखती है। साथ ही दोस्तों, बाहर निकलते समय भी आपको कुछ सावधानियां रखनी हैं, जैसे दोपहर के समय 12 से 4 के बीच में अगर हो सके तो घर से बाहर नहीं निकले, जब तक कि कोई मजबूरी या बहुत ही आवश्यक कार्य नहीं हो। अगर आप कार्य को टाल सकते हैं तो इस समय को टाल दें, या तो सुबह जल्दी काम को निपटा लें या फिर शाम को 4 बजे के बाद आप घर से निकलें। साथ ही जब भी आप घर से निकलें तो अपने सिर को हमेशा ढके रहें। उसके लिए आप टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गमछे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर छाता भी आप लेकर जा सकते हैं। इससे धूप सीधे आपके सिर पर नहीं लगेगी। साथ ही आप जो भी कपड़े पहने वो हल्के रंग के, थोड़े ढीले ढाले और सूती हो तो सबसे अच्छा रहेगा। टाइट कपड़े पहनना और अन्य किसी भी मटेरियल के कपड़े आपको गर्मी में परेशान कर सकते हैं। साथ ही धूप का चश्मा या सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी करें। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आँखों की सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा पहने और स्किन के लिए आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में अगर आप हैं तो वहां पर भी आप थोड़ी सी अपने जो कार्य हैं उसको जल्दी निपटा लें और दिन में खिड़की और पर्दे बंद रखें ताकि धूप आपके घर में सीधे प्रवेश ना कर पाए। साथ ही साथ शाम को आप इन्हें खोल सकते हैं। मटके का ठंडा पानी आप पिए, क्योंकि फ्रिज का ज़्यादा ठंडा पानी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसीलिए जितना हो सके मटके के ठंडे पानी को आप प्राथमिकता दें। दोस्तों, गर्मी के मौसम में दिन में 2 बार ठंडे पानी से जरूर नहाएं, ये आपके शरीर को गर्मी के असर से बचाता है। तो साथियों, ये तो थी वो काम जो आपको करने हैं। साथ ही क्या नहीं करना है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म डुप्लीकेट से गीत आवाज थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत के बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत था अनु मलिक का। साथियों ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि इस गर्मी में अपने आप को लू से कैसे बचाएं। तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, लेकिन साथियों अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आपको कभी भी खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलना है, यानी जब भी आप निकलें आप हल्का फुल्का नाश्ता या खाना खाने के बाद ही घर से निकलें। खाली पेट आपको घर से बाहर धूप में नहीं निकलना है। साथ ही शराब चाय कॉफ़ी और कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक लेने से जितना हो सके बचें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी को बढ़ाते हैं। बंद खड़ी गाड़ियों में बच्चों या पालतू जानवरों को कभी ना छोड़ें। कई बार हम देखते हैं कि माता पिता कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं तो उनके बच्चों को या फिर उनके अगर कोई पालतू पशु है तो उनको गाड़ी में ही बिठा कर जाते हैं। तो ये सावधानी हमें जरूर रखनी है कि कभी भी हम अपने छोटे बच्चों को या फिर हमारे पालतू जानवरों को खड़ी बंद गाड़ी में नहीं छोड़ें। तो साथियों ये कुछ बातें हैं जो आपको इस धूप में ध्यान में रखनी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अपने आप को बचाएं। साथ ही दोस्तों गर्मी से बचने के लिए हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे एक पेड़ माँ के नाम। तो आप भी अपने आसपास पेड़ लगाएं, क्योंकि जितनी हरियाली बढ़ेगी जितने पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो ही हमें इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। साथ ही दोस्तों अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो आपको क्या करना है, यानी प्राथमिक उपचार। तो उसके लिए व्यक्ति को तुरंत छायादार या फिर किसी ठंडी जगह पर ले जाएं, कपड़े ढीले कर दें। साथ ही गर्मी से बचने के लिए उन्हें नींबू पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स दें। गीले कपड़े से शरीर को पोंछें या फिर संभव हो तो उसे ठंडे पानी से नहला दें। सिर पर ठंडे पानी की पट्टी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो उसे तुरंत नज़दीकी चिकित्सालय में किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएं। तो साथियों ये थी लू से बचने के लिए कुछ जानकारी। अभी लेते हैं एक अल्पविराम और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे।

0: में आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: साथियों, अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। यह हमें नई नई चीजें बनाने में मदद करता है। विज्ञान के बिना हमारा जीवन अधूरा है। विज्ञान ने हमें कई बीमारियों से बचाया है। डॉक्टर अब नई नई दवाएं और इलाज के तरीके ढूंढते हैं। विज्ञान ने संचार को बहुत आसान बना दिया है। हम घर बैठे फोन, ईमेल या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, विज्ञान ने परिवहन को तेज और आरामदायक भी बना दिया है। हम कार, ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं। साथ ही विज्ञान ने हमें शिक्षा को भी ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। हम अब घर पर बैठे बैठे ही कई नई चीजें सीख सकते हैं। विज्ञान हमें कई चीजें दे रहा है, लेकिन इससे प्रदूषण भी बढ़ा है। विज्ञान ने परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियार भी बनाए हैं। विज्ञान ने कई जीव जंतुओं को खतरे में भी डाला है। हमें विज्ञान का सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए और इसके नुकसानों से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों विज्ञान हमें प्रकृति के बारे में जानने में मदद करता है। इससे हम नए आविष्कार कर सकते हैं, भविष्य की तैयारी कर सकते हैं और हमारी जो भी आज की समस्याएं हैं वो सभी हम विज्ञान के माध्यम से ही समाधान कर सकते हैं। इसीलिए विज्ञान का जो ये जगत है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, कुछ साथी विज्ञान के इस जगत में अपना करियर भी बनाना चाहें तो वो इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कई सारे विकल्प मौजूद हैं, खाद्य विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक। जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो उन्हीं क्षेत्रों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले आता है कृषि और खाद्य विज्ञान। अगर आप कृषि में यानी एग्रीकल्चर में रुचि रखते हैं या खाद्य पदार्थों में करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कृषि और खाद्य विज्ञान का क्षेत्र चुनना चाहिए और ये हमेशा आगे बढ़ने वाला फील्ड है। इसमें कभी किसी चीज़ की आपको दिक्कत नहीं होती है, और क्योंकि कृषि और खाद्य कभी भी ख़त्म नहीं होने। साथ ही जीव विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपको केमिकल्स में रुचि है तो रसायन विज्ञान का क्षेत्र आपके लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। चाहे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन हो या अगली पीढ़ी की नैनो तकनीक हो या चिकित्सा क्षेत्र में नई सफलताएं हो, रसायन विज्ञान भविष्य की प्रौद्योगिकी को आकार देने के लिए एक सर्वव्यापी और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा आप इंजीनियरिंग का क्षेत्र भी चुन सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको नवाचार और चीज़ों के काम करने के तरीकों के बारे में जानने में रुचि है तो आप ये क्षेत्र चुन सकते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब ही समाज के लिए समाधानों का आविष्कार, डिजाइन और निर्माण करना है। स्वास्थ्य सेवा से लेकर विनिर्माण तक हर क्षेत्र इसमें शामिल है। इसके अलावा अगर आपको पृथ्वी और वायुमंडल के विषय में दिलचस्पी है तो आप भूगोल, पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान का क्षेत्र चुन सकते हैं। यहाँ पर भी प्रभावशाली करियर आपके लिए हमेशा तैयार है। अगर आपको फिजिक्स में रुचि है तो भौतिकी में डिग्री हासिल कर सकते हैं। मौसम विज्ञान, सूचना विज्ञान, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे संबंधित क्षेत्रों में भी आप अपने सफल करियर की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही अगर आप पशु प्रेमी हैं तो पशु चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। निजी पशु चिकित्सालयों में काम करने के अलावा स्नातक कृषि, पशु कल्याण एजेंसी, सरकारी सेवाएं, दवा कंपनियों, अनुसंधान और विश्व स्तर पर व्यावसायिक विकास शिक्षा में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। तो साथियों, ये थी विज्ञान जगत से जुड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप भी विज्ञान में रुचि रखते हैं और विज्ञान के छात्र हैं तो इनमें से कोई भी क्षेत्र आप चुन सकते हैं। इसके अलावा

अभी विज्ञान में और कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं, तो उसके लिए भी हम फिर कभी किसी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आज के लिए इस टॉपिक पर हम इतना ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी समय हो चला है थोड़े से मनोरंजन का। तो आइए आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म गर्व से, गीत आवाज थी उदित नारायण और श्रेया घोषाल की। गीत के बोल लिखे थे शबीर अहमद ने और संगीत था साजिद वाजिद का। तो दोस्तों इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने दोस्त क्षितिज को दीजिए इजाजत।

अभी युवा साथी युवानी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। लीजिए आप सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आकाशवाणी जैसलमेर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में शाम 6:05 पर सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस का अंग।

शाम 7 बजे ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत, और 7:30 पर राजस्थानी लोक संगीत।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम विकास यात्रा। कार्यक्रम का संयोजन करेंगे श्री रामजी लाड़मीला और वाचन स्वर होंगे शरद शर्मा के।

8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का अगला कार्यक्रम होगा रात्रि 9:15 पर।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। श्रोताओं, यदि हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा, हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए, प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

अपना नाम एक कण बताने वाले कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतने के लिए उसे तप की महिमा बताई, जिसके प्रताप से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। कर्म धर्म की कथाएं कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये सुनकर जब राजा प्रताप भानु पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ गया और उसे अपना नाम बताने को हुआ, तो कपटी मुनि एक तने ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूं, अभी तक अपने विषय में तुम्हारा कुछ न बताना मुझे अच्छा लगा। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं बताते। तुम महाराज सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, साधु संतों में निष्ठा और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता जगी है, अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा प्रताप भानु ने मुनि को प्रसन्न जानकर अपनी ओर से ये दुर्लभ वर मांगा कि उसके शरीर को वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य करता रहे। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा, केवल ब्राह्मण कुल छोड़कर काम भी तुम्हारे सामने झुकेगा।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान। ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। लीजिए आप सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। आपसे थोड़ी ही देर में सुनिए आकाशवाणी जयपुर से प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में और उसके पश्चात राजस्थानी में।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी को राजनीतिक व्यवस्था से कारगर बताया। देश भर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन राज्यस्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर राज्य के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का प्रकोप जारी, दिन के साथ रातें भी काफी गर्म। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी से एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था से कहीं अधिक कारगर है। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सभी से पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में सहभागी होने की अपील की।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक केंद्रों के समर्थन से किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और धरती को नुकसानदायक रासायनिक उर्वरकों से बचाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र प्रति बूंद अधिक फसल पहल को बढ़ावा देने, जल संरक्षण, बिजली की बचत और सिंगल

0: यूज प्लास्टिक को नकारने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। देश भर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 साल और मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय समारोह गुजरात के सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजन होगा, साथ ही पुनर्निर्मित मंदिर के शिखर का 11 तीर्थ स्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए ऐसे अवसर सभी में नई ऊर्जा का संचार करते हैं।
1: कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
0: राज्य में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह में शामिल होंगे। कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने बताया कि इस अवसर पर प्रदेश भर के शिवालयों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे, साथ ही राष्ट्रीय आयोजन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहे। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति, रामजल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते पर चर्चा की गई। साथ ही राजस्थान के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भी भेंट की। इस दौरान राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा तथा शहरी विकास से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई। श्री शर्मा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से भी मुलाकात कर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर बधाई दी। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। श्री यादव ने सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें जन्म देने वाली माता और धरती माता दोनों के प्रति कृतज्ञ रहना आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री श्री यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज अलवर, खैरथल, तिजारा और कोटपुतली क्षेत्र के करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। अलवर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि इन विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा।
2: तो राम जल सेतु परियोजना है, उसमें विशेष रूप से डडीकर का रिजर्वायर, नीमराणा का रिजर्वायर, अलवर भरतपुर चंबल मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के, यमुना लिंक प्रोजेक्ट हरियाणा और राजस्थान को लेकर, राणा प्रताप सागर से बिलासपुर वाटर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, उसके साथ ही अलवर शहर के वाटर सप्लाई के 25 करोड़ के विषयों को लेकर, उसके साथ ही जहां तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विषय है, रामगढ़ में जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं वो हमारा एनसीपी जोन में आ रहा है, उसको लेकर के चर्चा हुई।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 में पेपर लीक और नकल गिरोह का खुलासा हुआ है। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता में बताया कि भर्ती परीक्षा में संगठित तरीके से पेपर लीक किया गया और फर्जी डिग्री तथा प्रमाण पत्रों के माध्यम से नौकरी हासिल करने की कोशिश की गई। गिरफ्तार अभ्यर्थी अशोक कुमार यादव ने पूछताछ में पेपर लीक की बात कबूल की है। एडीजी ने बताया कि पेपर लीक मामले में शेर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और उसके रिश्तेदार विजय डामोर को भी गिरफ्तार किया गया है। एसओजी कटारा के आरपीएससी सदस्य बनने की नियुक्ति प्रक्रिया और उसके द्वारा किए गए पेपर लीक से जुड़े नेटवर्क की भी जाँच कर रही है।
3: हमारे द्वारा बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है। बाबूलाल कटारा के गिरफ्तारी के उपरांत में उनसे पूछताछ करी जा रही है। पूछताछ में तरह तरह के जानकारियां प्राप्त हो रही है। मेन चीज कि बाबूलाल कटारा द्वारा स्वयं द्वारा क्या क्या गड़बड़ियां करी गई उसके बारे में जानकारी, इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान जो

0: उन्होंने स्वयं ने नहीं करी हो, लेकिन उनकी नॉलेज में हो कि और क्या क्या गड़बड़ियां हुई है, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित करी जा रही है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इस बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के लिए राजस्थान एसओजी को जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए इस मामले में सभी जरूरी डेटा और तकनीकी सहायता भी दे रही है। एनटीए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 3 मई को ये परीक्षा पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की गई थी। 7 मई को परीक्षा के बारे में कथित कदाचार गतिविधियों के बारे में एनटीए को सूचना मिली। इसके बाद आवश्यक कार्यवाही के लिए ये सूचनाएं केंद्रीय एजेंसियों को भेज दी गईं। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया। उन्होंने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी तालमेल पर भी चर्चा की। गृह मंत्री ने लंबी अवधि के बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति को भी जांचा। इनमें अहम बुनियादी परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान की वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। बैठक में जनजागरूकता, जानमाल के नुकसान को रोकने और आवश्यक राहत सामग्री तथा दवाओं के पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने पर भी मंथन किया गया। और अब मौसम। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में हीट वेव का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तेज गर्मी और लू को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। यह दिन के साथ ही रात में भी हीट वेव का असर रह सकता है। आज भी इन जिलों में लू का प्रकोप रहा। इन जिलों में दिन का पारा औसतन 44 से 45 डिग्री सेल्सियस मापा जा रहा है। वहीं चित्तौड़गढ़, बीकानेर, उदयपुर, जालौर और श्रीगंगानगर भी तेज गर्मी की चपेट में है। इधर पूर्वी राजस्थान के जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। हालांकि जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सीकर, टोंक और झुंझुनू में धूप की तपिश और उमस लोगों को परेशान कर रही है। सुबह शाम हल्की हवाएं चलने से मामूली राहत मिल रही है। कल से राज्य में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इससे कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। सवाईमाधोपुर जिले में पशुओं में मुंहपका, खुरपका बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। पशुपालन विभाग की ओर से ये अभियान 15 मई तक चलेगा। विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. राजीव गर्ग ने बताया कि जिले में अब तक 2.5 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण करवाकर इस अभियान में भागीदारी निभाने की अपील की है।
2: सवाईमाधोपुर जिले में खुरपका मुंहपका रोग के लिए जो FMD टीकाकरण कार्य का सप्तम चरण अभी इस वर्ष राजस्थान के अंदर सवाईमाधोपुर जिले ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करते हुए अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया है। मेरा समस्त जिले के पशुपालकों से अधिक पशुओं में अपने टीकाकरण कराने का आह्वान किया जाता है ताकि हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें, ताकि ये पशुओं को नुकसान ना पहुंचा पाए।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे बाड़मेर से हरिद्वार के बीच कल से विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। ये सेवा सप्ताह में 2 बार संचालित होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ये रेलगाड़ी बाड़मेर से हर सोमवार और गुरुवार को उपलब्ध रहेगी। ये विशेष ट्रेन 16 जुलाई तक चलेगी। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मैच हो रहे हैं। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जारी है। चेन्नई में खेले जा रहे इस मैच में लखनऊ की टीम ने CSK को जीत के लिए 204 रनों का लक्ष्य दिया है। वहीं दूसरा मैच शाम 7:30 बजे से रायपुर में खेला जाएगा। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी को राजनीतिक व्यवस्था से कारगर बताया। देश भर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन राज्यस्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर राज्य के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का प्रकोप जारी, दिन के साथ रातें भी काफी गर्म। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अविनाश मल्होत्रा ने तैयार किया है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े पिछले दिनों अलवर पहुंचे। उन्होंने मत्स्य यूनिवर्सिटी के छठे दीक्षांत समारोह में भाग लिया। समारोह में उन्होंने 71 मेधावी छात्रों को उपाधि और मेडल प्रदान किए। इनमें 37 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 28 पीएचडी उपाधियां शामिल हैं। राज्यपाल ने समारोह में कुल 44,293 छात्रों को डिग्री और उपाधि प्रदान की। बीते दिनों केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर शहर में पार्क लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने आमजन और विभिन्न संस्थाओं से लाइब्रेरी के लिए पुस्तक दान करने की अपील की। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले दिनों जिले में भी एसआई पुलिस भर्ती 2025 की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। दो दिन तक दो दो पारियों में हुई इस परीक्षा के लिए कुल 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा संपन्न कराने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से सख्त निगरानी की गई। साथ ही डमी कैंडिडेट पकड़वाने या नकल की सूचना देने वालों के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई। अलवर में नगर निकाय चुनाव के लिए जिले के सभी वार्डों की निर्वाचक नामावलियां तैयार की जा रही हैं। नगर निगम के 65 वार्डों के लिए निर्धारित सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इस दौरान मतदाता अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर प्रगणक के पास उपलब्ध फोटो युक्त मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार प्रसार और योजना से मिलने वाले लाभों की जानकारी देने के लिए पिछले दिनों जिले के विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 575 लाभार्थियों के पंजीकरण किए गए और 243 आवेदकों ने मौके पर ही वेंडर का चयन किया। शिविर के दौरान लाभार्थियों को इंडक्शन कुक टॉप भी वितरित किए गए। ग्राम रथ अभियान के तहत जिले में पिछले दिनों विकास रथों को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया। ये रथ जिले के अलवर ग्रामीण, रामगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुमर और थानागाजी में विभिन्न क्षेत्रों में 15 दिनों तक संचालित होंगे। इन विकास रथों के माध्यम से 13 सरकारी विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और पात्र लोगों को इन योजनाओं से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। जिले में संविधान निर्माता और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा भाव से मनाई गई। शहर में कई स्थानों पर कार्यक्रम और समारोह आयोजित हुए। इसी कड़ी में जेल सर्किल से अंबेडकर सर्किल तक मैराथन और स्वास्थ्य दौड़ के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई। अंबेडकर छात्रावास में विचार गोष्ठी और सामुदायिक भवन में जनसभा का आयोजन हुआ। वहीं महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर भी जिले में कई कार्यक्रम हुए। कलेक्ट्रेट सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नगर निगम कार्यालय सहित सभी उपखंड कार्यालयों में महात्मा ज्योतिबा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेकर समाज के विकास का प्रण लिया गया। सरिस्का बाघ परियोजना के बफर रेंज में इन दिनों बाघिन ST19 और उसके 4 शावकों की अच्छी साइटिंग देखी जा रही है। सरिस्का में वर्ष 2008 में बाघों के पुनर्स्थापन के बाद अब यहां बाघों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। जिले में पिछले दिनों मौसम के कई रूप देखने को मिले। कभी तेज गर्मी तो कभी आंधी बारिश और ओलों का दौर चला। फिलहाल जिले में एक बार फिर से तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे दिन के समय अनावश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर ना निकलें, साथ ही तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। इधर जिला प्रशासन भी तेज गर्मी से लोगों के बचाव के लिए प्रयासरत है। वहीं नगर निगम की टीम शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है। जयपुर में आयोजित ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार में भाग लेने आए पोलैंड, थाईलैंड, स्लोवाकिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी देशों के टूर ऑपरेटरों के दल ने पिछले दिनों सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान प्रतिनिधियों ने इको टूरिज्म गतिविधियों और टाइगर सफारी का भी लुत्फ उठाया। सरिस्का में पिछले दिनों वन्य जीव गणना संपन्न हुई। इस बार बघेरों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा लंगूर, बंदर और नील गाय की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही अलवर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार,

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर रुपेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण में समाज री भागीदारी ने राजनीतिक व्यवस्था सु कारगर बतायो। देश भर में काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रो आयोजन, राज्य स्तरीय जलसो जयपुर राज झारखंड महादेव मिंदर माए वेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली दौरा मात है, राज्य रा विकास खातर केंद्रीय मंत्रियों मुलाकात करी। और पश्चिमी राजस्थान माए हीट वेव रो प्रकोप जारी, दिन रस आगे रात भी घने गरम। समाचार आ रहे सागे, मैं रचना पारिक और अब है समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत बनाबा खातर सगलाऊ एकजुट हो बारी आरज करी। वे कया के राष्ट्र निर्माण माए समाज री भागीदारी राजनीतिक व्यवस्थाओं बत्ती कारगर है। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु माए आर्ट ऑफ लिविंग री 45वीं जयंती जलसा माए बोल रहा। वणा संस्थान माए नया बनिया ध्यान मंदिरों उद्घाटन भी करियो। इन मौके श्री मोदी पर्यावरण खातर जिम्मेदारी, नौजवाना ने रोजगार और आंतरिक सुचितारी भावना रे सागे राष्ट्र बनाबा में सगड़ा मिलर काम कर बारी अरज करी।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री कया के आध्यात्मिक केंद्रारा समर्थनों काश्तकारा ने प्राकृतिक खेती ने बढ़ावो देवा और धरती ने नुकसान देवा वाला रासायनिक उर्वरक सो बचावा माए इमदाद मिल सके है। देश भर माए काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनायो जावेला। सोमनाथ मंदिर माए दिया हमला रा 1000 बरस और मंदिर पुनर्निर्माण रा 75 बरस पूरा हो बारे मौके ओ पर्व मनायो जा रियो है। राष्ट्रीय जलसो गुजरात रा सोमनाथ मंदिर माए अमृत पर्व रा रूप माए मनायो जा रियो है। प्रधानमंत्री श्री मोदी री मौजूदगी माए काल ध्वज पूजा वेला अमृत पर्व रे मौके पुनर्निर्मित मंदिर रा शिखर रो 11 तीर्थ स्थलारा जलों अभिषेक करियो जावेला। प्रधानमंत्री श्री मोदी कया के विकसित भारत खातर इन भात रा मौका नुवी ऊर्जा देवे है।
1: कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते।
0: राज्य में ही सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनायो जावेला। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर झारखंड महादेव रामेंद्र माए वेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जलसा माए शामिल वेला। कला और संस्कृति महकमारी शासन सचिव सुचि त्यागी बतायो के इन मौके प्रदेश भर माए शिव मंदिर माए खास धार्मिक कार्यक्रम वेला, सागे ही राष्ट्रीय आयोजन रो सीधो प्रसारण भी करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली रा दौरा माथेरिया, वणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मुलाकात करी। इन दौरान राज्य माए जल जीवन मिशन री प्रगति, राम जल सेतु लिंक परियोजना और जमुना जल समझौता माथे चर्चा करी गई। सागे ही राजस्थान खातर न्यारी न्यारी महताऊ सिंचाई और पेयजल परियोजना वा खातर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री शर्मा केंद्रीय ऊर्जा आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल सो भी भेंट करी। इन दौरान राजस्थान माए ऊर्जा हल्का माए आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़िया विषय माते बातचीत हुई। वणा भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महासचिव बी एल संतोष सो भी भेंट कर हाल ही माए दिया विधानसभा चुनाव माए पार्टी री जीतरी बधाई दी। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर माए साइकिल रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। रैली माए बड़ी तादाद माए महिलावां भाग लीना। श्री यादव

0: સગળાને માત્ર દિવસની શુભકામનામાં દેતા થકા કયા કે મહાને જન્મ દેવા વાળી માં ઓર ધરતી માતા દોન્યો રો આભાર હિરણ ઉંચાઈ જે આરે બિના મિનખ રો અસ્તિત્વ ની રહે સકે હે. કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી યાદવ ઓર મુખ્ય સચિવ વી શ્રીનિવાસ આજ અલવર ખેરથલ તિજારા ઓર કોટપુતલી હલકારા કરીબ 10,000 કરોડ રૂપિયાની લાગત વાળી વિકાસ પરિયોજના વાળી સમીક્ષા કરી. અલવર માં પ્રેસ વાર્તા ને સંબોધિત કરતા થકા શ્રી યાદવ કહ્યા કે ઇન વિકાસ કામાને તે બગતરી મિયાદ માં પૂરો કર્યો જાવેલા.
1: રામ જલ સેતુ પરિયોજના હૈ ઉસમે વિશેષ રૂપ સે ડડીકર કા રિઝર્વાયર, નીમરાણા કા રિઝર્વાયર, અલવર ભરતપુર ચંબલ મેગા ડ્રિંકિંગ વોટર પ્રોજેક્ટ કો લેકર કે યમુના લિંક પ્રોજેક્ટ હરિયાણા રાજસ્થાન કો લેકર, રાણા પ્રતાપ સાગર સે બિલાસપુર વોટર લિંક પ્રોજેક્ટ કો લેકર, ઉસકે સાથ હી અલવર શહેર કે વોટર સપ્લાય કે 25 કરોડ કે વિષયો કો લેકર, ઉસકે સાથ હી જહાં તક ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ડેવલપમેન્ટ કા વિષય હૈ, રામગઢ મે જો હમ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ડેવલપમેન્ટ ચાહતે હૈ વો હમારા એનસીપી ઝોન મે આ રહા હૈ, ઉસકો લેકર કે ચર્ચા હુઈ.
0: શિક્ષા મંત્રાલય ગરમી રી છુટ્ટિયા માં દેશભર સ્કૂલ માં ભારતીય ભાષા ગ્રીષ્મકાલીન શિબિર રાખેલા. એક હપ્તા માં ઓ શિબિર ભારતીય ભાષામાં માં બુનિયાદી સંવાદ કૌશલ શીખાવા, શબ્દાને જાણવા, આપણો પરિચય દેવા ઓર રોજમર્રા જીવન રી વાતચીત ઓર સંસ્કૃતિ રી સરાવણા માટે કેન્દ્રિત વેલા. ઇનરો મકસદ રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ રે મુજબ સમાવેશી ઓર સમાન શિક્ષા રા દ્રષ્ટિકોણ ને બઢાવો દેણો હૈ. ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो. व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 माए पेपर लीक और नकल गिरोह रो खुलासो भी है. एसओ जीरा एडीजी विशाल बंसल आज जयपुर माए प्रेस वार्ता माए बताया के भर्ती परीक्षा माए मेल मिलापो पेपर लीक करियो गयो और फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट जरिए नौकरी हासिल करवाई कोशिश करी गयी. गिरफ्तार अभ्यर्थी अशोक कुमार यादव पूछताछ माए पेपर लीक री बात कही. एडीजी बतायो के पेपर लीक मामला माए शेर सिंह भी गिरफ्तार करियो गयो है. आरपीएससी रा पहला आला सदस्य बाबूलाल कटारा और उनका रिश्तेदार विजय डामोर ने भी गिरफ्तार करियो गयो है. एसओजी कटारा और आरपीएससी सदस्य बनबारी नियुक्ति प्रक्रिया और उनरे कानी करिया गया पेपर लीक से जुड़िया नेटवर्क री भी जांच करी जा रही है.
2: हमारे द्वारा बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है. बाबूलाल कटारा के गिरफ्तारी के उपरांत में उनसे पूछताछ करी जा रही है. पूछताछ में तरह तरह के जानकारियां प्राप्त हो रही है. मेन चीज कि बाबूलाल कटारा द्वारा स्वयं द्वारा क्या क्या गड़बड़ियां करी गई उसके बारे में जानकारी, इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने स्वयं ने नहीं करी हो लेकिन उनकी नॉलेज में होगी और क्या क्या गड़बड़ियां हुई है उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित करी जा रही है.
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इन बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़िया खातर राजस्थान एसओजी री जांच माए इमदाद करी है. एनटीए इन मामला माए सगड़ा जरूरी डेटा और तकनीकी सहायता की दे रही है. एनटीए री कानियों जारी बयान माए कहो गयो है कि 3 मई ने आ परीक्षा पूरा सुरक्षा प्रोटोकॉल रे तहत राखी गई ही. 7 मई ने परीक्षा रा 12 माए कथित कदाचार गतिविधियां रा 12 माए एनटीए ने सूचना मिली. इनरे पछे जरूरी कार्यवाही खातर ये सूचना केंद्रीय एजेंसियां ने भेज दी गई. फिलहाल आरी जांच चल रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभावित बाढ़ और लू रा हालात को निपटवा खातर देश ने तैयारियां ली समीक्षा बैठक करी. नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह सरकारी एजेंसियां ने तैयारियां रो जायजो करो. शुरुआती चेतावनी प्रणालियां संसाधन री तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय री समीक्षा करी. गृह मंत्री देश में करिया जा रिया दीर्घकालीन बाढ़ निवारण उपाय री प्रगति री भी समीक्षा करी. जनमाय महताऊ ढांचागत परियोजना मानव बचाव नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान माए वैज्ञानिक प्रगति भेली है. बैठक में जन जागरूकता जानमाल और नुकसान ने रोकबा खातर निर्माण कार्यक्रम जरूरी राहत सामग्री और चिकित्सा तैयारियां रा चावता भंडार ने पक्को करबा माथे भी चर्चा करी गई. बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर और आरएसआरए रा हल्का माए हीट वेव रो असर बणियोड़ो है. मौसम महकमो आवता 2-3 दिना खातर पश्चिमी राजस्थान रा कई जिला माए तेज गर्मी और लू खातर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करियो है. 8 दिन रे सागे रात माए भी हीट वेव रो असर रह सके है. आज भी आ जिला माए लू रो असर रियो. जिन जिला माए दिन रो पारो करीब 44-45 डिग्री सेल्सियस मापियो जा रियो है. वठी ने चित्तौड़गढ़ बीकानेर।

0: उदयपुर, जालौर और श्रीगंगानगर भी तेज गर्मी की चपेट में हैं। अठी ने पूर्वी राजस्थान राज जिला में बतौर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज करियो जा रियो है। हालांकि जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सीकर, टोंक और झुंझुनू में धूप री तपिश और उमस लोगों ने परेशान कर रही है। सुमारे सिंजा हल्की हवा चाल बासु मामूली सी राहत मिल रही है। कालो राज्य में नया पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबारा आसार है। इनसो कई जिला में आंधी और बिरखा होबारो अंदाजो है। सवाई माधोपुर जिला में ढांडा ढोरी मुंहपका खुरपका बीमारियां बचाबा खाटा टीकाकरण करियो जा रियो है। पशुपालन महकमा री कानियों ओ अभियान 15 मई तय चालेला। महकमारा संयुक्त निदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग बताया कि जिला में हाल तई 2.5 लाख बत्ता पशुआरे टीका लगाया जा चुकिया है। वणा पशुपालकों गोवंशो टेम माथे टीकाकरण करवार इन अभियान में भागीदारी निभावारी अरज करी है।
1: सवाईमाधोपुर जिले में खुरपका मुंहपका रोग के लिए जो FMD टीकाकरण कार्य का सप्तम चरण अभी इस वर्ष राजस्थान के अंदर सवाईमाधोपुर जिले ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करते हुए अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया है। मेरा समस्त जिले के पशुपालकों से अधिक पशुओं में अपने टीकाकरण कराने का आह्वान किया जाता है ताकि हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें ताकि ये पशुओं को नुकसान न पहुंचा पाए।
0: उत्तर पश्चिमी रेलवे बाड़मेरू हरिद्वार बीच कालू खास रेलगाड़ी चलावेला और सेवा सप्ताह में 2 भगत चालेला। उत्तर पश्चिमी रेलवारा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन रे मुजब ये रेलगाड़ी बाड़मेरू हर सोमवार और गुरुवार ने मुहैया रेवेला। यह खास गाड़ी 16 जिलाई तई चालेला। और अब आखिर माए खास खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण में समाज री भागीदारी ने राजनीतिक व्यवस्था से कारगर बताया। देश भर में काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रो आयोजन, राज्य स्तरीय जलसो जयपुर आज झारखंड महादेव मंदिर में वेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली रा दौरा मत है। राज्य रा विकास खातर केंद्रीय मंत्रियों मुलाकात करी। और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव रो प्रकोप जारी, दिन रसागे रात भी घनी गर्म। इन रसागे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन अठही पूरो वियो। माको आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमार 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जैसलमेर के हम गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजे हैं। लीजिए आप सुनिए ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम ना सुन भाई अरुण भाई रा
1: मनु भाई रा घना
0: तो आज मनु भाई और अरुण भाई पाछा एक भेड़ा होए रहा आज कार्यक्रम ने माध्यम से जुड़िया है और जब जुड़े तो सबसे पहले हमेशा कोई न कोई विषय मत बात करे आज रो विषय मनु भाई की है मतलब आप आज कई बात मत किसान भाई से चर्चा कर सो
1: आज एक तो विषय है ड्रोन दीदी योजना रे मत
0: ठीक है
1: जो एक एक प्रकार की एक स्वयं सहायता समूह है महिलाओं जो को ड्रोन तकनीक के माध्यम से जो है सशक्त बनावे और वो ना जो नई तकनीक के बारे में प्रशिक्षण देवी
0: बिल्कुल
1: जिके से वो खेती रे मोए उपयोग लेकर के फायदा उठा सके
0: बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो आपको किसान भाइयों ने बताओ भाई ड्रोन ड्रोन जो को है किसान भाइयों देखियो से भियाओ में ज्यादातर ड्रोन देखता उड़िया हो से तो वो तो किए फोटो वोटो वास्ते हुए लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री जी आजकल जो को खेती रे से जुड़ो भी हुए में भी ड्रोन रो एक नाम रखियो

0: नमो ड्रोन दीदी योजना उहे में विशेषकर कृषि विभाग और ये तरीके का जो है वो अड़ी स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं है उन ड्रोन जो है वो दिया गया एक प्रशिक्षण दियो गयो और उसके माध्यम से उन्होंने बताया गया कि थारा जैसे कोई छिड़काव है कई तरीके से कितो छिड़काव करना है की करना है तो कहना तो मतलब महिला सशक्तिकरण में साथ साथ में एक बढ़तो कदम है कि भाई कई तरीके से महिलाओं जो स्वयं सहायता समूह जरूरी है उन और भी रोजगार अवसर को अगर प्रदान किया जाए वही मत स्कीम लागू हुई जिसके नाम रखियो गए ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना विशेषकर ये रो कॉम जो है वो ड्रोन उड़ाने साथ में डेटा विश्लेषण करना कोई भी चीज डेटा विश्लेषण करना जैसे कि जनगणना कर रहा हो मकान डेटा कर रहा हो या भाई कोई कोई टावर कितना लागू रहा है कहना मतलब कोई भी चीज डेटा अगर आपने करना है तो डेटा विश्लेषण है उसके साथ साथ में कीटनाशक और उर्वरक रो छिड़काव कर प्रशिक्षण दे उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने की बात है मतलब प्रधानमंत्री जी जो को हमेशा कहे कि भाई हमारी महिला सशक्तिकरण जो को पुरुष प्रधान देश रहे मोए मतलब जो को निर्भर रहती वो निर्भर ना होके आत्मनिर्भर बने पूरे साथ साथ में कई 1500 महिलाओं ने वो 15000 महिलाओं ने ये तरीके से ड्रोन उपलब्ध कराया और ड्रोन उपलब्ध शायद उन्हें नया रोजगार और आय भी अवसर मिलिया विशेषकर अगर आप बात करो कि भाई ये योजना मुख्य उद्देश्य की है उद्देश्य यही है कि महिलाओं को सशक्त बनाने कृषि में आधुनिक तकनीकी और ड्रोन उपयोग करना क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना विशेषकर आजकल तकनीक धीमे धीमे बढ़ रही है भैया पहले लोग हाथ से छिड़काव करता था मुंडे मत बंद रखता कान लो कभी बच्चे रहे या और भी कोई चीज दिक्कत होती समस्या होती तो ये तरीके से मतलब ड्रोन भी बात है प्रशिक्षण उन्होंने देना 15 दिन तक उन्होंने प्रशिक्षण देने एक प्रमाण पत्र जारी हुई आरपीसी करके एक प्रमाण पत्र जो एक संस्था का नाम है पूरे आधार पर अगर कोई ड्रोन प्रशिक्षण है तो उन्हें रोजगार भी अवसर प्रदान हो आर्थिक सहायता ड्रोन की कुल लागत 80% है अधिकतम 8 लाख तक की सब्सिडी सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैक्रोनाइजेशन के तहत दी जाए मतलब अगर ड्रोन कहने महिला ने लेना है तो 80% 100 रुपये सपोज है तो 80 रुपया गवर्नमेंट दे से और 20 रुपया जो है उन्हें खुद ने देना पड़ से इस वास्ते रोजगार अवसर भी उन्हें प्रदान हुए पात्रता की है कौन आदमी ये तरीके से ले सके तो महिला स्व सहायता समूह जो SHC रो सक्रिय सदस्य होना बहुत ही जरूरी है आय राखी की जरिया है ड्रोन में अगर आय राखी जरिया कराओ तो किसानों किराए मतलब अतिरिक्त आय कर सके प्रतिवर्ष वो 1 लाख से अधिक ज्यादा मतलब पैसा कमा सके रोजगार में अगर वो योजना और लाभ की बात करो तो ड्रोन पायलट रूप में एक सम्मानजनक रोजगार है आधुनिक खेती जुगाड़ा आपको देख रहे हो वे केतन के खेती और नैनो उर्वरक रेरी जैसे कीटनाशक सटीक छिड़काव भी काम करें तो कहने ना मतलब मनु भाई अगर बात आप ड्रोन की बात करो तो ये समय भी बचाई लगाया मतलब आप खेती में लागत भी बचाई और उसके साथ साथ सुरक्षा दृष्टिकोण से आप देखो तो हानिकारक रसायन सु सीधो जो का संपर्क हुई उस आप केतन के बचे
1: बिल्कुल बिल्कुल तो आप आगे बड़े भी बात कर सो लेकिन पहले सुन जो बढ़िया
0: लोकगीत है।

तो राजस्थानी लोकगीत सुनने बाद में मनु भाई आप आज बात करी ड्रोन दीदी री और ड्रोन दीदी री बारे में बिल्कुल देश का प्रधानमंत्री जी और राज्य सरकार हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात जुगो है वो करे और महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह ने कई तरीके से मजबूत करें और आर्थिक और आत्मनिर्भरी अगर बात आवे तो उनमें ड्रोन दीदी री महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन आज रो दिन बहुत विशेष एक दिन है जिसे आप कह सको आज एक नॉम सू एक शब्द सू जुगो है एक पूरा मतलब संसार रे साथ में एक नॉम भी पूरा मुंडो भी पूरा भरी जाओ जिकन कही माँ और माँ रे साथ साथ में आज

0: कहीं के अंग्रेजी में आपको कह सकते तो आज मदर्स डे, बिल्कुल मदर्स डे के बारे में और मदर के बारे में तो हर आदमी कहो नहीं, कोई जरूरत को नहीं, माँ एक की शब्द हुई और माँ आप रे बच्चे और परिवार वास्ते एक की काम करिया करे, वो तो हर आदमी ने ध्यान है कि माँ शब्द की है। तो क्या माँ और मदर्स डे कब मनाए जावे और कई तारीख न और कई तरीके से मनाओ, तो विशेषकर अगर आप बात करो तो ए मातृ दिवस आज दिन 10 मई 2026 में आप मनाए जावे, ये हर साल मई रे दूसरे रविवार, पहले रविवार नहीं दूसरे रविवार, मतलब ये तारीख फिक्स को नहीं, मई रो दूसरे रविवार जो भी तारीख आसे वो तारीख में मनाओ। इसमें विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और कनाडा ऑस्ट्रेलिया का 40 देश जो है उन शामिल है, इसमें एज बात है कि भाई एक दिन एड़ो है जो कि मां रे सम्मान वास्ते हुए, क्योंकि मां शब्द एड़ो है कि सुबह अगर मां उठे सामने जब तक परिवार पूरा नहीं सोए जब तक मां कौन सोए, क्योंकि वेरी सुबह री दिनचर्या वो लगाए शाम तक री दिनचर्या में परिवार जो सदस्य है, भले अगर चार बेटा है बहु है पोता है या जो भी है, लेकिन माँ जब तक वो उठे तो वेरी पूरी दिनचर्या, तो एक दिन वे माँ वास्ते एक दिन रखियो कि भाई क्यों नहीं एक दिन माँ वास्ते रखियो जावे कि माँ रे वास्ते जापो रखो कि वो की शौक है वो खेत घुमाओ ले जाओ है या वो खान पान की है, तो कहने मतलब मां है दिवस है मदर्स डे लोग लोग बात करी, वैसे विशेषकर अपने ग्रामीण क्षेत्र में तो ये तरीके ना मां दिवस को नहीं मनावे, लेकिन आज संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका ये तरीके एक तर्ज कियो भाई क्यों नहीं 40 देश भेड़ा हो कि एक दिन एड़ो कियो जावे जिके सो आपरो जन्मदिन मनावे तो क्यों नहीं एक मां रो भी दिन मनाया जावे।
1: बिल्कुल बहुत सही बात बताई कि भाई 10 मई नो जो है मत्र मदर्स डे मनाया जावे, और मदर्स डे रे मते लोग यही कोशिश करे कि भाई ये दिन जो है अपनी माता जी ना जो है कॉम से बिल्कुल फ्री रखे, कोई भी कॉम नहीं करने दे, और जितना भी कॉम में घर का बच्चा है जो कोई बच्चा छोटा बच्चा है या भाई है वो सारा कॉम करे, चाहे वो ना बाहर घर से बाहर ले जाकर रेस्टोरेंट में खाना खिलावे या दर्शन लाभ करावे या मंदिर वगैरह में ले जाए, जो माँ जाए नहीं पावे पूरे दिन पूरे टाइम तक जाए नहीं पावे, पूरे साल तक इच्छा शक्ति है कर जाओ, और बिना कोई तरीके का गिफ्ट ला के देवे उपहार ला के देवे की मान रहे चीज जरूरत है प्रसन्नता मिले रहे, तो ये प्रकार से मदर्स डे मनाया जाए।
0: चलो आज मदर्स डे की बात करी, सुन सो राजस्थानी एक और लोग की चर्चा में रख सकता है।

0: तो मनु भाई, आज आप बात करी ड्रोन दीदी री, बात करी मदर्स डेयरी, और जाते जाते बात करो मौसम री। तो बिल्कुल तप ज्यादा है, लू है, विशेषकर आप ये माध्यम सु किसान भाई सुहेज कहें कि भाई आप समय अगर कम है तो बाहर निकले, नहीं तो नहीं निकले, और ज्यादा से ज्यादा शीतल पेय सेवन करें, और आप तबीयत रो स्वास्थ्य रो ध्यान रखें, और हमें समय री सीमा देगा अपन किसान भाई ना करना पड़ सके।
1: राम राम।

अभी ग्रामीण भाई ग्राम जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए आप सुनिए राजस्थानी लोक संगीत।

0: अभी आप राजस्थानी लोक संगीत सुन रहे थे, ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। लीजिए आप सुनिए आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम विकास यात्रा। कार्यक्रम का संयोजन किया है श्री रामजी लाल मीणा ने और वाचन स्वर हैं शरद शर्मा के।
1: आजादी का अमृत महोत्सव।

0: श्रोताओं नमस्कार। भारत का कृषि क्षेत्र बहुत ही विशाल है और इसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत के लगभग 60% लोग कृषि आधारित रोजगार पर निर्भर हैं। आज की विकास यात्रा में हम बात करेंगे इन 60% जो किसान भाई हैं इनके लिए एक आशा की किरण और पीएम आशा योजना के तहत इनकी जो फसलें हैं किसानों की, उनको निर्धारित मूल्य से जब कोई फसल नीचे गिर जाता है तो सरकार चाहती है कि उनको उचित मूल्य मिल सके। और आज की विकास यात्रा में हमारे साथ हैं शरद जी। शरद जी, हम बात करेंगे पीएम आशा योजना की।
1: बिल्कुल, ये भारत सरकार प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अर्थात ये जो योजना है वो एकीकृत योजना का संचालन कर रही है, जिसमें मूल्य कह सकते हैं समर्थन योजना है, मूल्य कमी भुगतान योजना है, बाजार हस्तक्षेप योजना है और मूल्य स्थिरीकरण जो कह सकते हैं कोष है, उसको इस योजना में शामिल किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये योजना जो है मुख्य रूप से किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाना है।
0: तो शरद जी, हम बात करें तो शुरुआत इस योजना की किसानों के लिए की गई थी, जो कि हम बात करें दलहन और तिलहन और खोपरे के लिए। अब कारण क्या था कि इनके जब मूल्य गिर जाते थे और ये जब फसलें होती हैं तो किसानों ने इसको युगाना ही कम कर दिया था, जिसके कारण भारत सरकार को जो आज भी हम खाद्य तेलों की कमी हो गई और जो दालें हैं वो भी भारत सरकार विदेशों से इंपोर्ट करनी शुरू कर दी, जबकि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जमीन है कि जहाँ पर इन दलहन तिलहन और खोपरे को उगा करके हम अपने देश की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। कारण था कि किसानों को इसमें लाभ कम नजर आने लगा, तो किसानों ने ऐसी फसलें उगाना शुरू कर दी कि जिनमें उनको लाभ ज़्यादा होता है। तब सरकार ने सोचा कि हम विदेशों को बहुत सारा पैसा दे रहे हैं इम्पोर्ट करने में, तो क्यों ना ये पैसा अपने किसानों को दे दिया जाए, तो उनको अगर जो दाल है और जो तिलहन की फसलें हैं अपने देश में उगाएंगे तो विदेशी मुद्रा कम से कम बाहर तो नहीं जाएगी। तब सरकार ने ये आशा

0: योजना की शुरुआत की है, और जो इनका मूल्य है, जो जब जैसे फसल होती है दालें या तिलहन है जिसमें सरसों वगैरह आती है, खोपरा आता है, तो जब ये एक इनका मूल्य निर्धारित किया गया और जब फसल होने पर उस मूल्य से नीचे चला जाता है तो सरकारी जो नोडल एजेंसियां हैं सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर उस फसल का खरीद करती हैं, यानी मिनिमम सपोर्ट मूल्य इन फसलों का उत्पादन किसानों का जिस हिसाब से हो रहा वो मूल्य निर्धारित किया गया तो किसानों को कम से कम घाटा तो ना हो। तो किसानों ने इस प्रोत्साहन के कारण भारत में दलहन तिलहन उगाना शुरू किया और जो हमारा इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था दालों के प्रति और हम तेल के प्रति, तो खाद्य तेलों में भी हम अभी भी आत्मनिर्भर नहीं है, दालों में भी नहीं है, लेकिन काफी हद तक है कि अब देश में इन फसलों का उत्पादन शुरू हुआ है।
1: हाँ, ये काबिले तारीफ बात है कि योजनाओं के बनने के साथ साथ जब किसानों को इसमें शामिल किया जाता है तो प्रोत्साहन मिलता है और उससे उत्पादन बढ़ता है। विशेषकर दलहन और तिलहन और खोपरा, ये ऐसी फसलें हैं जिसमें केवल आप इससे चीजों को केवल मार्केट में डायरेक्ट नहीं पहुंचाते, इसके इनडायरेक्ट प्रोडक्ट भी होते हैं जो तेल के रूप में आपको मिलते हैं। और अगर बाय द वे हम ये सोचें कि तिलहन और दलहन और कोपरे का उत्पादन गिर जाता है तो हमारे लिए तेल की समस्या हो जाएगी। अब वो खाद्य तेल है और इसके अलावा दलहन और तिलहन से निकलने वाले जो तेल हैं जिससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, और ये केवल तेल जो है आपको क्या लगता है सिर्फ खाने तक ही सीमित है? नहीं, इसके अन्य कई भी प्रोडक्ट हैं जिसमें भी इन तेलों का उत्पादन का जो है वो उपयोग लिया जाता है। तो सरकार चाहती है कि इस तरह की फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जाए, और जब फसलें बहुत ज़्यादा उत्पादित होती हैं तो कई बार उसके दाम भी नहीं मिलते, तो सरकार उसको समर्थन मूल्य के दाम पर बढ़ाकर किसानों को सीधे अपने द्वारा खरीदती है, और इससे किसानों को आर्थिक लाभ भी होता है और उनमें प्रोत्साहन आता है। मुख्य रूप से अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो बाजार में फसल के दाम जब न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाते हैं तब सरकार किसानों को नुकसान से बचाने के लिए ये काम करती है, और वो फसल के जो सही दाम हैं उनको उन किसानों तक पहुंचे, उनको मिले, ये सुनिश्चित करने का काम भी है, और इसके लिए बजट भी सरकार ने आवंटित किया गया है। अब अगर हम ये बात करें इसमें जो घटक होते हैं इस योजना में, तो मूल्य मुख्य रूप से जो है हम देखते हैं मूल्य समर्थन योजना है जिसमें केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से दलहन तिलहन और खोपरे की भौतिक खरीद होती है, मतलब डायरेक्ट सरकार खरीदती है, और इसमें बाजार से अधिक दाम जो है किसानों को मिलता है। और मूल्य न्यूनता भुगतान योजना में हम ये देख सकते हैं कि जो प्राइस डेफिशिएंसी होती है, अगर बाजार मूल्य MSP से कम है तो सरकार सीधे तौर पर MSP और बाजार मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान करती है, तो ये भी किसानों के लिए फायदे वाली बात है, किसान डायरेक्ट ना बेचकर सरकार को भी फसल बेच सकते हैं, तो उनके मार्केट के और अन्य जो डेफिशिएंसी होती है जो उसके बीच का अंतर है वो कम हो जाता है। और निजी खरीद और स्टॉकिंग योजना भी इसमें है कि जिसमें कुछ चुनिंदा फसलों के लिए पायलट आधार पर निजी क्षेत्र को भी इसमें खरीद में शामिल किया गया, पर उस पर भी नियंत्रण तो सरकार का ही होता है, लेकिन हाँ एक वो एजेंसी के रूप में खरीदने का काम करती है जैसे सरकार जो है सीधे तौर पर समर्थन मूल्य को बढ़ा करके खरीदती है।
0: और शरद जी, हम बात करें उन स्थानों की के जैसे के कई फसलों के लिए भंडारण की सुविधा होती है, लेकिन जहां भंडारण की सुविधा नहीं है और मजबूरी में किसान अगर जो फसलों को सस्ती बेचता है तो उसकी भरपाई यहां पर सरकार द्वारा की जाती है, और भारत सरकार ने सितंबर 2024 में एकीकृत PM आशा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी थी जिसमें अन्य फसलों का यानी इसका दायरा बढ़ाया गया था। जो अधिसूचित दालें तिलहन और खोपरा इनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP घोषित किया गया है PM आशा के मूल्य समर्थन योजना घटक के अंतर्गत ही आते हैं। मूल्य समर्थन योजना के तहत दालों और तिलहनों की खरीद यानी राष्ट्रीय उत्पादन अधिकतम 25% तक की जा सकती है, यानी सरकार मान लो हमारे देश में जितनी पैदावार हो रही है उसका 25% तो सरकार खरीदती है, इसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है। और तिलहन किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए मूल्य घाटा भुगतान योजना जिसको हम PDPS के अंतर्गत कवरेज को राज्य के उत्पादन के मौजूद 25% से बढ़ाकर तिलहन के लिए उत्पादन के 40% तक कर दिया गया। तो जो हमने बात की थी ना सर जी कि जैसे कि मूल्य गिर जाता है जो अंतर होता है उसके कुल उत्पादन के 40% तक का जो भुगतान है वो सरकार द्वारा

0: मूल्य के अंतर का 15% तक सीधा भुगतान किसानों को कर दिया जाता है।
1: तो इससे किसानों को फायदा ही है।
0: हाँ, तो जैसे 15% ऐसे मान लो कि सब्सिडी उसको मिल रही है, जैसे 100 रुपए का है तो उसमें 15 रुपए एक्स्ट्रा सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो कृषि बागवानी की वे सभी वस्तुएं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित नहीं है और जो नाशवान प्रकृति की हैं, जो मतलब जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे सरकार टमाटर, प्याज, आलू जैसी नाशवान फसलों के और सेब, अदरक, मिर्च आदि जैसी कई फसलों के लिए जो MIS के अंतर्गत शामिल कर रही है जिनके न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं है, इसका उद्देश्य है कि केंद्र शासित और जो प्रदेशों में सामान्य मौसम की तुलना में बाजार में कीमतों में कम से कम 10% तक की गिरावट आने की संभावना होती है और ये किसानों को इस समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो अपनी उपज को मजबूरी में न बेचना पड़े इसलिए सरकार द्वारा इसका भी एक विक्रय मूल्य के बीच में जो अंतर होता है ना, तो उसको सरकार उसकी भी भरपाई करती है।
1: इसमें हमने बात करी थी कि सरकार ने इसमें निजी खरीद और स्टॉकिट योजना को भी शामिल किया है, तो इसमें हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि तिलहन के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास ये विकल्प रहेगा कि वे चुनिंदा जिले की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में प्रायोगिक आधार पर निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना को शुरू कर सकते हैं जिसमें निजी स्टॉकिस्ट की भागीदारी होगी। प्रायोगिक आधार पर चयनित जिले की APMC तिलहन की एक ऐसी अथवा उसमें अधिक फसलों को कवर करेगी जिसमें MSP को अधिसूचित किया जा सकता है। क्योंकि यह योजना अधिसूचित जिन्स की भौतिक खरीदारी की दृष्टि से PSS से काफी मिलती जुलती है, तो इसलिए यह प्रायोगिक आधार पर चयनित जिलों में PSS या PDPCS को प्रतिस्थापित करेगी। और हम देखते हैं कि जब भी बाजार में कीमतें अधिसूचित MSP से नीचे आ जाएगी तो चयनित निजी एजेंसियां भी जुड़े हुए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत किसानों को अधिसूचित अवधि के दौरान अधिसूचित बाजारों में MSP पर जींस की खरीदारी कर सकती है। तो यह व्यवस्था तब अमल में लाई जाएगी जब निजी चयनित एजेंसी को बाजार में उतरने के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार द्वारा अधिकृत किया जाएगा।
0: और सर जी, हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में जो प्राकृतिक जो खेती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों की खेती की जाती है, ऐसी ज़मीन अलग अलग प्रकृति की है। अब जैसे हम बात करें साउथ की तरफ चलते हैं, तो साउथ में हम दलहन और तिलहनों की बात करें तो वहाँ पर जो तिलहन के रूप में जो खोपरा होता है उसका तेल ज़्यादा उपयोग किया जाता है। हालांकि हमारे देश में खोपरे का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन जो मूल्य कम मिलने के कारण उसको किसान ज़्यादा उगाना छोड़ दिया है। और यूँ कहें कि जैसे कि जो हम बात करते हैं कि जो खोपरे के तेल का इस्तेमाल होता है तो वो हमें बाहर से भी मंगाना पड़ता है। दूसरा, हम बात करें अपने राजस्थान की तरफ आएं तो यहाँ पर सरसों का उत्पादन बहुत होता है लेकिन सरसों के जो निर्धारित मूल्य से कम मिलने के कारण यहाँ भी उगाना छोड़ दिया था, लेकिन जब से ये आशा योजना की शुरुआत हुई सरसों के जो दाम हैं वो अच्छे मिलने लग गए, तो यहाँ पे देखेंगे जो सरसों का क्षेत्र है, खासकर हम बात करें जो भरतपुर अलवर का जो एरिया है, वहाँ पर आपको सरसों ही सरसों मिलेगी क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता कम है और कम पानी के अंदर जो सरसों पैदा हो जाती है। तो वहाँ बहुत सारे रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं तो सरसों के उत्पादन के लिए वहाँ पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उचित मूल्य दिए जा रहे हैं जिससे कि भारत सरकार को अपना जो इम्पोर्ट बिल है जो खाद्य तेलों पर वो भी कम हुआ है। उत्तर भारत में भी बहुत सारे जो तिलहन और दलहन की उत्पादन होते हैं, अगर हम बात करें कि जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो वहाँ पर बहुत सारी दालों का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है जिसमें हम तुअर या अरहर की दाल कहते हैं, मूंग, वहाँ उड़द भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर जो कि गर्मियों का दिन होता है सर जी, और गर्मियों के दिनों के अंदर पंजाब से लेकर के हम बात करें और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं कि जहाँ पर गेहूं की फसल के बाद में खेत खाली पड़े रहते
1: खाली रहते हैं
0: और वहाँ पर अगर चाहें तो ये तीन महीने खाली रहते हैं। यहाँ पर जो दलहन है मूंग अच्छी खासी उगाई जा सकती है लेकिन उत्पादन कम और मूल्य कम मिलने के कारण किसान उसकी बुवाई नहीं करते, भले खेत खाली पड़ा रहे। लेकिन जब से जैसे कि मूंग के दाम बढ़ गए दलहन के, सरकार भी उस पर जो कहें कि निर्धारित मूल्य कर दिया है कि भाई इससे कम आपकी बिकती है तो सरकार उसकी कीमत देगी, उसके बाद में हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप जाओगे तो वहाँ पर गर्मियों के दिनों में भी अब खेत खाली नहीं मिलते हैं। वहाँ पर गेहूं की फसल के कटने के बाद में और मूंग की बुआई हो जाती है और भारी संख्या में

0: दलहन की पैदावार हो रही है। लेकिन सर जी समस्या तब आती है कि जिस चीज की हमारे देश को जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अधिक उत्पादन हो रहा है, किसान उसी के पीछे पड़ जाते हैं, वो अधिक उत्पादन और अधिक लाभ के कारण उसको उगाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम बात करें कि अभी जो मक्के का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा है देश के अंदर, हालांकि भारत में मक्का बहुत ज़्यादा मात्रा में खाई नहीं जाती है, लेकिन दूसरे उपयोग जैसे कि हम कहें कि मछलियों का दाना है, मुर्गियों का दाना बनाने के, पशुओं के लिए काम आती है, और पॉपकॉर्न वगैरह की मक्का भी होती है, तो अन्य कामों में जो मक्का आ रही है तो उसका पैसा अधिक मिल रहा है, उत्पादन ज़्यादा है, तो किसानों को लाभ ज़्यादा मिलने के कारण उसको उगाया जा रहा है। तो अगर सरकार जैसे कि दलहन और तिलहन के ऊपर भी, और मतलब जैसे आशा योजना है और बेहतर योजना आए और भी प्रोत्साहन मिले और नई नई किस्में आए, उत्पादन बढ़े, तो हमारे देश का जो इम्पोर्ट बिल है जो कि दलहन और तिलहन के जो कारण होता है, तो मुझे लगता है जरूर कम हो सकता है।
1: हाँ, इसमें ये कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए कई बार हमें आयात पर निर्भर करना पड़ता है। तो दलहन और तिलहन को लेकर की स्थितियों में अगर थोड़ा सा हमने बात इसमें एक मूंग की भी की थी, तो राजस्थान का जो हमारा जैसलमेर पश्चिमी जिला है, यहाँ पर भी पहले कभी मूंग की फसल ली जाती थी, और कुछ किसान सरसों भी उगाते हैं ताकि इससे भी उनको जो है तेल के उत्पादन में सहायता मिलती है। लेकिन बात वही है कि जो चीज़ें जितनी ज़्यादा मात्रा में हम एक ही जगह पर उगाते हैं, तो उससे सामने वाले के लिए परेशानी ये हो जाती है कि जो भूमि संरक्षण है वो खराब होता है, उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है, और जितना ज़्यादा आप उत्पादन आप एक तरह की फसल का लेंगे, तो उससे जो है एक रूपता होने के कारण हमारा जो सिस्टम है एग्रीकल्चर का, जो कृषि का, उस पर भी इसके कई प्रभाव पड़ते हैं जो शायद हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों बाद जब वापस से अगर इस पर खेती की जाती है बदल करके, तब हो सकता है कि हम वो नया उत्पादन वहां से प्राप्त नहीं कर पाए।
0: और इसीलिए किसानों को फसल चक्र अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है कि एक ही जमीन में हमेशा एक ही फसल ना उगाएं, और जो फसल चक्र होगा यानी बदल बदल कर फसलें उगाएंगे तो जो हमारी जमीन है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है और हमें खादों का प्रयोग कम करना पड़ता है। और सर जी बात यहाँ पर यह आती है कि देखिए हमारे देश में पहले से ही हमारे पास जो है पेट्रोलियम का बहुत बड़ा आयात करना पड़ रहा है, बहुत सारा हमारी इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और अगर हम खाद्य तेल और हम दलहन के ऊपर भी हम विदेशों से इंपोर्ट हमारा बिल और बढ़ जाएगा। हालांकि हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें उगा रहे हैं देश के अंदर जिनकी अधिकता है, जैसे कि हम प्याज एक्सपोर्ट करने की स्थिति में, आलू हमारे देश में बहुत ज़्यादा उगाया जा रहा है, और भी सब्जियां वगैरह भी हम बहुत सारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम फसल चक्र अपनाएंगे कि मान लो कि पहली साल आपने जमीन में आलू उगा लिया, तो अगली साल आलू ना उगा कर वहाँ पर दलहन उगा सकते हैं, फिर अगली साल फिर तिलहन उगा सकते हैं, और फिर आलू पे आ जाओ, तो पूरे देश के अंदर जो फसलों की है वो समानता बनी रहेगी और हमारी खेती की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और हमारे देश के जो इम्पोर्ट बिल है वो भी बैलेंस बने रहेंगे।
1: और इसमें श्याम जी दूसरी बात यह है कि जो कृषि का जो ये साइकिल चेन कह सकते हैं इसको, जो उसकी जो चेन है वो लगातार ठीक तरह से चलेगी, और आमदनी के हिसाब से देखा जाए तो किसानों को हर वर्ष जो कह सकते हैं कि अंतर है आमदनी का, जो रेशियो है उसमें भी दिखेगा कि आपने एक बार आलू से इतना पैसा कमाया, अगली बार आप दलहन में जाएंगे तो उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, फिर उसमें अगली बार में कुछ और होगा, तो ये थोड़ा सा इसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। और एक और इसमें देखने वाली बात यह है कि दलहन जैसी और तिलहन जैसी फसलों को उगाने के लिए काफ़ी मेहनत और परिश्रम भी करना पड़ता है, और अभी तक देश में हम जो देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा किसानों की रुचि कम रहती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये काफ़ी श्रम साध्य है, बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसीलिए सरकार ऐसी योजनाएं लाती हैं कि जिसमें उनको हर प्रकार से सहायता दी जाए ताकि किसान निराश न हो और वो दलहन और तिलहन और अन्य ऐसी फसलों का उत्पादन लगातार करते रहें। और इसमें भी क्या है, आपने एक बार दलहन बोया, दूसरी बार आप तिलहन बोएंगे, और फिर उसके बाद फिर दलहन होंगे, तो दलहन में भी हम देखते हैं दालों में बहुत सारी वैरायटी है, तिलहन में भी हम देखते हैं काफ़ी चीज़ें हैं, और उसके अलावा नारियल है, खोपरा जिसको हम कहते हैं, तो ये हमारा इसका मुख्य उद्देश्य इसी तरह से है कि जो हमारा आयात तेलों कर है, चाहे वो खाद्य के लिए हो या अन्य कार्यों के लिए हो, वो आयात कम हो और हम अपने देश में ही

0: सबका उपयोग कर सके। आपको ध्यान होगा हम रोज नहाते हैं, नहाने के लिए भी साबुन चाहिए, साबुन बनाने की फैक्ट्रियों में भी इस कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के तेल की आवश्यकता होती है। अब वो शायद जरूरी नहीं हो कि दलहन तिलहन के रूप में हो, लेकिन उसके लिए जो फसल है वो भी हम इसके साथ उसको उगा सकते हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य तो अभी वही खाद्य तेल और अन्य से जुड़ी हुई चीजों को लेकर है, तो इसमें किसानों को इस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना चाहिए।
1: शरद जी, जैसे आपने बात की कि हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, उसमें जो तेल इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर अरंडी का तेल इस्तेमाल होता है, जो कि गुजरात और राजस्थान नंबर पर है। और मैं आपको बता दूं कि जो अरंडी का तेल है उसमें भारत नंबर वन पर है, यानी पूरी दुनिया में जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो तेल सारा भारत से ही जाता है। तो यदि भारत से ये एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो दुनिया के प्रोडक्ट्स बनने बंद हो जाएंगे इतनी भारी मात्रा में, यानी ऐसा बताया जाता है कि 60% दुनिया का जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ऑयल है वो भारत से ही एक्सपोर्ट होता है। तो हम कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा था शरद जी कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो जैसे कि दलहन और तिलहन का एक नकदी फसल के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब उसके बाद में अब किसानों की आय अन्य तरीकों से भी बढ़ गई तो उनको नकदी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो अब वो दूसरी चीज़ें उगाने लग गए। तो कहीं ना कहीं जैसे कि एक हेक्टेयर के अंदर अगर वो आलू उगाता है किसान, तो जो उसमें पैदावार होगी और उसी एक हेक्टेयर में दाल या तिलहन
0: होगा,
1: तो उसकी जो पैदावार उसकी आधी भी नहीं हो रही है, तो वो क्यों उगाएगा?
0: हाँ, ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। हाँ, कि तो किसान इसलिए भी मुड़ जाते हैं।
1: तो सरकार ने जो आशा योजना है, जो अंतर आता है फसलों में, यानी उत्पादन कम उत्पादन के कारण जो किसानों को घाटा होता है उसकी भरपाई करते हैं, और मूल्य जो बाजार में है अगर वो गिर जाता है तो सरकार उस मूल्य की भी भरपाई करती है, और सरकार बाजार मूल्य जो निर्धारित है सरकार द्वारा उस पर खरीद भी कर रही है। तो कुल मिला के हमारा जो अन्नदाता है उसकी आमदनी किसी भी प्रकार से कम ना हो, और वो हमारे देश में जिन चीज़ों की जरूरत है उन सभी फसलों को उगाए और हमारे देश का बैलेंस बना रहे। सरकार की कोशिश तो यही है, लेकिन आगे हम ये चाहते हैं कि जो हमारे भारत के किसान हैं इनको अभी भी जैसे कि अत्याधुनिक कृषि की ट्रेनिंग की जरूरत है। हमारे देश में अभी भी परंपरागत खेती ज़्यादा हो रही है,
0: बिल्कुल,
1: और आधुनिक खेती हमें पैसा भी चाहिए, उपकरण भी चाहिए, लेकिन उससे उत्पादन 4-5 गुना तक बढ़ सकता है। हम कई ऐसे देश हैं जो कि एक हेक्टेयर में जिनकी वो उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा, भारत उसके आधे से भी कम पर है। तो कहीं ना कहीं हमें आधुनिक तकनीक चाहिए, आधुनिक बीज चाहिए, तो तभी कृषि क्षेत्र में हमें बहुत सारे निवेश की जरूरत पड़ेगी। तो हम ऐसा नहीं, हमारे पास ज़मीन बहुत है, और आज भी देखिए जैसलमेर है, बाड़मेर है, जो रेगिस्तानी इलाके हैं, यहाँ खेती की जा सकती है, लेकिन किसानों को वो तकनीक बतानी पड़ेगी जो कि रेगिस्तानी इलाकों में कैसे खेती की जाती है कम पानी की मात्रा से। और इसका एक उदाहरण आप चांदन के अंदर जो भोजका में जो खजूर का उत्पादन हुआ है ना, अब जमीन तो वो की वही है, ये भी रेगिस्तान का इलाका है, लेकिन सरकार ने वहाँ निवेश किया, पैसा खर्च किया, उन्नत किस्में लाए, और वो खजूर उत्पादन आज देखते हैं तो लगता है कि यहाँ भी सब कुछ उगाया जा सकता है।
0: हाँ, ये अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक बात है कि आप जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके में खजूर का उत्पादन इतनी बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, और अब तो ये पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है। तो इस तरह के परंपरागत और गैर परंपरागत तौर तरीकों में कहीं थोड़ा बहुत भी परिवर्तन करके, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके हमें धैर्य रखना पड़ेगा, और उसके परिणामों के आधार पर जब हम कुछ अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं तो वही स्थितियां होंगी कि जैसे अभी यहाँ पर हम खजूर उत्पादन कर रहे हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि कहीं हम दालों के उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं।
1: और इसमें प्रयास सरकार को करने होंगे, और जो हमारे किसान भाई हैं दलहन तिलहन की अच्छी किस्में और अच्छी किस्मों के साथ अत्याधुनिक तकनीक और निवेश, ये सब चीज़ें होंगी तो किसान हमारे देश को आत्मनिर्भर दलहन तिलहन और भी जो चीज़ें हैं उनमें बना सकते हैं, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो सकता है। बस सरकार को जो जिस प्रकार से नोडल एजेंसियां बनी हुई हैं, जब मार्केट में जो सस्ती फसल हो जाती है उसको खरीद करती हैं, उससे पूर्व कितने हेक्टेयर में कौन सी फसल बोई हुई है उसी वहीं पर निर्धारित कर दिया जाए, और फसलों में यदि कोई खराबी हो रही है तो उसका उत्पादन गिर रहा है तो वहाँ पर जो किसानों को भरपाई कर दी जाएगी, तो किसानों को विश्वास बढ़ेगा और वो प्रत्येक वर्ष भारत में ऐसी चीज़ें

0: जो दलहन तेलहन और अन्य चीजें जो हमें भारत बाहर से मंगाता है, उन चीजों को उत्पादन करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर सकता है।
1: और इसका परिणाम ये होगा कि दलहन तेलहन के उत्पादन के साथ हमारे खाद्य तेल और अन्य जो तेलों से बनने वाली चीजों में भी जो हमें दूसरे देशों पर आयात पर निर्भर रहना पड़ता है वो नहीं रहना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही आने वाले समय में ये और एक बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। सरकार हमेशा से प्रयासरत रहती है कि किसानों को नित नई जानकारियां और योजनाओं के माध्यम से जोड़कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और उनका आर्थिक स्तर सुधारा जाए। उनका आर्थिक स्तर सुधरता है, देश की अर्थव्यवस्था अपने आप पटरी पर आती है। तो आज की विकास यात्रा से मुझे शरद शर्मा और
0: श्याम वीर सिंह को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: आजादी का अमृत महोत्सव।

अभी आप सुन रहे थे हमारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम विकास यात्रा। कार्यक्रम का संयोजन किया था श्री रामजीलाल मीणा ने, वाचन स्वर थे शरद शर्मा के। ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जैसलमेर के हम गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, फिल्म संगीत।

0: amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, dai soro mio.
1: Amore mio, dove sei tu? Ehi, kya kar rahi?
2: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
1: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ।
2: गा के?

आशा भोसले की आवाज में आपने सुना फिल्म दी ग्रेट गैम्बलर का ये गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे, ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। अब से थोड़ी ही देर में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुटिबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन

0: सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोयल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ

0: सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा सम्पन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता खतरों

0: को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Mr. Modi said today India is advancing on reforms expressed and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा।
1: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. It is aimed at creating an integrated textile ecosystem.

0: टच छुपाए रखा, शोला दबाए रखा,
1: टच छुपाए रखा, शोला दबाए रखा।
0: हुस्न हमेशा रुका रहता है, खुदा का हम सच कहता है।

फिल्म नमस्ते लंदन का यह गीत आपने सुना राहत फतेह अली खान की आवाज में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे, ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। आपसे थोड़ी ही देर में सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

अभी आप राजस्थानी लोक संगीत सुन रहे थे। ये रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। अब से थोड़ी ही देर में सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: By Nitish Arora for the Central English Features Unit. This broadcast came to you from Akashvani, Delhi.
1: ये आकाशवाणी है रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वीणा रिसाइटल by Vidwan D. Srinivas. Accompanying him on Ridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hai. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, Srinivas ne 7 saal ki umr mein apni maa Srimati D.L. Tulsi ke margdarshan mein veena siksha ka Shri Ganesh kiya. 9 saal ki umr tak वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादि विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर इमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन की क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
2: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना वाज बोर्न इनटू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। बाय द एज ऑफ 9 ही वाज अ चाइल्ड प्रोडिजी। द एडवांस ट्रेनिंग फॉलोड under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top-grade veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. E. Mani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
1: Aaj raat ke prasaran mein Vidwan D. Srinivas ke saath mridangam par sangat kar rahe hain श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
2: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
1: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गोला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
2: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिंस his veena recital with a composition of Mysore Vasudevachar in the rag Gaula set to Aditala.

0: अब आप रामस्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कंपोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदिताल त्रिस्र गति।

0: इसके साथ ही आज की रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर अब से कुछ ही क्षण

0: बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Asia's biggest weightlifting events of the year. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी जैसलमेर के हम गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की यह प्रसारण सभा भी यहीं संपन्न होती है। कल दिन की सभा में प्रातः 11:05 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।